मनिए पट उपजे सालाई ससुत दरगह द्रपाइये तगन पुत पुत महला पहला तगन इंद्री तगन नारी पलके थुक पवैनित दाड़ी तगना पैरी तगना हथ तगना जीवा तगना अखी वे तगा पेवत वटता ही अवरा कत लै पार करे दिया हो कड़का गिरद से राहो सुन को विदान मन अंधा नौ सुजान पड़ी सर हो दया।

0: साई भगतियाल कृपा करे तन साई कार करे सी। सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी। हुक्म मनिया हुए प्रवाणता खसमे ताल मेल पाए सी। खसमे भावे सो करे मन दिया सो फल पाए सी। तां दरगह पैदा जाए सी।
1: अब किस कृपा की जय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए

0: Actually, सुबह 6 बज रहे ने। विषय प्रोग्राम सोफियाना कलाम।
1: समाओ सोफियाना रंग।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलो हर्ट्स ते सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डिफरेंट डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, डिटेल्स कुझु न तरह आहिनि, थोरी देर में तव्हां हमेशह भगत कराम साहब खे ॿुधंदा।

कैटास्ट्रोफ पेश करूंगा एंड पर कुछ फिल्मी नकमा खास खास का प्रोग्राम जाकर मैं पेश के लेंगे ये थे प्रोग्राम जी विचूड़ा तब आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधी रहा ये अच्छा था भगत करम साहब जन जी मिठले आवाज में कलाम बुदूं।

करम साहबजन जी सदावार आवास में कलाम दे रहे हैं आकाशवाणी जी सिंधी सरस आए हिंदर पेश है तबसरो भारत फ्रांस जो स्पेस सहकार 1960 डाके का वी कर आज वाले राकेट के आजमाइशन का वी हली रहा है सो इन वक्त एक वसी एंदड़ भाईवारी में तब्दील थी वो है तें में अची तो वे गडियल उपग्रह मिशन छोड़ने वाला वाहन की टेक्नोलॉजी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंदड़ स्पेस एप्लीकेशंस बड़े मुल्क मन के लंबे अरसे का हल्द लागापा हाँ एक नो वज मैसर कर रहा तक नए इकोसिस्टम के बर्पा किया वे तें में बिन मुल्क जो सरकारों खोजना कदड़ इदारा हुनर ए स्टार्टअप्स पान में मशगूल तेम खास ध्यान वधंदड़ स्पेस क्षेत्र से दिनों वो फ्रांस के ऊंची तालीम रिसर्च ए स्पेस के वजीर प्रोफेसर फिलिपे बैपिस्टे के अगवाणी तहत ऊंची समझ जो फ्रांस जो मेड़ तें भारत के साइंस ए टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस पेंशन एटमिक एनर्जी ए स्पेस के

डिपार्टमेंट चार्ज सूबाई वजीर डॉ जितेंद्र सिंह से 28 सितंबर 2026 ते नई दिल्ली में मुलाकात कई। कजाणी में स्पेस समिट का अलावा भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 साइंटिफिक ए तकनीकी सहकार में अवलतों तन ते बहस बहसों का वो इन मौजू अची था वन स्पेस सीई एफआईआर एफआईपीआरए तंहिंखां अलावा ब्लू इकोनॉमी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह चयो त हाणे जो तादाद पाण ॿुधाए थो त भारत फ्रांस सहकार साइंस जे अलॻि अलॻि खेत्रनि में काफ़ी हद ताईं वधी वियो आहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह चयो त भारत फ्रांस स्पेस सहकार एतिरो पुराणो आहे जेतिरो ॿिन्ही मुल्कनि जूं पाण में स्पेस एजेंसियूं क़दीम आहिनि। या भाईवारी आवाज़ वारे रॉकेट जी आज़माइश खां जेको 1960 में कयो तॾहिं खां वठी करे अॼु जे दौर जे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ताईं हलंदी पई अचे। हुन मेघा ट्रोपिक्यूसेन सरल जो हवालो ॾिनो जंहिंखे इसरो ऐं सीएनएस ॿिन्ही गॾिजी करे तयार कयो। हिन खां अलावा लॉन्च व्हीकल इंजन खे तयारु करण में पिण सहकार ॾिनो वियो। सो हिन बरक़रार भाईवारी जो ॾिसणो न आहे। हुन चयो त टे गॾियल उपग्रह खे तयारु करण जंहिंजो नालो आहे त्रिष्णा सो बराबरि अॻिते वधी रहियो आहे। हिन खां अलावा हुन सीएनएससीएस जे भारत जे गगनयान प्रोग्राम खे हिमायत जी साराह कई। तंहिंमें अची थो वञे कंज्यूमर्स जी सप्लाई, हिन खां अलावा फ्लाइट सर्जन्स खे तरबियत ॾियण। भारतीय फ्रेंच टीमुनि माइक्रोग्रेविटी रिसर्च ऐं पैराबोलिक फ्लाइट ते पिण बहस बहसो कयो। हिन वक़्तु हलंदड़ भारत जे स्पेस खेत्र जी तब्दीली ॿिन्ही मुल्कनि मंझि सहकार खे वधाइण जा नवां इम्कान पैदा कया आहिनि। इहे इम्कान सरकारी इदारनि ऐं बरपा थियल एजेंसियुनि खां अञा अॻिते वेंदा। हुन भारत जे स्पेस खेत्र में आयल सुधारनि जो हवालो ॾींदे चयो त प्राइवेट इकोसिस्टम में झझी वाधि आई आहे। हिन खां अलावा 400 भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स हिन वक़्तु रॉकेट खे हेॾण, उपग्रह खे हेॾण ऐं स्पेस एप्लीकेशन्स जे कम में रुधल आहिनि। हुन चयो त भारत फ्रांस सहकार जो ॿियो दौर वेझी करे सरकारी इदारनि, हुनर ऐं स्टार्टअप्स तिन में वधीक रिसोर्सिस पूल्स आणींदो ऐं हिकु बहितर इकोसिस्टम बरपा कंदो। डॉक्टर जितेंद्र सिंह चयो त भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 तंहिंखे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऐं फ्रांस जे सदर हिन साल फरवरी में महूर्त कयो। तंहिं सां इनोवेशन ऐं अभिनंदन टेक्नोलॉजीज़ खे अॻिते वठी आणण में भाईवारी खे हिकु नओं प्लेटफॉर्म मिलियो आहे। अहिड़े समय हुन ईंदड़ वाटर साइकिल ऐं त्रिष्णा मिशन जो हवालो ॾिनो जेको बेंगलुरु में 11 अक्टूबर ते थींदो, जंहिंमें इसरो मटेरियल ऐं असमुद्र अमलदारनि सां अॻिते अची करे कृष्णा उपग्रह ऐं संदस एप्लीकेशन से ॻाल्हियूं कंदा। मीटिंग तमाम ई अहिड़े मोड़ ते थी आहे जॾहिं भारत फ्रांस सहकार तंहिंमें साल 2026 खे भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन करे मल्हायो पियो वञे। तंहिं सां स्पेस साइंस ऐं टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटल साइंस ऐं ओशन साइंस में सहकार खे अञा घणो अॻिते वठी वञिबो। इन्हनि ॻाल्हियुनि लंबे अरसे खां भाईवारी खे अॻिते वधाइण में नई जान विधी आहे। हिन खां अलावा ॿियनि उभरंदड़ खेत्रनि में पिण जहिड़ो की इदाराई, हुनरी ऐं स्टार्टअप सहकार में तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: कुझु फिल्मी नगमा आगाज़ करे फिल्म हो जमालो सां ॻाईंदड़ फनकारा।

दिनावाणी बोला गोवर्धन भारती जी।

आकाशवाणी जी सिंधी सरिस्ता हींअर पेश आहिनि ख़ासि ख़ासि ख़बरूं। बचाव नगर श्री राजनाथ सिंह जियो स्ट्रेटजिक सोच ऐं कंटीजेंसी प्लानिंग लाइ सॾु ॾिनो त जीअं बचाव फ़ौजनि जी तयारी हरदम रहे, छोजो उभरजंदड़ टेक्नोलॉजी ऐं बेबकाइमी इहो लाज़मी आहे। पाणी मामलनि जे वज़ीर डॉ एस जयशंकर चयो आहे त सरहद ते छिकताण वारे तकरार खे दूर करण सां भारत चीन जा लगावा बहितर थिया आहिनि। टर्की जे सदर तैयब एर्दोगन पारां जम्मू ऐं कश्मीर ते पंहिंजे यूएनजीए तकरीर में हवालो ॾियण खे भारत थले छॾियो आहे। माली वज़ीर निर्मला सीतारमन सऊदी अरब खे हिकु भरोसेमंद ऐं कदरदान हिकमत अमले भाईवार करे कोठियो आहे। एक्टिविस्ट पाकिस्तान खे पाकिस्तान वारा बेक़ाइद खयल कश्मीर में आवाम जे मुज़ाहिरे करण खे तहस नहस करण खे जेनेवा मीट में जेनेवा गॾिजाणी में निंदियो आहे। एशियन गेम्स 2026 में भारत औरतुनि जे 4x400 मीटर रिले में सोनो मिलो हासिल कयो आहे। नीरू धांधा खे औरतुनि जे ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट में सोन जो बिलो मिलियो आहे। कुल मिलाए करे भारत जे मिलनि जो तादादु थियो आहे 53, तंहिंमें 6 सोने जा, 21 चांदी जा ऐं 26 कांसे जा बिल आहिनि।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधी रहा असो प्रोग्राम जो वक्त पूरा थी रहा है वरी असा गडजाणी थी सुबह सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 बजे तेसी तीन इजाजत सदाई गढ़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हम तैयारियां इतनी मजबूत कर लें कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसर्वर और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा

0: कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति जेसीएम की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहुर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उपमंत्री किम इल डोंग ने की। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों की पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। विशेष शिविरों का अगला दौर अगले महीने की 7 और 8 तारीख को आयोजित किया जाएगा। आयोग ने बताया कि दिल्ली में अब तक 4 लाख से अधिक सुनवाई की जा चुकी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूचियों के चल रहे एसआईआर अभियान के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का, संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्यभर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज read by Shagun Chopra. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi, Mr. Singh said that the country's goal is clear, that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. More from our correspondent. The minister underlined that the ongoing operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and the national interest. He added that India stands firm as the first responder, preferred security partner and as a symbol of trust and reliability in the Indian Ocean region, strengthening the country's vision of Mahasagar. The defense minister noted that the presence of Indian warships in South China Sea, Mediterranean, Atlantic Atlantic Ocean demonstrates the country's blue water force capability. He also commended the Indian Navy for maintaining a high level of combat readiness, noting that it is acting as a strategic anchor in realizing India's resolve of becoming a developed nation by 2047. With Priya Mondal, Netika Gupta, Akashwani News, Delhi.
2: Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multidimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference, Rabi Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Toor, Urad and Masoor at minimum support price.
3: It is our collective responsibility to ensure that farmers get a fair price for their produce. We need to connect farmers with the market through both systems, with MSP and without MSP. It has been decided that the government will purchase 100% of Toor, Masoor and Urad. However, whether it is a Kharif or a Rabi crop, the procurement arrangement should be made properly in advance so that farmers receive payment within 48 hours.
2: Home Minister Amit Shah is visiting Punjab today to flag in Nasha Mukt Punjab Yatras in Jalandhar. The Home Minister will also hold a gathering on the occasion. The Yatras, which were launched by BJP President Nitin Naveen on 18th of this month from Pathankot, have covered a distance of 4,000 kilometers in all the 117 assembly constituencies in 13 days. The objective of Yatras was to transform the fight against drugs in Punjab into a people's movement. In Jammu and Kashmir, a top Lashkar-e-Tayyaba terrorist was killed in an encounter with security forces in Budgam district yesterday evening. The terrorist was identified as Fauzi Musa, a top Lashkar-e-Tayyaba commander. In a social media post, the Indian Army's Chinar Corps said the operation was carried out jointly by the Army, Police and the Central Reserve Police Force in Korag near Yusmarg in Budgam. The Election Commission has organized special enrollment camps at colleges and universities of Delhi with the objective of maximizing the enrollment of young electors. A large number of students visited the camps yesterday to seek information on the Special Intensive Revision or SIR and to obtain or submit electoral forms. India has reaffirmed its commitment to the goal of a nuclear weapons-free world and the complete elimination of nuclear weapons. Secretary West in the Ministry of External Affairs, Sibi George, delivered India's statement at the high-level plenary meeting to commemorate the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons at the UN headquarters in New York. In men's cricket, India will face the West Indies at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati today in the second ODI of the three-game series. The match will begin at 2 p.m. Indian Standard Time. After a convincing 8-wicket victory in the opening match in Thiruvananthapuram, India aims to extend their lead in the series and establish an insurmountable advantage. With Virat Kohli and Shubman Gill each scoring a century in the first ODI, the hosts are confident going into the second game and looking to continue their strong batting performance. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ है 7:10 और 15 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आप सुनेंगे भारत भूषण के गाए हुए भजन। तो आइए सुनते हैं भजन। कलाकार हैं भारत भूषण।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आपने सुना भारत भूषण के गाए भजन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है 7:30:25 और ये वक्त होता है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का।

ये तो भरी गुड मॉर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मैं कुसुम पवार और दोस्तों बहुत ही प्यारे और मधुर गीत आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। दोस्तों वक्त बहुत खास है क्योंकि जो पल अभी हमारे पास है वो अगला पल आते ही बीत जाएगा। वक्त को जिसने समझ लिया उसने शायद जिंदगी को बहुत कुछ समझ लिया है दोस्तों।

जी हाँ दोस्तों, आने वाला पल जाने वाला है। जो वक्त आज हमारे पास है वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आने वाला पल भी एक दिन बीता हुआ कल बन जाता है। फिर क्यों ना इन छोटी सी जिंदगी को हंसकर, खुश रहकर और अच्छे कर्म करते हुए बिताया जाए। किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा करने में, किसी से नाराज रहने में, किसी की कमियां ढूंढने में आखिर लोगों को मिलता ही क्या है। बेहतर यही है कि हम अपनी खूबियों पर ध्यान दें, अपने कर्मों को अच्छा रखें और जितना भी हो सके उतना प्यार, सम्मान और सुकून बांटें।

जहाँ दोस्तों जो भी है बस यही पल है, जहाँ आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग कुसुम पवार के संग, और हम आपको प्यारे प्यारे मधुर से गीत सुनवा रहे हैं। दोस्तों जिंदगी बहुत छोटी है, इसे शिकायतों में नहीं सुकून मुस्कान और अच्छे कर्मों में बिताइए, क्योंकि वक्त गुजर जाता है दोस्तों, लेकिन हमारे कर्म और हमारे व्यवहार ही याद रह जाते हैं। ऐसा मानिए कि लोग आपकी मौजूदगी को याद करें, आपकी अच्छाई को याद करें और आपसे दोबारा बात करने की चाह रखें। हम इतने बड़े बने ये नहीं कि हम कितने बड़े हैं, हम कितने अच्छे इंसान हैं ये बनना ये ज्यादा मायने रखता है। हमारी अच्छाई लोगों को प्रेरित करे, बस यही होना चाहिए, और लोग कहें कि तेरे पास आकर मेरा वक्त गुजर जाता है।

ये आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं, हर पल आगे निकलने की जल्दी हो, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं, कभी कभी धीरे चलना भी जरूरी है ताकि रास्ते की खूबसूरती महसूस कर सके। हम कहते हैं जैसे अभी आपने सुना, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, क्योंकि कई बार मंजिल से ज्यादा खूबसूरत कभी कभी सफर होता है। दोस्तों तो आज इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं, महसूस करना भी होता है।

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी इतनी हसीन है कि जिंदगी को जब हम जीते हैं तो रास्ते में कुछ खूबसूरत पड़ाव भी आते हैं जिन्हें दृश्यों को देखकर लगता है कि बस थोड़ा पल ही रुक जाए, और हम सोचते हैं कि समय क्यों जल्दी भाग रहा है और इस सफर की खूबसूरती महसूस करना चाहते हैं, और हम शायद इन्हीं खूबसूरत पड़ावों पर चलते चलते आंखों में कुछ ख्वाब भी आने लगते हैं, कुछ ऐसे ख्वाब जिन्हें देखकर लगता है कि जैसे चारों तरफ गुल खिल गए हों।

दोस्तों, जिंदगी भी कुछ ऐसे ही है। अकेले जब चलते हैं तो रास्ते लंबे लगते हैं, लेकिन कोई साथ चले तो हमारी धुन को अपनी धुन में मिला ले तो सफर बहुत आसान हो जाता है और संगीत बन जाता है। और कुछ ऐसे ही बात कही गई है इस गीत में। ख्वाब की भी बात हो रही है, लेकिन जब ख्वाब में सुर मिल जाए तो शायद वो ख्वाब एक खूबसूरत हकीकत बदल जाता है। दोस्तों,

दोस्तों आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग और अब हम बात करते हैं सुर की। दोस्तों जब हमारे ख्वाबों के साथ कोई अपनी धुन को मिला ले, हमारे साथ सुर से सुर मिला ले, तो क्या ही बात हो जाती है। दोस्तों इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मुझे यानी कुसुम पवार को दीजिए इजाजत, और किसी नई सुबह नई धुन और नए ख्वाब के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। 8 बजने को है। ये दिल्ली आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 8 बजने को है। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और भारत वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि यह घटनाक्रम भारतीय नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में नौसेना के प्रयासों को दर्शाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत विनिर्माण तंत्र अब वैश्विक मानकों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमरीका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का ये बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद तीन प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस दृष्टि को जल सुधारों के माध्यम से साकार किया गया है।
2: दशकों तक गुजरात बार बार पड़ने वाले सूखे और भीषण जल संकट की त्रासदी झेलता रहा। इस परिस्थिति को बदलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल प्रबंधन को एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज वेल और नहरों के एक विशाल नेटवर्क की योजना तैयार की गई। सुजलाम सुफलाम जैसी दूरगामी पहल के जरिए बाढ़ के अधिशेष जल को 332 किलोमीटर से अधिक की लंबी नहरों के माध्यम से उत्तरी गुजरात के सैकड़ों गाँवों तक पहुँचाया गया। वहीं ऐतिहासिक योजना के तहत नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों तक पहुंचाकर 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया। राज्य भर में 1.85 लाख से अधिक चेक डैम बनाए गए। जल संकट से जल सुरक्षा की इस अभूतपूर्व सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में

0: पहुंचाया गया, आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं।
1: जल सुरक्षा के इस विस्तृत तंत्र ने राज्य के लाखों किसानों के जीवन में स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि का संचार किया है। सौनी योजना से अपने जीवन और खेती में आए सकारात्मक बदलाव को बयां करते हुए अमरेली जिले की महिला किसान लाभूबेन सरोला कहती है,
2: सौनी योजना के आने से हमारे गांव में नहर आई, पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
1: आज गुजरात का यह दूरदर्शी जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए जल संरक्षण, कृषि समृद्धि और सतत विकास की एक बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में असम में बोगी पुल का उद्घाटन किया। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है।
4: बोगीबील पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। 4.94 किलोमीटर लंबा यह दो स्तरीय रेल सह सड़क पुल भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। यद्यपि इसकी आधारशिला वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कई वर्षो तक इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग चिकित्सा, आपात स्थितियों, शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए कुछ ही मिनटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। एक रिपोर्ट।
5: अगले महीने की 4 और 11 तारीख को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करें। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक दिल्ली में 4 लाख से अधिक सुनवाईयां की जा चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिले हैं उन्हें बूथ लेवल अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल मैच में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारत ने हांगझोऊ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत प्रतियोगिता में अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है।

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में मजबूत होते रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तल्ख टिप्पणी अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, अमेरिका ने आतंकवाद पर भारत की चिंता नहीं समझी तो रिश्तों पर असर। इसी खबर पर दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की सुर्खी है, पाकिस्तान से गलबहियां पर अमरीका से बोले जयशंकर, आतंकवाद पर कोई सहानुभूति नहीं, इससे रिश्ते प्रभावित होंगे। दैनिक जागरण ने कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा 10 गुना तक कीमत बढ़ाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी प्रकाशित की है। अस्पतालों में 10 गुना कीमतों पर दवा बेचना नरसंहार। राजधानी में यातायात को नई रफ्तार देने के लिए बनाए गए बारापोला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुगरबा चौक अंडरपास के उद्घाटन की भी खबर कई समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। हिन्दुस्तान ने सौगात शीर्षक से लिखा है, मयूर विहार से एम्स तक बिना रुके सफर करें। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मयूर विहार से एम्स की यात्रा 15 मिनट में। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से खबर छापी है, सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जारी, जाट सिख प्रतिरोध भी नौवीं के कोर्स में शामिल। लिखा, एनसीईआरटी की नई किताब में मेवाड़ के रणबांकुरों की कहानी। पत्र ने कोलकाता में होने वाले एक भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का भी चित्र प्रकाशित किया है। पंडाल में 1000 किलोग्राम पुराने अखबारों से पंडाल से सजाएगा।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। यह इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।

0: Cricket Stadium in Guwahati today in the second ODI of the three-game series. The match will begin at 2 p.m. Indian Standard Time. After a convincing 8-wicket victory in the opening match in Thiruvananthapuram, India aims to extend their lead in the series and establish an insurmountable advantage. With Virat Kohli and Shubman Gill each scoring a century in the first ODI, the hosts are confident going into the second game and looking to continue their strong batting performance. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
1: Thank you, Shagun. The iconic victory shot of the Fantastic Four with their Ramraj, M.R. Povamma, Prachi Singh and Kiran Pahal, who ran a great race in the women's 4x400m relay to give India its first athletics gold at the 2026 Asian Games, appears across all front pages this morning. The Pioneer headlines: Amit Shah opens Barapula Phase 3, promises smoother East-South link. U.S. forces to leave Iraq after 2+ decades. Today, headlines in the Sun Times. India-US FTA will improve ties, says EAM. S. Jayashankar notes the Asian age. Air India to resume direct Delhi-Tel Aviv flights from December 1, informs the Pioneer. And finally, a Financial Express article titled "The Battle for the Screen Time" informs brands are working to walk the scrolling Gen Z audience from discovery to fandom to purchase without losing them to a rival. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Indian Navy to induct record 18 warships in 2026, marking largest single-year force expansion in its history. Most wanted Lashkar-e-Tayyaba terrorist killed in an encounter with security forces in Budgam district of Jammu and Kashmir. IMD forecasts heavy rain in interior Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and northeastern states today. India reaffirms its commitment to achieve nuclear weapons-free world and complete elimination of nuclear weapons. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to participate in G20 Trade Ministers meeting in Wisconsin, US today. Indian women's compound archery team bags gold medal at Asian Games in Japan. And in men's cricket, second ODI between India and West Indies to be played in Guwahati this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारतीय बहरिया अपनी तारीख में किसी एक साल में की जाने वाली सबसे बड़ी तौसी के तहत साल 2026 में 18 जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करेगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में लश्कर तैयबा का सबसे मतलूब दहशतगर्द मारा गया। भारतीय नेशनल मौसमियात ने अंदरूनी कर्नाटक, केरलम, शुमाल मशरक रियासतों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारत ने न्यूक्लियर हथियारों से पाक दुनिया और न्यूक्लियर हथियारों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म के तहत अपनी अहम बस्तरी की तौसीक की है। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल आज अमरीका के विस्कॉन्सिन में G20 वज़रा तिजारत की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जापान में जारी एशियाई खेलों में तीरंदाजी में भारतीय खवातीन की कंपाउंड टीम ने सोने का तमगा जीता है। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर गुवाहाटी में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा एक रोजा बैन अलावा मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। भारतीय बहरिया अपनी तारीख में किसी एक साल में की जाने वाली सबसे बड़ी तोसी के तहत साल 2026 में 18 जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करेगा। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक ही साल में 18 बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करने या उन्हें कमीशन करने के बहरिया के मंसूबों पर 2026 को तारीखी साल करार दिया है। कल नई दिल्ली में भारतीय बहरिया की साल में दो बार होने वाली कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि ये पेशरफ्त घरेलू बहरी जहाज साजी निजाम में भारत की बढ़ती मोतबरियत की अक्कासी करती है। दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी से मुतालिक बहरिया की कोशिशों का जिक्र करते हुए वजीर दिफा ने जोर देकर कहा कि भारतीय बहरिया का बहरी जहाजों की तैयारी का इको निजाम अब आलमी पैमानों पर पूरा उतर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए बहरी जहाज 75% से ज्यादा देसी साख्त के हैं। वजीर दिफा ने मौजूदा निजाम की अहमियत

0: हमारे गांव में नहर आई, पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी को कमा सकते हैं। इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
1: जापान में जारी एशियाई खेलों में तीरंदाजी में भारतीय खवातीन की कंपाउंड टीम ने सोने का तमगा जीता है। भारतीय टीम ने ओकाजाकी चौसोगो पार्क में खेले गए फाइनल मैच में आज चीन को 234 के मुकाबले 238 से शिकस्त दी। मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 एकरोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बिरसा पाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले एकरोजा मैच में 8 विकेट से शानदार जीत हासिल करने के बाद भारत सीरीज में नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगा। पहले एकरोजा मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने सेंचुरियां स्कोर की थी जिससे मेजबान टीम के हौसले बुलंद हैं और वो दूसरे एकरोजा मैच में भी बेहतरीन बल्लेबाजी के सिलसिले को जारी रखना चाहेगी। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं फरीम अहमद।
2: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबार की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इंकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हवाले से सुर्खी लगाई है कि बहरे हिंद में सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने वाला भारत पसंदीदा सिक्योरिटी पार्टनर। अखबार ने शहरी हवाबाजी के वजीर के बयान को अहमियत देते हुए लिखा है नायडू ने दुनिया को भारतीय हवाबाजी की मार्केट से जुड़ने की दावत दी। इसी अखबार की एक और सुर्खी है वजीर खजाना सीतारमन ने दोहा में नेपाल सऊदी अरब के वजराए खजाना के साथ दो तरफा अहमियत की हामिल मीटिंगें की।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारतीय बैरिया अपनी तारीख में किसी एक साल में की जाने वाली सबसे बड़ी तौसी के तहत साल 2026 में 18 जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करेगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का सबसे मतलूब दहशतगर्द मारा गया। भारतीय महकमे मौसमियात ने अंदरूनी कर्नाटक केरलम और शुमाल मशरकी रियासतों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारत ने न्यूक्लियर हथियारों से पाक दुनिया और न्यूक्लियर हथियारों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म के तहत अपनी अहद बस्तगी की तौसीफ की है। और कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल आज अमरीका के विस्कॉन्सिन में G20 गुजरात तजारत की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आप सुनेंगे सोनाली नाटा से ठुमरी, राग मिश्र रामदासी मल्हार और मिश्र सिंध भैरवी, साथ ही दादरा राग मिश्र भैरवी।

साहब, 10:05 पर उसने गजल प्रोग्राम में गैर फिल्मी गजलें नशर होंगी। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे एक फीचर दिल्ली के आस्ताने। 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम में फिल्मी नगमे नशर किए जाएंगे। 11:30 पर एक और फीचर सुनिएगा जिसका उन्वान है मन्नत। दिन में 12 बजे खबरें नशर होंगी। 12:10 से आप सुनेंगे फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये प्रोग्राम 1:00 से 1:00 बजे तक जारी रहेगा। दौरान प्रोग्राम 12:40 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम तारीख साज आलमी खबरें। दिन में 1:00 बजे नशर होंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नजर इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

0: सुबह का ही प्रोग्राम में अभी अभी ये शब्द सुन रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ प्रमुख घटनाओं के जिक्र का। आज 30 सितंबर है और आज की तारीख में खेल से लेकर सिनेमा तक कुछ ऐसे पन्ने दर्ज हैं जो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देते हैं। साल 2003 में आज ही के दिन भारत के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतकर पूरी दुनिया में तिरंगा लहराया था। वे चेस की दुनिया के वे बादशाह हैं जिन्होंने भारत में इस खेल की परिभाषा ही बदल दी और आज देखिए कितने ग्रैंड मास्टर्स भारत ने दिए हैं। साल 2009 में आज ही के दिन संगीत के महानायक और प्रख्यात पार्श्व गायक मन्ना डे को साल 2007 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया था। उनकी आवाज का जादू ऐसा है कि आज भी जब हम उन्हें सुनते हैं तो रूह खुश हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद यानी साल 2010 में आज ही के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने दशकों पुराने विवादित बाबरी मस्जिद मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अदालत ने जमीन को तीन हिस्सों में बांटकर रामलला विराजमान, नरमोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक एक हिस्सा देने का आदेश दिया था, जिसने आगे चलकर इस पूरे मामले को नई दिशा दी। और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आज हमारे सबसे पसंदीदा और आखिरी सेगमेंट का, जिसका जिक्र हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही किया था। और यहां हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। हम याद कर रहे हैं उर्दू साहित्य और शायरी के उस मुकद्दर को जिन्होंने उर्दू अदब को एक नई दिशा दी। आज महान कवि, लेखक और आलोचक अल्ताफ हुसैन हाली की पुण्यतिथि है। हाली साहब का जन्म 1837 में पानीपत में एक विद्वान अंसारी परिवार में हुआ था। तंगहाली के बावजूद उनका पढ़ने का जज्बा ऐसा था कि वे दिल्ली आ गए और दिल्ली में उन्हें उर्दू के सबसे महान शायर मिर्जा गालिब का साथ मिला और वे उनके सबसे चहेते और आखिरी शागिर्दों में से एक बने। हाली साहब ने रूढ़िवादी शायरी छोड़कर समाज को जगाने वाली कविताएं लिखी। उन्होंने एक महाकाव्यात्मक नज्म लिखी मुसद्दस ए हाली। इसके अलावा उनकी नज्में हुब्बे वतन यानी कि देश प्रेम और बरखा रुत आज भी साहित्य के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का हिस्सा है। उन्होंने गालिब की जीवनी यादगार गालिब भी लिखी। हाली साहब की शायरी सिर्फ दिल बहलाने वाली नहीं थी बल्कि जिंदगी में हमेशा कुछ बेहतर तलाशने का एक फलसफा थी। उन्होंने बेहद मशहूर गजल में ये कहा है कि इंसान को कभी एक जगह नहीं ठहरना चाहिए बल्कि हमेशा सर्वश्रेष्ठ की तलाश करती रहनी चाहिए। अल्ताफ हुसैन हाली के इस बेमिसाल साहित्यिक योगदान, समाज सुधार और उनकी विद्वता को देखते हुए साल 1903 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उस दौर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान और उपाधि शमसूल उलेमा यानी विद्वानों का सूर्य से नवाजा था। और आज ही जयंती है सादगी के सबसे बड़े जादूगर, महान फिल्म निर्देशक, लेखक और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी की, जिन्हें प्यार से पूरी इंडस्ट्री ऋषि का दा कहती थी। 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में जन्मे ऋषिका दा ने विज्ञान और गणित की पढ़ाई की थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें रुपहले पर्दे की दुनिया में ले आई। कोलकाता में मशहूर फिल्म मेकर विमल रॉय के प्रोडक्शन में एक कटर और एडिटर के रूप में ऋषिकेश ने अपने सफर की शुरुआत की थी। यही उनका असली सिनेमाई घराना बना, जहां उन्होंने दो बीघा जमीन और देवदास जैसी क्लासिक फिल्मों की एडिटिंग की। बाद में वे मुंबई आ गए। 1957 में फिल्म मुसाफिर से बतौर निर्देशक कदम रखा। उन्होंने राज कपूर, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार्स को उनके करियर के

0: सिनेमा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें साल 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। उनकी फिल्मों में जैसे आनंद और अनुराधा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और एडिटर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। उनकी फिल्म आनंद का एक डायलॉग आज भी हम सब के जीने का फलसफा है।
1: क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में? मौत एक पल है बाबू मशाए, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? बाबू मशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बाबू मशाए जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो डर किस बात का?
0: बहुत खूब, आज भी इससे लोग अपना फलसफा मानते हैं। तो आइए फिल्म आनंद से ही वो सदाबहार और दार्शनिक गीत सुनते हैं जिसे मन्ना डे की शानदार आवाज ने अमर कर दिया है।
2: जिंदगी कैसी है पहेली है, कभी तो हटा

इस गजल के साथ ही आज का हुस्ने गजल प्रोग्राम अब खत्म हुआ। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। सुनिए प्रोफेसर निसार अहमद फारूकी का तहरीर करदा फीचर, दिल्ली के आस्ताने।

जो कल भी हिंदुस्तान का दिल थी और आज भी सारी दुनिया की निगाहों का मरकज है। यहां के दर्रे दर्रे में हजारों साल की तारीख झलक रही है। हाली ने गलत नहीं कहा था, लेके दाग आएगा सीने पे बहुत ऐसा या देख, इस शहर के खंडरों में न जाना हरगिज, चप्पे चप्पे में है यहां गौहर यक्ता तह खाक, दफन होगा न कहीं इतना खजाना हरगिज। इसी दिल्ली में जहां दुनियावी बादशाहों के आलीशान मकबरे उनकी अजमत और जलाल के पुराने किस्से दोहरा रहे हैं, वहीं रूहानी मुमलकत के ताजदारों की बोसीदा खानकाहें हैं और दरगाहें भी उन खुदा मस्त दरवेशों की बुजुर्गी और फैजान आम का ऐलान कर रही हैं। उन शहनशाहों की हुकूमत ताकत से बनी थी और जमीन पर थी। इन रूहानी बादशाहों ने अपनी सल्तनत मोहब्बत से उस्तवार की थी और दिलों पर थी। वो दुनिया की हुकूमतें खत्म हो गईं और तारीख के सुफों में जा छुपी। ये हुकूमतें आज भी कायम और नाफिज हैं, इनका सिक्का आज भी चल रहा है, इनके दरबारों में आज भी वही रौनक, वही चहल पहल और रूहानी मसरतों की वही दाद और दहश। इनमें सबसे शानदार दरबार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन अजमेरी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन और खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर रहमत का है।

0: आज से तकरीबन 735 साल पहले 1236 ईस्वी में ऐसी ही एक महफिल समा शेख अली सुजस्तानी की खानकाह में मुनक़िद हुई थी, जिसमें हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काशी रहमतुल्लाह अलैह ने तशरीफ फरमाते और किसी शेर पर उन्हें कैफियत तारीफ हुई। हजरत निजामुद्दीन औलिया फवायदुल फवाद में फरमाते हैं,
1: शेख जब अली संजरी की खानकाह से अपने घर आए तो मदहोश थे, इसी शेर को बार बार पढ़वाते थे। नमाज का वक्त आ जाता था तो नमाज अदा करते थे और फिर आलम हैरत में खो जाते थे। चार दिन रात यही हालत रही, पांचवी शब में इनका विसाल हो गया। शेख बदरुद्दीन गजनवी फरमाते थे,
0: मैं उस शब कुतुब साहब की खिदमत में हाजिर था, जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो मुझ पर गुनू की तारीफ हुई। बाद में देखा कि कुतुब साहब अपने हुजरे से निकलकर आसमान की तरफ जा रहे हैं।

64 खंबे पर कव्वाली हाल में महफिल समा होती है, जिसमें हजारों अकीदतमंदों का हुजूम होता है। हर मजहब व मिल्लत के अफराद शरीक होते हैं। गैर मुल्की बाशिंदे और सुफरा भी खराज अकीदत पेश करते हैं। हिंदुस्तान भर से कव्वालों की चौकियां अपने कमालात का मजाहरा करने जमा होती हैं।

ये है वो दिल्ली जिसे 22 ख्वाजा की चौखट कहते हैं, जहां आपने आज आसमानों की हल्की सी झलक देखी। ये इन बुजुर्गों के ऐसे रूहानी आसार हैं जहां आज भी खस्ता दिलों को मरहम मिलता है, आज भी

अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर निसार अहमद फारूकी का लिखा ये फीचर दिल्ली के आस्ताने। पेशकश अनवर खान की थी। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। यह मोहम्मद रफी फिल्म है।

सूरत है भोली सी कातिल हर कदा, दिलो जान से हुआ हूँ मैं तो उस पे पिता। कोई जाने ना जाने, कोई माने ना माने, मैं तो

कली से है नाजुक, फूलों से भी हंसी, मेरे यार जैसा कोई भी जमाने में नहीं। उस जैसी नाजनी, उस जैसी दिलनशी, दिया लेके भी जो ढूंढो तो मिलेगी ना कहीं।

आशा भोसले की आवाज में ये नगमा भी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था ये रात फिर न आएगी। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में है। फिल्म का नाम है पुनर्मिलन।

हम दफे की आवाज में ये नगमा भी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था आखिरी दाव। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर को सुनिए फिल्म है आसरा।

लता मंगेशकर की आवाज में ये नगमा हमने आपको सुनवाया आसरा फिल्म से। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद का ये शुमारा अब यही खत्म हुआ। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। आप सुनिए जनाब सुरेंद्र वर्मा का तहरीर करदा फीचर मन्नत, पेशकश प्रेम वोहरा की है।

आज हम हिंदुस्तान की तारीख का आपके सामने वो सुनहरा वर्क खोल रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक शानदार यादगार है, वो यादगार जिसे हम आज भी फूल वालों की सहर के नाम से मनाते हैं।

0: दिल्ली के तख्त पर शाह आलम के बेटे शाह अकबर शाह सानी रौनक अफरोज थे। अंग्रेजी हुकूमत अपने पैर मजबूती से हिंदुस्तान में जमा चुकी थी। शाह अकबर शाह सानी अपने बड़े बेटे सिराजुद्दीन को ना चाहकर मंझले बेटे मिर्जा जहांगीर को वली अहद मुकर्रर करना चाहते थे। उनकी बेगम मुमताज महल की भी यही ख्वाहिश थी। तारीख के वर्क की इस यादगार की शुरुआत मिर्जा जहांगीर की सालगिरह से होती है। बादशाह अकबर शाह सानी दरबार खास में रौनक अफरोज है और रक्स मौसीकी की महफिल जमा है।
1: वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब जरीना, मां बदौलत तुम्हारे फन की दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। तुम्हारे पांव में गजब की थिरकन है। हमें फख्र है कि हमारी सल्तनत में ऐसे फनकार मौजूद हैं जिनसे मुल्क की इज्जत में चार चांद लग जाते हैं। हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम तुम्हारे फन को और तरक्की अता करे। ये लो तुम्हारा इनाम।
2: ओह मोतियों का हार, ये आपका करम है बादशाह सलामत, वरना बंदे किस काबिल है।
1: बहुत खूब, हम खुश हुए। महमूद बेग
3: आलम पना,
1: आज इस खुशी के मौके पर हम चाहते हैं कि अपने लखते जिगर मिर्जा जहांगीर को अपना वली अहद मंसूब करें। हमने तुम्हें रेजिडेंट सीटन के पास मिर्जा जहांगीर की बाबत मशवरे के लिए भेजा था, उसकी राय क्या है?
3: आलम पना, सीटन साहब शहजादा मिर्जा जहांगीर को वली अहद मानने को तैयार नहीं है।
1: सबब?
3: आला हजरत, वो कहते हैं हक बड़े बेटे का है, इसलिए शहजादा सराजुद्दीन को ही वली अहद मंसूब किया जाए।
1: और
3: बेअदबी माफ वालिया, मुझे तो इस मामले में उनकी खास नाराजगी दिखाई देती है।
1: वो क्या?
3: वो कहते हैं मिर्जा आवारा हैं, नालायक हैं, उन्हें बात करने की तमीज।
1: महमूद बेग,
3: जहां बख्शी हो बंदा परवर।
4: अब्बा जान, ये हमारे घर की बातें हैं, हमारी अपनी बातें, इसमें सीट की दखल अंदाजी क्यों?

परवरदिगार आलम, ये गुनाहगार नाचीज बंदी तेरी दरगाह में सजदा रेज है और गिड़गिड़ा कर तुझसे दुआ करती है कि अगर मेरा बेटा जेल से रिहा होकर बखैरियत वापस आएगा तो मैं तेरे नेक बंदी हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी अला रहमत के मजार पर फूलों की चादर चढ़ाऊंगी।

0: और फिर एक अरसे के बाद,
1: कौन है, कौन है उधर?
2: कोई नहीं, मैं हूँ।
1: कितनी बदल गई है दुनिया। कहता है कोई नहीं है, मैं हूँ, मैं, ये मैं ही इंसान को खा जाती।
2: मैं चंदन हूँ बाबा, जहाज महल देखने आया था। तुम कौन हो?
1: मुझे नहीं जानते, क्या जानोगे तुम? मैं रखवाला हूँ इस जहाज महल का।
2: इस महल का?
1: हाँ।
2: खंडरों का?
1: इन्हीं खंडरों का, इसी जहाज महल का, जो खंडरों में बदल गया।
2: ये कैसे हुआ बाबा, मुझे बताओ ना।
1: क्या बताऊ तुम्हें, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जो भी आता है हम हा परेशान करता है मुझको।
2: गुस्सा ना करो बाबा,
1: खुदा के लिए चले जाओ। मैं कहता हूँ चले जाओ, क्यों मेरे जख्मों को कुरेदते, फूट जाएंगे मेरे दिल के पपोले। जाओ जाओ, किसी गमजदा को यूं सताया नहीं करते।
2: अपना गम मुझे दे दो बाबा।
1: क्या गम दे दूं तुम्हें, मेरा जहाज महल खंडरों में तब्दील हो गया। कभी यहाँ फूल वालों की सैर मनती थी, अब क्या रखा है यहाँ? अब तो मैं, मेरी वीरानिया।
2: एक बात बताओ बाबा।
1: बोलो।
2: इस साल फूल वालों की सैर नहीं होगी क्या?
1: अब कैसी फूल वालों की सैर, किसके लिए, कौन मनाएगा?
2: अपने बादशाह की याद के लिए हम दोनों ही मनाएंगे बाबा। लोग आएंगे, सब आएंगे, सब कुछ होगा बाबा,
1: इंशाल्लाह।
0: वक्त ने फिर करवट ली। भारत के हरदिल अजीज प्रधानमंत्री आजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेक ख्वाहिशात से अंजुमन सैरे गुल फरोशा ने इस मेले में फिर से एक नई रूह भोंकी। और अब ये मेला हर साल हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का जीता जागता सबूत बनकर हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है।

कॉल वालों की सैर के हवाले से ये फीचर था जिसका उन्वान था मन्नत। पेशकश प्रेम वोहरा की थी और तहरीर थी जनाब सुरेंद्र वर्मा की। हिस्सा लेने वाले फनकार थे कुलदीप अख्तर, राजगुप्त मौर्य, अश्वनी कुमार, टी आर मेहता, मंगत राम, अजीज कुरैशी,

सरला नागिया, सपना सैनी, विनीता भल्ला और हेमेंद्र नाथ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।

कहा में एक रूसी स्ट्रेटेजिक बम्बार तैयारा कल मुल्क के मशरकी बईद में एक तरबीती मश्क के दौरान गिरकर तबाह हो गया, जिसमें अमले के 6 अफराद हलाक हो गए। वजारत ने एक बयान में कहा कि TU-95 बम्बार तैयारा अमूल खत्ते में एक गैर आबाद इलाके में हादसे का शिकार हुआ। बयान में मजीद कहा गया कि अमले का एक फर्द हादसे में बच गया है और जख्मी हालत में उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे की वजह मालूम करने के लिए तफ्तीशकारों की एक टीम इलाके में पहुंच गई है। भारतीय बहरिया अपनी तारीख में किसी एक साल में की जाने वाली सबसे बड़ी तौसी के तहत साल 2026 में 18 जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करेगी। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक ही साल में 18 बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करने या उन्हें कमीशन करने के बहरिया के मंसूबों पर 2026 को तारीखी साल करार दिया। कल नई दिल्ली में भारतीय बहरिया की साल में 2 बार होने वाली कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि ये पेशरफ्त घरेलू बहरी जहाज साजी निजाम में भारत की बढ़ती मोतबरियत की अक्कासी करती है। दिफाई शोबे में खुद इन्हसारी के वसूल से मुतालिक बहरिया की कोशिशों का जिक्र करते हुए वजीर दिफा ने जोर देकर कहा कि भारतीय बहरिया का बहरी जहाजों की तैयारी का इको निजाम अब आलमी पैमानों पर पूरा उतर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए बहरी जहाज 75% से ज्यादा देसी साख्त के हैं। वजीर दिफा ने मौजूदा निजाम की अहमियत का एतराफ करते हुए भारत के बहरी निगरानी निजाम खतरखा अपडेट पर जोर दिया। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि बहरी आमदोरफ्त का बढ़ता हजम और पेचीदगियां तजियाती सलाहियतों की मांग करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बहरिया की जदीदकारी के हुकूमत के अज़्म को नुमाया करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के नजरिए की तकमील में भारतीय बहरिया स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम रोल अदा करेगी। भारतीय महकमे मौसमियात में अंदरूनी कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और शुमाली मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। वहीं महकमे मौसमियात ने साहिली आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज गरज व चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में महकमे मौसमियात ने आज दिन में मुतला साफ रहने की पेशगोई की है। दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और कम अज कम दर्जे हरारत 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। जापान में जारी एशियाई खेलों में साहिल यादव और चिकिता तनिपार्थी पर मुश्तमिल कंपाउंड मिक्स तीरंदाजी टीम ने सोने का तमगा जीता है। भारतीय टीम ने फाइनल में शूटआउट के दौरान कोरिया को शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारतीय जोड़ी 2028 ओलंपिक कोटा हासिल करने में कामयाब रही। उन्होंने सेमीफाइनल में थाईलैंड को हराया था। इससे पहले तीरंदाजी में भारतीय खातिन की कप्तान टीम ने सोने का तमगा जीता। भारतीय टीम ओकाजई चौसू गो पार्क में खेले गए फाइनल मैच में आज चीन को 234 के मुकाबले 238 से शिकस्त दी। ज्योति सुरेखा वेनम, चिकिता तेनपार्थी और प्रतीका प्रदीप पर मुश्तमिल भारतीय टीम सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया को 233 के मुकाबले 234 से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची थी। भारत ने 2023 में हांगजू एशिया खेलों में भी खवातीन के कंपाउंड टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता था। भारत एशिया खेलों में मजमूई तौर पर 53 तमगों के साथ नवे पैदान पर है। इसमें सोने के साथ चांदी के 21 और कांसे के 25 तमगे शामिल हैं। मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 एकरोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बिरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक यह मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले एकरोजा मैच में 8 विकेट से शानदार जीत के बाद भारत सीरीज में नाकाबिले शिकस्त बर्तरी हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगा। पहले एकरोजा मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने सेंचुरियां स्कोर की थी, जिससे मेजबान के हौसले बुलंद हैं और वह दूसरे एकरोजा मैच में भी बेहतरीन बल्लेबाजी के सिलसिले को जारी रखना चाहेगी। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार और। कानून से सनतों के अजीज पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका अपने इकतसादी ताल्लुकात में आई तेजी का मुशाहिदा कर रहे हैं। भारत ने न्यूक्लियर हथियारों से पाक दुनिया और न्यूक्लियर हथियारों के मुकम्मल

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये नगमा आरती फिल्म से था। फिल्मी दो गानों का ये प्रोग्राम अभी जारी है। वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है मौलाना जलालुद्दीन रूमी।
1: मौलाना रूम का नाम मोहम्मद और लकब जलालुद्दीन है। शोहरत आपको मौलाना रूम के नाम से मिली। नस्ब का सिलसिला हजरत अबू बकर सिद्दीक से जा मिलता है। सन 604 हिजरी में बलख में पैदा हुए। उनके वालिद और दादा का नाम भी मोहम्मद था। वालिद का लकब बहाउद्दीन था। मौलाना बहाउद्दीन के इरादतमंदों की तादाद बहुत ज्यादा थी। उनके यहां मजमे को देखकर बादशाह वक्त ख्वारिज्म शाह को तशवीश हुई कि कहीं अवाम किसी वक्त हुकूमत के बागी न

कुमार सानू के साथ ये थी अलका याग्निक, एक रिश्ता फिल्म से ही नगमा आपने सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश सोनू निगम और श्रेया घोषाल को सुनिए फिल्म है खाकी।

लकी फिल्म का नगमा उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में आपने सुना। इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।

मीडियो वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के इकतसादी ताल्लुकात में तेज रफ्तार देखने में आ रही है। भारत ने न्यूक्लियाई हथियारों से पाक दुनिया और न्यूक्लियाई हथियारों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म के तहत अपने अहद को दोहराया है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने अक़वामे मुत्तहिदा के साथ भारत के तआवुन की सताइश की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बदलकर सुपर इंटेलिजेंस करने का फैसला किया है। टेक्नोलॉजी रहनुमाओं ने एआई को मुंजबित करने में मुआवनत के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं जिस पर अमल करने के लिए वो अखलाकी एतबार से पाबंद होंगे। जापान में जारी एशियाई खेलों में साहिल जाधव और चिकिता कानीपार्थी पर मुश्तमिल भारत की कंपाउंड मिक्स्ड तीरंदाजी टीम ने सोने का तमगा जीता है और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर गुवाहाटी में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच खेला जाएगा। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दोपहर के 1:15 होने को है हमारी पहली मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक

जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज हम एक ही फिल्म से कार्यक्रम में बात कर रहे हैं, 1978 की फिल्म शालीमार की। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एस कुमार यानी कि हमारे धर्मपाजी एक छोटे मोटे से चोर हैं और हालातों के चलते वो सर जॉन लॉक्सलाई के

आइलैंड स्टेट पर आयोजित एक सेलिब्रेशन में राजा बहादुर सिंह के बेटे बहादुर सिंह जूनियर बनकर पहुंच जाते हैं। अब वहां कुछ हो ऐसा रहा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए कई सारे चोर मौजूद हैं और मकसद सबका एक ही है और वो है एक बेहद कीमती हीरा चुराना। कीमती हीरा यानी शालीमार को चुराना। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है एक एक करके लोग या यूं कहें जो कि बेसिकली चोर हैं वो मुसीबत में फंसते ही चले जाते हैं। कहानी में आगे जाकर पता चलता है कि इस पूरे खेल के पीछे सर जॉन का अपना एक बहुत बड़ा मकसद है। खैर अंत में सर जॉन के यहाँ नर्स के रूप में काम करने वाली शीला और कुमार शालीमार को चुराने में सफल हो जाते हैं, लेकिन एक के बाद एक खुलने वाले राज में ये भी पता चलता है कि एक्चुअली सर जॉन ने दुनिया भर के कुशल चोरों को मारने के लिए और शालीमार के संभावित प्रतियोगी को खत्म करने के लिए ये सारा खेल रचा था। और फिर एक और धमाकेदार राज खुलता है और उसमें पता चलता है कि कुमार यानी अपने धर्मपाजी असल में एक चोर नहीं बल्कि सीबीआई ऑफिसर है जो शालीमार को वापस लाने के लिए स्पेशल मिशन पर थे। खैर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है और इस हैप्पी एंडिंग में कुमार और शीला सदा के लिए एक बंधन में बंध जाते हैं।

उषा उत्थुप साहिबा को आप सुन रहे थे फिल्म शालीमार के लिए। वैसे शालीमार को खास बनाने वाली जो बात थी ना, वो थी इसकी इंटरनेशनल कास्टिंग। रेक्स हैरिसन, जॉन सैक्सन और सिल्विया माइल्स जैसे अमेरिकन एक्टर्स के साथ धर्मेंद्र, जीना दवान और वेरी हैंडसम शम्मी कपूर साहब। फिल्म को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बनाया गया था और इंग्लिश वर्जन का नाम था रीडर्स ऑफ द सेक्रेट स्टोन। साथ ही हम आपको बता दें कि 1977 में जब फिल्म का मुहूर्त हुआ था तब उसमें गिना लोलो ब्रिगाडा भी मौजूद थी, हालांकि वे बाद में प्रोजेक्ट से अलग हो गई और उनकी जगह ली सिल्विया माइल्स ने। अच्छा, एक और मजेदार बात, रेक्स हैरिसन साहब की जो हिंदी आवाज थी हिंदी फिल्म में, वो आवाज एक्चुअली कादर खान साहब ने दी थी। जी हाँ, वो आवाज जो आप सुन रहे हैं रेक्स हैरिसन साहब के मुंह से पर्दे पर, उसके पीछे हैं कादर खान साहब, जबकि इंग्लिश वर्जन में धर्मेंद्र साहब की आवाज को भी डब की गई थी। यानी कि एक ही फिल्म में भाषा भी बदली और आवाजें भी।

और ये थे मोहम्मद रफी साहब फिल्म शालीमार के लिए। कृष्णा शाह द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म का आधार जेम्स हैडले चेज के नॉवेल द वल्चर इज अ पेशेंट बर्ड से जुड़ा था और धर्मेंद्र ने मैक्स कैलनबर्ग यानी स्टोरी के मेन कैरेक्टर की भूमिका निभाई थी। लेकिन शालीमार की दोस्तों एक और खास बात थी और वो थी उसका म्यूजिक, आर डी बर्मन साहब का संगीत और आनंद बख्शी साहब के गीत। और आपको पता है इसे बनाना भी कोई आसान काम नहीं था। एक इंटरव्यू में जीनत अमान साहिबा ने बताया था कि फिल्म को इंग्लिश और हिंदी में शूट करते समय कई सीन्स को दोनों भाषाओं के लिए कई बार अलग अलग शूट भी करना पड़ता था।

0: बेहद खूबसूरत गीत और आवाज लता दीदी की। दोस्तों, जब बात हो रही है फिल्म शालीमार की, तो भला इस गीत को हम कैसे भूल सकते हैं।
1: तुम एक बेगैरत इंसान हो।
0: अच्छा, इस गीत के बिना दो वर्जन हमारे पास मौजूद हैं। एक में तो बस 2 मिनट का एक स्टैंजा वाला सॉन्ग है और एक है प्रॉपर पूरा गीत। अब क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय तो हो रहा है समाप्त, तो क्यों ना हम आपको सुनवाए थोड़ा सा लंबा वाला गीत। और पूरा गीत एंजॉय करने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे यानी आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

श्रोताओं, ये थी आज के कार्यक्रम में की फिल्म से की फिल्म शालीमार, जो कि अपने समय की भारत की सबसे महंगी हिंदी फिल्मों में गिनी जाती थी। किशोर कुमार साहब की आवाज में सदाबहार गीत के साथ ही मुझे यानी दीप्ति पाठक को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के नाल मैं सरबजीत कौर, पहले बुलेटिन दिया खास खबरां। भारत ने जापान एशियाई खेडा विच तीरंदाजी विच तीन ते निशानेबाजी विच एक सोने के तमगे समेत सोने के कुल चार तमगे जीते ने। व्यापार के सनत मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका विचकार आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के जलंधर विच नशा मुक्त पंजाब यात्रावां की समाप्ति मौके शामिल होने लई इत्थे पहुंचे ने। रैली नूं करेंगे संबोधन। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कतर व्यापार संघ नूं भारत विच व्यापार और निवेश भाईवाली लई मौकियां दी सरगर्मी नाल कोख करन ते दवल्ले आर्थिक संबंधां नूं होर मजबूत करन दी अपील कीती। सरकार ने मुसाफर वाहनां लई नवे कारपोरेट औसत ईंधन इकोनॉमी CAFE नियमां नूं नोटिफाई कीता है। भारत ने जापान एशियाई खेडा विच कुल चार सोने के तमगे जीते, जिन्हां विच तीरंदाजी विच तीन अते निशानेबाजी विच इक शामिल है। तीरंदाजी विच साहिल यादव, कुशल दलाल अते गणेश मणिरत्नम दी मर्दां दी कंपाउंड टीम ने फाइनल विच चीन नूं हरा के सोने का तमगा जीतिया। साहिल यादव अते चिकिता कनिपार्थी दी मिक्स कंपाउंड टीम ने भी सोने का तमगा जीतिया। इस जीत नाल भारत ने 2028 ओलंपिक लई थां पक्की कर ली है। इस दौरान ज्योति सुरेखा वेनम, चिकिता कनिपार्थी और प्रतीका प्रदीप की औरतों की कंपाउंड टीम ने सोने का तमगा जीतिया। निशानेबाजी विच नीरू टांडा और किनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम मुकाबले विच सोने का तमगा जीत के इतिहास दर्ज किया है। मुक्केबाजी विच प्रिया कांगस ने औरतों के 60 किलोग्राम वर्ग विच कांसी का तमगा जीतिया और कबिल पोखरिया ने मर्दों के 90 किलोग्राम वर्ग विच कांसी का तमगा जीतिया। भारत 10 सोने के 21 चांदी के 28 कांसी के तमगे समेत कुल 9 तमगे नाल सूची विच सातवें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोने के तमगे जीतने के खिलाड़ियों को बधाई दी है। व्यापार के सनत मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका विचकार आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमरीका विच नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स वालों कराई गई एक गोल मेज में संबोधन करते हुए श्री गोयल ने भारत की बढ़ रही सनती अदारत के हुनरमंद कार्यबल की चामना पाया। उन्होंने अमरीकी कंपनियों ने भारत विच निवेश वधाउण, छोटे और दरमियाने आकार के भारतीय उद्यमों नाल भाईवालीकरण और अत्याधुनिक निर्माण में सांझे तौर पर निवेश करने की अपील की थी। श्री गोयल ने कहा कि अजिहा सहयोग मजबूत सप्लाई चेन बनाउण और भारतीय ते अमरीकी आर्थिकतावां लई नवे मौके पैदा करने विच मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह अज जलंधर विच नशा मुक्त पंजाब यात्रावां दी समाप्ति मौके पंजाब दे दौरे ते इत्थे पहुंच गए ने। इस मौके इकट्ठ नूं संबोधन भी करनगे। गृहमंत्री दे दौरे दे मद्देनजर जलंधर विच नो फ्लाइंग जोन ऐलानिया गया है। बीजेपी दे राष्ट्रीय प्रधान नितिन नबीन ने 18 सितंबर नूं पठानकोट तो इस यात्रा की शुरूआत की सी। इह मौजूदा समें विच पंजाब नूं दरपेश तीन वड्डियां चुनौतियां, वधदी नशाखोरी, बिगड़दी कानून व्यवस्था अते शासन दे हर पद्धर ते भ्रिष्टाचार ते केंद्रित है। तेरह दिनों दौरान चार पड़ावों विच 117 विधानसभा हल्कों नूं कवर करदे 4000 किलोमीटर का सफर तय करन ते बाद इह यात्रावां अज खत्म हो रही ने। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता ते केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक सही ते अपडेट कीती वोटर सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नवी दिल्ली विच पत्रकारों नाल गलबात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि वोटर सूची विच गलत या अयोग नामा नूं शामिल करन नाल चोण प्रक्रिया की ईमानदारी ते असर पै सकता है। उन्हां विरोधी धिर दे वोटर सूची विच बेनियमिया ते इल्जाम ते सवाल उठाए। श्री चौहान ने कहा कि मृतक वोटरां दे नाम सूची विचों हटाउण ते कोई इतराज नहीं होना चाहिए।
1: शुद्ध वोटर लिस्ट लोकतंत्र की आत्मा है और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई दुनिया जीवित नहीं बचा उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र।

लंदन इकोनॉमी नियमती था लेंगे नए नियम अगले साल 1 अप्रैल को लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक लागू रहेंगे। ये भारत की वित्तीय बढ़ाए चंद्रामत की गए नए यात्री वाहन से लागू होंगे। पंजाब पुलिस ने कल तो सरहदी जिले अमृतसर में दो वक्त कार्रवाइया में एक टोले समेत 8 व्यक्तियों ने अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल पिस्तौल जिंदा कारतूस और हिरन समेत गिरफ्तार किया है। गैर कानूनी हथियार और नशीले पदार्थों की सप्लाई के नेटवर्क का खात्मा करते अमृतसर देहाती पुलिस ने कल एक पति पत्नी के प्रयास समेत 3 व्यक्तियों के परिवार को एक AK-47 AK-56 असॉल्ट राइफल और कारतूस

ज्यादा गांव मुतासर हुए हैं। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में सोने के 3 तमगे जबकि ट्रैप मिक्स टीम मुकाबले में सोने का 1 तमगा जीता है। भारत ने अब तक सोने के 10 तमगों समेत 59 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने मुसाफिर मोटर गाड़ियों के लिए नए कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी CAFE जाब्ते नोटिफाई किए हैं। ये मौजूदा CAFE जाब्तों की जगह लेंगे और इनका इतलाक 1 अप्रैल 2027 से होगा और ये 31 मार्च 2032 तक नाफिज रहेंगे। भारत में फरोख्त के लिए तैयारी या दरामद नए मुसाफिर मोटर गाड़ियों पर ये लागू होंगे। नए तरीकेकार के तहत ऑटोमोबाइल सनत के लिए ज्यादा इंजिबाती शफाफियत और एक मुस्तहकम पॉलिसी फ्रेमवर्क फराहम होगा। तवानाई की वजारत के मुताबिक नए CAFE तरीकेकार से सभी 5 वर्षों में साल ब साल की बुनियाद पर फ्यूल इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। ईंधन की खपत में तकरीबन 16% से ज्यादा की बेहतरी का हदफ रखा गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कतर के कारोबारी अफराद पर जोर दिया है कि वह भारत के साथ तजारती और सरमायाकारी साझेदारी के इम्कानात सरगर्मी के साथ तलाश करें और दोतरफा बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाएं। दोहा ने कतर के कारोबारी अफराद की अंजुमन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत इकतसादी तरक्की, बढ़ती हुई सरमायाकारी और माली साल 2025-26 के दौरान गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी 94 अरब 50 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह से ज्यादा की आमद को उजागर किया। उन्होंने ये भी कहा कि दर्जाबंदी से मुतालिक जापान की एजेंसी ने हाल ही में भारत की तवील मुद्दती दर्जाबंदी को अपग्रेड किया है। इससे कौल मोहतरमा सीतारमन ने कतर के गैर मुल्की तिजारत के वजीर ममलिकत डॉ अहमद बिन मोहम्मद सईद से मुलाकात की। दोनों वजीरों ने बुनियादी ढांचे, खुराक की यकीनी फराहमी, दवासाजी, पेट्रोकेमिकल्स, तालीम, हिफ्जान सेहत और स्टार्टअप इदारों के शोबों में सरमायाकारी के मौकों पर तबादला ख्याल किया। मोहतरमा सीतारमन ने कतर और खलीज के दीगर मुल्कों के साथ मामूल की तिजारत बहाल करने की अहमियत पर जोर दिया, जिसमें आदनाए हुरमुज के रास्ते, बहरी जहाजों की बिला रूकावट आमद रफ्त और तिजारती लेन देन शामिल हैं। तरफैन ने कतर के 10 अरब डॉलर के सरमायाकारी के वादे, भारत में सरमायाकारी अथॉरिटी से मुतालिक कतर के दफ्तर के कयाम और दोतरफा सरमायाकारी मुआहदे और आजाद तिजारत के समझौते से मुतालिक मुजाकरात में तेजी लाए जाने के मामलों पर भी तबादला ख्याल किया। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के इकतसादी ताल्लुकात में तेज रफ्तार देखने में आ रही है। अमरीका में मैन्युफैक्चरर्स की कौमी अंजुमन के जेर एहतमाम कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने भारत की फरोग पाती हुई सनअती बुनियाद और हुनरमंद अफरादी कुव्वत को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने अमरीकी मैन्युफैक्चरर्स को भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाने, छोटे और दरमियाना दर्जे के कारोबारी इदारों के साथ साझेदारी करने और जदीद तर्ज की मैन्युफैक्चरिंग में मिलकर सरमाया लगाने की खातिर मौके तलाश करने के लिए भी मदऊ किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब पीयूष गोयल ने कहा कि इस तरह के इश्तराक से मजबूत सप्लाई निजाम कायम करने और भारतीय और अमरीकी दोनों मईशतों को तकवीयत पहुंचाने में मदद मिलेगी। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज और कल विस्कॉन्सिन के मिलवॉकी में G20 वुजराए तिजारत के मीटिंग में शिरकत करेंगे। अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेनिसन ग्रीर की दावत पर यह मीटिंग हो रही है। अमरीका के अपने दौरे के दौरान जनाब गोयल भारत अमरीका बाहमी तिजारती मुआहदे पर बातचीत में पेशरफ के सिलसिले में अपने अमरीकी हम मनसब के साथ तबादला ख्याल भी करेंगे। कॉमर्स की वजारत ने कहा है कि इस साल 7 फरवरी को जारी मुश्तरका बयान से हम आहंग एक अबूरी मुआहदे को कतई शक्ल देने पर बातचीत में तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर मौसूफ G20 मीटिंग के मौके पर अपने हम मनसबों के साथ बाहमी मीटिंगें भी करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शफाफ और दुरुस्त वोटर फहरिस्त जमहूरियत की रूह है। आज नई दिल्ली में नामानिगानों से बात करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अगर वोटर फहरिस्त में गैर दुरुस्त या नाअहल नाम शामिल होते हैं तो इंतखाबी अमल की दयानतदारी असरअंदाज हो सकती है। जनाब चौहान ने इंतखाबी बेजाबतगियों से मुतालिक अपोजिशन के इल्जाम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो लोग इंतकाल कर गए हैं उनके नामों को हटाने और इस बात को यकीनी बनाने कि वोटर फहरिस्त में सिर्फ अहल शहरी ही शामिल हों, इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

0: वोटर लिस्ट लोकतंत्र की आत्मा है और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया जीवित नहीं बचा उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात के अपने प्रोग्राम में मगरबी बंगाल के सुंदरबांस में खवातीन के हाथों बनाए गए एक हिस्से का तस्करा किया था। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव जंगलाती इलाका और यूनेस्को का आलमी विरासत का मकाम है। वहां रॉयल बंगाल टाइगर, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ, हिरन और कई परिंदे, नीज दीगर नबातात वगैरह पाई जाती हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात के अपने हालिया प्रोग्राम में सुंदरबन के झाड़खाली इलाके में खवातीन की जानिब से मैनग्रोव की शजरकारी का तस्करा किया था। इनमें से कई खवातीन के शौहर शेरों के हमले में मारे गए थे। वज़ीर आज़म ने कहा था कि ये खवातीन न सिर्फ आने वाली नस्ल के लिए फितरत को महफूज रखने में अहम रोल अदा कर रही हैं बल्कि इन्हें मैनग्रोव की शजरकारी से आमदनी भी हो रही है। मैनग्रोव के जंगलात से शहद और दीगर वसाइल हासिल होते हैं जिनके जरिए इन खवातीन को रोजी रोटी मिल रही है।
3: पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में झाड़खाली की महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है।
2: कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमंद अली खान।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शिवा अटल सेतु का तस्करा कर रहे हैं।
4: अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु समंदर के ऊपर तामीर किया गया सबसे तवील पुल है। वज़ीर आज़म ने जनवरी 2024 में इस पुल का इफ्तिताह किया था। जनाब मोदी ने दिसंबर 2016 में इसका संगे बुनियाद रखा था। अटल सेतु 17,840 करोड़ से ज्यादा की लागत से तामीर किया गया था और ये तकरीबन 21.8 किलोमीटर तवील है और इसमें 6 लेन है। पुल का तकरीबन 16.5 किलोमीटर हिस्सा समंदर के ऊपर है जबकि लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर है। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: गंडक तास के इलाके और बिहार में मुसलसल बारिश के सबब दरियाए गंडक में पानी की सतह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है जिससे शिमाली बिहार में सैलाब की सूरत हाल अबतर हो गई है। मुख्तलिफ मकामात पर दरिया के किनारे टूट गए हैं और 200 से ज्यादा गांव मुतासिर हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम भारतीय टीम ने मर्दों के कंपाउंड टीम मुकाबले में चीन को हराकर सोने का तमगा जीता है। भारतीय टीम ने फाइनल में चीन को 237 के मुकाबले 238 पॉइंट से हराया। इस तरह भारत तमगे जीतने की फहरिस्त में 7वें मकाम पर आ गया है। भारत ने अब तक मजमू तौर पर 59 तमगे जीते हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने मुसाफिर मोटरगाड़ियों के लिए ईंधन की बचत से मुतालिक नए कॉरपोरेट जाब्तों को नोटिफाई कर दिया है जिसमें ईंधन की खपत के ताल्लुक से 5 साल में 16% से ज्यादा की बेहतरी की बात कही गई है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के कतर के वादे की पेशरफ्त का जायजा लिया है। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल आज विस्कॉन्सन में G20 के तजारत के वजीरों की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: 59. In men's cricket, West Indies were 15 for no loss in 2.3 overs against host India on the second ODI of the third match series at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government notifies new corporate average fuel economy norms for passenger vehicles, targeting over 16% improvement in fuel efficiency in 5 years. New Delhi-Qatar review progress of Qatar's $10 billion investment commitment to India. Also discuss accelerating free trade agreement negotiations. Flood situation worsens in North Bihar due to continuous rainfall in Nepal. Over 200 villages affected. In Asian Games 2026, India bagged 3 gold medals in compound archery and 1 in trap mixed team event today, taking total tally to 59, including 10 gold. And in cricket, India win toss and elect to field in the second ODI against West Indies at Guwahati. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार CAFE मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा। यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना कमांडर्स सम्मेलन आज दूसरे दिन नई दिल्ली में जारी है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने नौसेना को देश के सामरिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संयुक्तता और एकीकरण पर जोर दिया। वहीं सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मौजूदा सुरक्षा वातावरण और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार साझा किए। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्रवाई करने की क्षमता और एकीकृत प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर जोर रहा। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब के जालंधर में हैं। वे अब से कुछ देर बाद मादक पदार्थ रोधी रैली को संबोधित करेंगे। जालंधर पहुंचने के बाद श्री शाह ने श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने त्रिपुर मालिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृहमंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालंधर में है। इन यात्राओं में 13 दिन में 4 चरणों में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 किलोमीटर की दूरी तय की। भाजपा अध्यक्ष नवीन ने 18 सितंबर को पठानकोट से इन यात्राओं की शुरुआत की थी। इनका उद्देश्य पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में 27 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी गठित किया है। कोलकाता पुलिस अपर आयुक्त कृणाल अग्रवाल की अध्यक्षता में ये दल घटना से संबंधित पंचसार थाने में

0: तीन प्राथमिकियों की जांच करेगा। एसआईटी से पहली अक्टूबर तक प्रथम जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 27 सितंबर को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर में एक उपभोक्ता समूह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और संस्थान के विद्यार्थियों के साथ झड़प के बाद हिंसा हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज फॉलो करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता लागू करने, भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
1: दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94.50 अरब डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने जापान क्रेडिट रेटिंग द्वारा हाल ही में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत कतर के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को बहुत महत्व देता है। वित्त मंत्री ने भारत और कतर तथा अन्य खाड़ी देशों के बीच सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें होर्मुज जल डमरू मध्य से बिना किसी रुकावट के समुद्री आवाजाही और व्यापार शामिल है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र अब केवल यात्रा, मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है।
2: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया की तमाम चुनौतियों, तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह की कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र में पिछले एक वर्ष यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं तो ग्लोबल GDP की ग्रोथ रेट से लगभग दोगुने से ज्यादा प्रगति की।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
3: वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता हरिन्द्र मलिक, राष्ट्रीय जनता दल

0: के नेता तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद कुमार गुट की नेता सुप्रिया सुले और अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के संकल्प के साथ उनकी यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन किसी सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी विशेष श्रृंखला में आज हम मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु की जानकारी दे रहे हैं।
1: अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नवा सेवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने दिसंबर 2016 में इसकी आधारशिला भी रखी थी। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अटल सेतु की लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है और इसमें 6 लेन है। पुल का लगभग 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर और करीब 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। निर्माण क्षेत्र के विशेष के पांडुरंग दंदाउते के अनुसार अटल सेतु अपनी अनूठी विशेषताओं और निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जाने के कारण इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।
2: इसकी तीन चीजें हैं जो इसको अनोखा बनाती है। पहली चीज है इसकी लंबाई, विश्व के जितने ही सीलिंग्स है इसके सबसे लंबी है। दूसरा, डीप सी में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ी। तीसरा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आया था वो एनवायरमेंटल और सेफ्टी इश्यूज का, जो पर्यावरण और सुरक्षा के हेतु ये ब्रिज काफी अच्छा डिजाइन किया है।
1: अटल सेतु के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर करीब 50 मिनट रह गया है। दैनिक यात्री अनूप आनंद कहते हैं कि इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई के बीच रोजाना यात्रा पहले की तुलना में तेज, सुगम और सुविधाजनक हो गई है।
3: मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर करने में काफी ज्यादा समय लगता था, खासकर पीक आवर में। अटल सेतु शुरू होने के बाद सफर काफी बेहतर हो गया है और मेरे जैसे रोज ट्रैवल करने वाले लोगों का समय काफी बचता है और मुंबई से नवी मुंबई आना जाना अब पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गया है।
1: अटल सेतु से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक आवागमन भी कम समय में किया जा सकता है। इस पुल से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क भी और मजबूत हुआ है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। भारत ने आज जापान एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खेलों की अन्य ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज जहां तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, वहीं निशानेबाजी में भी स्वर्णिम लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पुरुष, महिला और मिक्स टीम स्पर्धाओं में अपने अपने खिताब बरकरार रखते हुए स्वर्ण पदक जीते। पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम ने फाइनल में चीन को हराया। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को पराजित किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। निशानेबाजी की बात करें तो नीरू ढांडा और काइनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत अब 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है। क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की महिलाओं के सराहनीय कार्यों का उल्लेख किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम

समाचार मिलने तक सेंसेक्स 343 अंक बढ़कर 72,872 जबकि निफ्टी 37 अंक की वृद्धि के साथ 22,753 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी

0: ये संदेश
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: दोस्तों प्रोग्राम एक ही कलाकार में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे और आज हमेशा की तरह एक सितारा मैं चुनकर लेकर आई हूं जिनका आज जन्मदिन भी है और वो एक ऐसे सितारे हैं जिन्हें हम सब बहुत प्यार करते हैं। जी हां, हिंदी सिनेमा के सबसे सम्मानित और प्रिय निर्देशकों में से वो एक हैं। उन्होंने 4 दशकों से अधिक के अपने करियर में 42 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और उन्हें हिंदी सिनेमा की दुनिया में किस नाम से जानते हैं ये आप हमें संदेश के जरिए बताएंगे। फिलहाल तो उन्हीं के निर्देशित की हुई एक खूबसूरत सी फिल्म का गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूं लता जी की आवाज में और मुझे पूरा अंदाजा है जैसा कि हमेशा आप करते भी हैं जैसे ही आप गीत सुनते हैं उसके सही जवाब आप मुझे भेज देते हैं। लेकिन हमारे जो नए दोस्त हैं जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ कैसे जुड़े इसके लिए मैं अपना जो रास्ता है जो पता है वो बता देती हूँ। मेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। ये वो रास्ता है ये वो जरिया है जिसके जरिए आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं और इस सफर में मेरे हम सफर बन सकते हैं। तो आज के सितारा कौन है और उन्हें हम प्यार से किस नाम से जानते हैं इस गीत को सुनिए और अपनी बात संदेश के जरिए पहुंचा दीजिए।

एक बड़ी फिल्म बनाने के लिए बड़े बड़े सेट, चमकते सितारे और भव्य कहानियां जरूरी नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा घर, एक साधारण परिवार, चाय की प्याली, दो दोस्तों की बातचीत और माँ बेटी का रिश्ता, पति पत्नी के बीच की खामोशी और इन छोटी छोटी चीजों में छुपी बड़ी बड़ी भावनाएं ही एक फिल्म को यादगार बना देती हैं। हिंदी सिनेमा में अगर किसी फिल्म में

आम जिंदगी की इन्हीं छोटी छोटी खुशियों को, परेशानियों को, रिश्तों और इंसानी भावनाओं को इतनी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है, तो उनमें से एक बेहद खास नाम आता है ऋषिकेश मुखर्जी का, जिन्हें प्यार से हम ऋषिदा कहते हैं। आपके ढेर सारे संदेश बिल्कुल सही हम तक पहुंच चुके हैं। ऋषिदा का जो सिनेमा है वो हमें हंसाता भी है, रुलाता भी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अपनी ही जिंदगी का कोई ना कोई चेहरा उसमें दिखाई देता है। तो आज का ये प्रोग्राम समर्पित है इसी महान फिल्मकार के नाम।

0: पानी के दिन यानी कि 30 सितंबर 1922 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से विज्ञान की पढ़ाई की और शुरुआती दौर में अध्यापन से जुड़ गए। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में फ्रीलांसर कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया। सिनेमा की दुनिया में उनकी जो असली पहचान थी वो फिल्म एडिटर के रूप में बनी थी। 1945 में न्यू थिएटर स्टूडियो से जुड़े वो और आगे चलकर महान फिल्मकार बिमल रॉय के साथ उनका गहरा रचनात्मक रिश्ता बन गया। उन्होंने बिमल रॉय की फिल्मों में संपादन और निर्देशन संबंधी काम किया और 2 बीघा जमीन, देवदास और मधुमती जैसी फिल्मों से उनका नाम जुड़ा। यानी कि निशिता ने कैमरे के सामने नहीं बल्कि फिल्म की एडिटिंग टेबल पर बैठकर सिनेमा की भाषा को समझना शुरू किया और शायद यही वजह थी कि आगे चलकर उनकी फिल्मों में कहानी कहने की जो गति और दृश्यों की जो बारीकी थी वो इतनी सहज दिखाई दी।
1: नदिया से दरिया

इश्किदा ने 1955 में फिल्म दो बीघा जमीन में विमल रॉय के साथ सहायक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उनके साथ

18 साल तक काम करने के बाद उन्होंने 1957 में मुसाफिर फिल्म से अपने निर्देशन के करियर की शुरुआत की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा इम्प्रेशन तो नहीं किया, लेकिन राज कपूर साहब को इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म अनाड़ी, जो कि 1959 में रिलीज हुई थी, ये उनके साथ बनाई। ऋषिकेश की फिल्म निर्माण की जो प्रतिभा थी उसका लोहा समीक्षकों ने उनकी दूसरी फिल्म अनाड़ी से ही मान लिया था। ये फिल्म राज कपूर के सदे हुए अभिनय और मुखर्जी के कसे हुए निर्देशन के कारण अपने दौर में काफी लोकप्रिय हुई। इसके बाद ऋषिकेश दा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अनुराधा, अनुपमा, आशीर्वाद, सत्यकाम जैसी ऑफ बीट फिल्मों का निर्देशन किया। ऋषि दा ने चार दशकों के अपने फिल्मी जीवन में हमेशा कुछ नया करने का प्रयास किया। ऋषि दा की अंतिम फिल्म थी 1998 की झूठ बोले कुआ काटे। उन्होंने टेलीविजन के लिए तलाश, हम हिंदुस्तानी, धूप छांव, रिश्ते और उजाले जैसे धारावाहिक भी बनाए थे।

गानों के फिल्मांकन के मामले में भी ऋषि दा का बेजोड़ जवाब था। अनाड़ी फिल्म का गीत सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, या फिर आनंद फिल्म का आप गीत ले लीजिए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, अभिमान का गीत नदिया किनारे, नमक हराम का गीत नदिया से दरिया जो आपने सुना था कुछ देर पहले, ये और या फिर आप अनुराधा फिल्म का गीत ले लें हाय वो दिन क्या आए, ये सब गीत आज भी हमें बहुत आकर्षित करते हैं। ऋषि दा ने एक बार कहा था कि

सोने पर किसी जटिल दृश्य के बजाय साधारण भाव को चित्रित करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए मैं इस तरह के विषय में अधिक रुचि रखता हूँ। मैं अपनी फिल्मों में संदेश को मीठी चाशनी में पेश करता हूँ, लेकिन हमेशा इस बात का भी ध्यान रखता हूँ कि इसकी मिठास कहीं कड़वी न हो जाए। उन्होंने एक से एक फिल्में बनाई, अनुराधा, आनंद, गोलमाल, बाबरची, नमक हराम, अभिमान, जिसका गीत अभी आप सुन रहे हैं, बुढ़िया मिल गया, गुड्डी मिली, चुपके चुपके, अनाड़ी, बहुत लंबी लिस्ट है। और 1961 में ऋषिदा को फिल्म अनुराधा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1961 में ऋषिदा को फिल्म, जैसा कि हमने बताया, अनुराधा के लिए किया था, और 1972 में फिल्म आनंद के लिए सर्वश्रेष्ठ जो कहानी थी इसके लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें उनकी फिल्म को 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट एडिटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1956 की फिल्म नौकरी, 1959 की मधुमती और 1972 की फिल्म आनंद, इन तीनों के लिए उनको बेस्ट एडिटिंग अवार्ड दिया गया था। 1990 में फिल्म जगत के शीर्ष सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया और साल 2001 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। और आज हम जो सितारा चुनकर लाए हैं उसका नाम है ऋषिकेश मुखर्जी यानी कि ऋषिदा।

आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंच गए हैं। बस कुछ ही देर में उन संदेशों को हम शामिल करने जा रहे हैं। फिलहाल आपको लता जी की आवाज में सुनवा रहे हैं फिल्म मिली से ये गीत।

रायगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव लोहोगढ़ ठाकुरवाला से सोम सिंह गिल, दलजीत राजदीप गुरनूल जी हमारे साथ हैं, नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग जी पलारी छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, गेंदलाल श्रीवास, कृष्ण कुमार जी हैं, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना जी हमें सुन रहे हैं, मोहम्मद यासिन अंजान, साइमा नवाज, हसन बाबू, दादा बाबू रोड गिरवीर झारखंड से हमारे साथ है, श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार और फीजान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताज मोहम्मद जी आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारे साथ हैं, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान और पूजा जी हमारे साथ हैं, भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवानगंज जी का एक और संदेश पहुंचा है, और तहसील बरून जिला अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कासलेकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से दोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी, चंचल, कामेश और माहिर जी हमारे साथ हैं, बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, बीना डब्बू, चैतन्य मेघा और परिवार के सभी सदस्य हैं। अगला संदेश हमारे पास फारूक अली खान जी का पहुंचा है और गुरमीत सिंह मीता जी साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से हैं, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ये संदेश संबलपुर काकेर से फागुन राम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव जी का आया है, गांव नथाना पंजाब से हजिंदर छिंदा, जस्वी जस्वी, सीता और गीता जी हमारे साथ हैं, बच्चन खेड़ा पंजाब से मिंची टोमस, पिंकी लवली, आरती जी हमें सुन रहे हैं, और चेतन मस्किन डब्बू सम्राट पंचकुला चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा प्रिंस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिग्दर्शन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ कैंट से, इनके साथ कविता गौड़ जी हैं, और हरजिंदर सिंह भाटिया जी, एंजल भाटिया सोनू जी के साथ हमें स्टेशन रोड जमशेदपुर से सुन रहे हैं। अगला संदेश जो हम तक पहुंचा है वो अजीत भापसा जी का प्रमिला जी के साथ वीरन गांव गुजरात से भेजा है, और हमेशा की तरह आपने ढेर सारी जानकारी हम तक पहुंचाई है, शुक्रिया आपका। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया

हमारे साथ हैं तुलसी मस्किन जी का एक और संदेश है। कस्बा बराड़ जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, रंजीत जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशी जी हमारे साथ हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद से दबासी निगत, परवीन शहनवाज, सरफराज, परवीन, सुहान, अरजान और परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ हैं। सुदर्शन मुख्य नेता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबू शिवाजी का हमारे पास संदेश आया है, लेकिन इन्होंने कहां से संदेश भेजा है ये हमें लिख के नहीं भेजा, और आप सभी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ और संदेश भी हैं जिन्हें हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। संदीप मकर, ज्योति मकर जी जालंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इश्कान मोहम्मद जी चूड़ी लाइन मुगेरी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस मोहन का निर्मला विशाल जी हमें सुन रहे हैं, और ये मारवाड़ा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी जी का संदेश है। ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा हमें किसी असंभव दुनिया में नहीं ले जाता, बल्कि हमें वापस हमारी ही दुनिया में लाता है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा, लेकिन कहीं जाना नहीं है क्योंकि 3 बजे मैचिंग मेलोडीज भी तो आपको सुनना है, और हमेशा की तरह उसमें एक सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ उसका जवाब। तो तैयार रहिए कॉपी पेन लेकर, बस 3 बजने ही वाला है और मैचिंग मेलोडीज शो लेकर मैं एक बार फिर हाजिर होने वाली हूँ। इस प्रोग्राम से अभी आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। सामिन, आपको बताते हैं कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर सुनिएगा फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे जनाब रेवती सरन शर्मा का तहरीर करदा ड्रामा ना दोहराने काबिल कहानी। 4:00 से आप लोग सुन सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5:00 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने ये था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम में 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की शुरुआत। 3:05 हुए हैं, खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, शगुफ्ता यास्मीन से खबरें सुनिए। सरकार ने मुसाफिर मोटर गाड़ियों के लिए ईंधन की बचत से मुतालिक नए कॉरपोरेट जब्तों को नोटिफाई कर दिया है, जिसमें ईंधन की खपत के ताल्लुक से 5 साल में 16% से ज्यादा की बेहतरी की बात कही गई है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के कतर के वादे की पेशरफ्त का जायजा लिया है। भारत ने न्यूक्लियाई हथियारों से पाक दुनिया और न्यूक्लियाई हथियारों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म के तहत अपने अहद को दोहराया है। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल आज विस्कॉन्सिन में G20 के तिजारत के वजीरों की मीटिंग में शिरकत करेंगे। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में सोने के 3 तमगे जबकि ट्रैप मिक्स टीम मुकाबले में सोने का 1 तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने मुसाफिर मोटर गाड़ियों के लिए नए कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी CAFE जब्ते नोटिफाई किए हैं। ये मौजूदा CAFE जब्तों की जगह लेंगे और इनका इतलाक 1 अप्रैल 2027 से होगा और ये 31 मार्च 2032 तक नाफिज रहेंगे। भारत में फरोख्त के लिए तैयार या दरामद नई मुसाफिर मोटर गाड़ियों पर ये लागू होंगे। नए तरीकेकार के तहत ऑटोमोबाइल सनत के लिए ज्यादा इंजिबाती शफाफियत और एक मुस्तहकम पॉलिसी फ्रेमवर्क

0: ये खाने पहनने के दिन है जिसकी शादी होनी है। जज साहब, आपने उसे देखा नहीं है, देखते तो।
1: रमेश की माँ, अरे कहाँ हो भाई?
2: जी जी कहिए।
1: अरे भाई वाह, आज तो तुम सचमुच जया देवी लग रही हो। कौन सी लड़ाई फतेह करने का इरादा है?
2: चुप्पी रहिए, बच्चे घर में हैं। ये उम्र होने को आई पर आपका लड़कपन अभी तो गया नहीं।
1: अरे क्या उम्र है मेरी, वाह, अभी तो लोग मुझे सुरेश चंद को जवान पट्टा ही समझते हैं। अभी कल ही वो जो मोहल्ले में नए साहब आए ना, अरे वही मिस्टर रॉय है, कह रहे थे कि मैंने दफ्तर से छुट्टी ले रखी है। जब मैंने कहा कि मुझे तो रिटायर हुए 2 साल हो चुके हैं, तो हैरानी से उनका मुंह खुला रह गया। क्या समझे?
2: जी यही कि आप आज बड़े मूड में हैं। क्या बात है, कोई लॉटरी निकल आई है क्या?
1: लॉटरी? अरे लॉटरियां तो मेरी 3-3 निकल चुकी हैं और तुम्हें मालूम तक नहीं। पूछो कब निकली?
2: सच, कब निकली है? हमें तो कोई कुछ बताता ही नहीं।
1: एक को तो हम बैंड बाजी से लेकर आए थे, दूल्हा का वो पहली लॉटरी थी। हाँ। फिर आई दूसरी और तीसरी, नाम है रमेश और रेखा। भला मुझे अब किस लॉटरी की जरूरत है? मगर पहली लॉटरी ने ये दोनों जरा देर में दिलवाई। कुछ पहले दिला दी होती तो जिंदगी प्लान से चलती।
2: हाँ, एक थैले में क्या लाए हैं?
1: ये तुम्हारे, रमेश और रेखा के लिए।
3: क्या लाए हैं पिताजी?
2: पिताजी ये लीजिए पानी।
1: लाओ।
2: चाय पियेंगे या कहीं से पी आए?
1: अरे कौन पिलाता है हमें चाय सिवाय हमारी बिटिया के। रमेश, पढ़ाई का क्या हाल है भाई, सब ठीक ठाक?
3: हाँ पिताजी, ये फर्स्ट ईयर है, 2 साल बाद बीए हो जाऊंगा बस।
1: वो तो होगा ही, सब भगवान करेंगे। और रेखा, तुम्हारी तैयारी कैसी है?
2: ठीक है पिताजी, पास तो हो ही जाऊंगी।
3: हाँ, मिस चट्टोपाध्याय की फेवरेट जो हो। अरे डग कर मक्खन लगाती हो?
2: देखिए पिताजी, भैया को रोकिए, मैं क्यों किसी के मक्खन लगाती? अपनी तो कहते नहीं, रात दिन डॉक्टर बतला कहते हुए मुंह सूखता है।
3: अरे वो है भी कितने काबिल, देश विदेश में उनका डंका बजता है।
2: चट्टोपाध्याय ही क्या कम है, अमेरिका में पढ़ी है, मालूम भी है।
1: अच्छा भाई छोड़ो भी, अब क्यों झगड़ा करते हो खामखा? देखूं शायद बाबू रामेश्वर प्रसाद आ गए।
4: अम्मा, मेथी के परांठों का सवेरे हम सब का नाश्ता पक्का?
3: मक्खन के साथ?
4: वही जो तुम डॉक्टर बच्चा के लगाते हो, वही मक्खन ना?
3: अच्छा है तो रेखा की बच्ची, तू बड़ा सच्चा हो गया।
1: रेखा की माँ, रेखा, अरे भाई ये अंधेरा क्यों कर रखा है? बिजली फिर फेल है
2: जी।
1: कमाल है, मैंने जाने कब शिकायत कर दी थी और उन्होंने कहा था कि वो अभी ठीक कर देंगे। कोई आया था?
2: जी हाँ, एक साहब आए थे, कहते थे हमारे पुरखे बिना बिजली के वेद लिख गए, तो हम उसके बिना क्यों नहीं रह सकते।
1: नाराज क्यों होती हो बाबा, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया। मिट्टी का तेल तो ले आई होंगी तुम?
2: जी हाँ, पूरा कनस्कर लाई हूँ।
1: नाराज क्यों होती हो बाबा, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया। चलो अब पड़ोसन से एक बोतल तेल मांग लाओ।
2: और खाना उसका क्या होगा?
1: वो रूखा ही बना दो।
2: हाय री तकदीश, आज तुम्हें और बच्चों को मैं रूखा खाना बना कर दूंगी, इससे पहले मैं मर क्यों ना गई।
1: क्या बात करती हो, जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। अभी रमेश को नौकरी मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा।
2: यही तो सुनती रही हूँ, पर वो सेकंड क्लास में जो पास हुआ है, सुनो वो कह रहा था कोई और कोर्स है कॉलेज में कुछ महीने का।
1: अच्छा,
2: उसे कर लेने पर नौकरी मिलनी आसान होगी। पूछ देखना जरा, हम तो जैसे तैसे काम चला ही लेंगे, उसका काम बनना ही चाहिए। लड़के का दिल छोटा हो रहा है, सेहत भी अच्छी नहीं रही। देखो उससे कुछ मत कहना।
1: तुम मुझे बेवकूफ समझती हो जया?
3: यहाँ अंधेरा क्यों है, बिजली क्यों नहीं जलाई माँ?
4: रेखा चाय तो ले आ बेटी रमेश के लिए, आज फिर बिजली गायब है। तुम दिन भर कहाँ कहाँ गए?
3: दफ्तरों और कंपनियों में भटकता रहा, और करना ही क्या है,
0: बेरोजगार आदमी का यही काम।

0: काम है। इसमें वक्त भी कट जाता है और घर वालों की तरह अपनी उम्मीद भी दिन भर मरमर कर जिंदा होती रहती है, पर लगता है वो शायद रोज कमजोर होते होते अब मर ही जाएगी।
1: ऐसे नाउम्मीद क्यों होते हो रमेश, सब ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी।
0: मिल जाएगी अगर आपके हाथ में नौकरी हो तो, नहीं तो सच बात तो ये है कि नौकरी उनको मिलती है जो या तो बराबर फर्स्ट रहे हो या उनकी फैमिली इन्फ्लुएंशियल हो, और अपने पास दोनों ही नहीं तो नौकरी कहाँ।
2: लो भैया चाय पी लो।
0: रेखा ये चिट्ठी बाहर एड्रेस में पड़ी थी तेरी है। पिताजी और हमारे कॉलेज में 3 महीने का कोर्स है, ऑफिस रूटीन सिखाने के साथ ही टाइपिंग भी सिखाते हैं।
1: अच्छा
0: कहो तो मैं ज्वाइन कर लूँ।
1: फीस क्या है
2: भैया? तुम ज्वाइन कर लो, अब फीस की परवाह मत करो।
0: क्यों, चिट्ठी किसकी है?
2: ये स्काई हाई स्टोर की है, उन्होंने मुझे नौकरी ऑफर की है।
0: तुमने अप्लाई कब किया?
2: पिताजी माँ आप नाराज मत होना, मैंने अखबार में से पढ़कर अर्जी भेज दी थी, फिर बुलाने पर इंटरव्यू को भी गई थी। आपसे यूँ नहीं बताया कि भैया सोचा कि नौकरी मिलने पर ही बता दूँ।
3: नौकरी क्या है?
2: सेल्स गर्ल की, काउंटर पर रहना होगा, सामान की देखभाल और बिक्री, बस इतना सही तो काम है। उम्मा मैं कितनी लकी हूँ।
1: फिर आगे की पढ़ाई का क्या होगा?
2: नहीं पिताजी आगे पढ़कर क्या करना है, इस वक्त तो नौकरी चाहिए। इस जमाने में पड़े वो जिनके पास रुपया हो, हमें तो खाली जिंदा रहने को, दो वक्त की रोटी खाने को नौकरी करनी ही चाहिए।
0: रेखा शाबाश, तुम मुझसे बाजी मार ले गई। अरे हाँ घर का लड़का तेरा भाई अगर नहीं कमा सकता तो तू तो कमा ही सकती है।
2: भैया कैसी बातें करते हो, उदास क्यों होते हो? तुम्हें जल्दी ही नौकरी मिलेगी, खूब बड़ी सी शानदार, फिर मैं ठाट से घर में बैठ के मौज करूंगी। मैं तो थोड़ी काम करूंगी, पर तब तक तुम ये नया कोर्स ज्वाइन कर लो कल ही से प्लीज।
0: हाँ कर लूंगा, करूंगा ही, और चारा ही क्या है, अब तक पिताजी की पेंशन परेश किया है, अब छोटी बहन की कमाई पर पढ़ाई करूंगा। माँ खाना तो बन ही गया होगा, बस अब तो इस घर के सबसे खुशकिस्मत आदमी के पेट भरने का इंतजाम करो।
2: अगर भैया को इतना बुरा लगा है तो मैं नौकरी ना करूं, क्या राय है?
3: मैं क्या कहूं बेटी, बेचारा रमेश।
1: नहीं तुम नौकरी को मना मत करना, रमेश के करियर में मदद मिलेगी, घर पर भी कुछ बोझ कम होगा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान उसकी भी सुनेंगे, जरूर सुनेंगे।
3: तनख्वाह क्या मिलेगी तुझे रेखा?
2: 150 रुपये महीना माँ।
3: ठीक है, इस परेशानी के जमाने में ये रुपया बड़े काम आएगा। चलो रमेश को देखो।
0: डॉक्टर साहब क्या हाल है पिताजी का?
4: वो इंटेंसिव केयर में है।
0: ठीक है
2: हम उन्हें देख सकते हैं?
4: अभी नहीं, आप ये बताइए कब उन्हें यह अटैक पड़ा था?
2: डॉक्टर साहब वो कल दिन भर ऐसे ही निढाल रहे, मैं तो समझी यही फिक्र कर रहे हैं घर के, कहा भी तो हंस दिए, बोले अरे तुम फिक्र मत करो ये तो शरीर है हमेशा एक सा थोड़ा ही रहता है।
4: नींद कैसी रही?
2: ठीक रही डॉक्टर साहब, वैसे मुझे ज्यादा पता भी नहीं, सो सवेरे नाश्ते के बाद कोई 11 बजे ये बोले मुझसे, एक प्यारा चाय दे सकती हो? बस डॉक्टर साहब चाय लेकर जब मैं पहुंची तो देखा ये पलंग पर बैठे, सारा बदन पसीने से तर है, सीना कसकर दबा रखा है, मैं घबरा गई, ये बोले छाती में दर्द हो रहा है, डॉक्टर वर्मा को बुलाओ। उसके बाद का हाल तो आप जानते ही हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर वर्मा ने एक इंजेक्शन दिया और अपनी ही गाड़ी में यहां ले आए, बेचारे बड़े भले आदमी हैं, नहीं तो आजकल कौन किसी का होता है।
4: ठीक है अगर आप लोग कर ले आते तो,
0: लेकिन डॉक्टर साहब हमें क्या पता था, क्या उन्हें वाकई हार्ट अटैक है?
2: हे राम
4: घबराइए नहीं सब ठीक हो जाएगा।
2: रेखा तू इस वक्त कैसे?
3: माँ पिताजी का क्या हाल है?
2: तू काम से इस वक्त कैसे आ गई?
3: माँ मेरा काम नौकरी। माँ जब भैया का फोन कंपनी में आया पहले तो मैनेजर ने बुलाकर डांटते हुए कहा
2: कि

0: करके फोन कंपनी के स्टाफ के लिए नहीं है। बड़ी बदतमीजी से बोला था वो। फिर मैंने फोन सुनकर पिताजी की बीमारी की बात कहकर छुट्टी चाही तो फिर पकने लगा।
1: क्या कहा उसने?
0: कहने लगा कि ऐसे बहाने उसने बहुत सुने हैं, लड़के लड़कियां ऐसी कहानियां बनाकर मौज करने निकल जाते हैं।
1: सुवर कहीं का, मैंने कहा था मैं तेरा भाई हूँ, फिर भी उसने
0: उसने मेरी एक बात न सुनी। यहाँ तक तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक तो पिताजी की बीमारी, फिर उसकी जली कटी बातें, मैं रोने लगी। मेरी बच्ची, फिर भी जब उसने ये सब गलत ही समझा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसी वक्त नौकरी छोड़ दी और सीधी यहाँ चली आई।
1: ठीक किया, मैं अभी उस शरीर को जाकर ठीक करता हूँ। वो समझता क्या?
2: रमेश,
1: क्या है माँ?
2: बेटा, हम किसी से लड़ने की हालत में नहीं है, ये बीमार पड़े हैं और हम गरीब हैं।
1: तुम ठीक कहती हो माँ, तुम ठीक कहती हो।

0: जय हो भगवान तेरी।
1: माँ पूजा कर चुकी?
0: हाँ बेटा आ गया तू।
1: मुझे जाना ही कौन से पहाड़ खोदने था माँ। लो ये रुपया, तुम्हारे हार और अंगूठी के 550 रुपए मिले। ज्यादा नहीं मिल सके, पिताजी के लिए फल और दवा भी ले आया हूँ।
0: तुझे बहुत फिरना पड़ा होगा, चल चाय पी ले।
1: हाँ माँ फिरना तो पड़ा। आखिर जवान हट्टा कट्टा बेटा अपनी माँ का जेवर बेचने निकला था ना, सो मेहनत तो पड़ती ही, लेकिन क्या परवाह है, बहन नौकरी करती है, मैं माँ के 2-4 गहने बेच ही सकता हूँ। बीमार बाप का इलाज हो ही जाएगा, मुझे क्या फिक्र है। माँ रेखा नहीं आई?
0: अभी कहाँ, 6:30 बजे तो दुकानें बंद होती हैं, अभी आती होगी। तू फकीरचंद की दुकान देखाया? रेखा क्या काम करती है वहाँ?
1: दुकान तो ठीक ही है, रेखा दिन भर मशीन चलाती है, कपड़े सीती है, दिन भर लगातार। माँ तुम्हारा गला सूना सूना हो गया, अच्छा नहीं लगता।
0: बेटा तू जी छोटा मत कर, सब भगवान ठीक कर देंगे।
1: भगवान? माँ ये भगवान जी है ना, ये कुछ नहीं करते, कुछ नहीं सुनते। तुझे पता नहीं है, ये अब उनकी ही सुनते हैं जो इन्हें दूध दही में नहला सकते हैं, सोने चांदी के थाली में भोग लगवा सकते हैं, रेशम और मखमल के कपड़े पहना सकते हैं। अब भगवान बदल गए हैं माँ।
0: तू तो नास्तिक हो गया है।
1: तुम जैसे आस्तिकों ने क्या पाया है भला, बताओ तो। इसलिए मेरी राय है अब भगवान को पेंशन दो। तुमने अस्पताल में देखा था ना माँ, पिताजी को हार्ट अटैक था, उन्हें इंटेंसिव केयर से निकाल के कहाँ रखा था, जनरल वार्ड में। डॉक्टर का दफा आता था माँ 2 बार राउंड के वक्त, दवा हम ला कर देते थे, और दूसरी तरफ ये प्राइवेट वार्ड नर्सिंग होम जिनमें पड़े थे रुपए वाले, किसी को ब्लड प्रेशर था, किसी को गैस का दर्द था, कोई सिर्फ आराम कर नहीं आ पड़ा था, उनके लिए डॉक्टर कई बार जाते थे, देखा था ना माँ, और नर्सें वहां कितनी थी भला, गिन भी सकती थी तुम।
0: सब तकदीर की बात है बेटा।
1: मतलब ये कि हम सब देश के करोड़ों आदमियों की तकदीर खराब है, सिर्फ कुछ की ही अच्छी है, ये तुम्हारे भगवान का खूब इंसाफ है।
0: बेटा तू जी छोटा मत कर, सब भगवान ठीक कर देंगे।
2: माँ पिताजी कैसे हैं?
1: रेखा
2: भैया
0: ठीक है, तुझे पूछ रहे थे। रमेश उनके सामने ये सब बकवास मत करना।
1: माँ मैं ऐसे चुप रहूंगा जैसे मेरी तकदीर चुप है। रेखा दिन कैसा कटा?
2: ठीक ही रहा, मुझे तो पता ही नहीं चला भैया कि कब शाम हो गई।
1: सो तो हुआ ही होगा, मशीन की लगातार खट खट खट खट मन को ठस कर देती है।
3: यार कहाँ चले? मीटिंग में तो अभी देर है।
1: मीटिंग? कैसी मीटिंग?
3: क्यों नोटिस बोर्ड नहीं देखा था?
1: कौन देखता है यार नोटिस बोर्ड, अब हम तो अखबार के बस वांटेड कॉलम ही देखते हैं।
3: मैंने तो भाई उन्हें भी देखना छोड़ दिया। यार पड़ोस की यूनिवर्सिटी में तालिबिन हड़ताल कर रहे हैं चार्जेस बढ़ाए जाने के खिलाफ,
1: तो
3: हम भी इस मीटिंग में तय करेंगे कि उनका साथ देने के लिए क्या करना चाहिए।
1: मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए, हम सबको अपनी अपनी जान दे देनी।

0: चाहिए, उससे क्या होगा, किसी के कान पर जू भी न रेंगेगी।
1: कम से कम घर वालों का हम पर किया जा रहा बेकार का खर्च तो बचेगा।
0: अच्छा यार चल, तब तक एक प्याला चाय तो पी ले, तू अपना खर्च बचा, चाय के पैसे मैं दे दूँ।
1: अरे छोड़ दे यार, यही लाइन पर बैठते।
0: अरे बेवकूफ, वहाँ हो सकता है हमारा दोनों का या एक का करियर ही बन जाए।
1: कैसे, वहाँ कौन से एम्प्लॉयर आने वाले हैं यार?
0: अरे वो नहीं तो उनकी बेटियां ही सही, कौन जाने कोई हमें भी पसंद कर ले, बस फिर बेड़ा पार हो जाएगा। सो इस चाय को फजूल खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट समझो, जिसका नफा भी मिल सकता है।
1: इसीलिए तुम लड़कियों के पीछे फिरा करते हो, अब समझा। लेकिन दोस्त, कभी कभी नफा चप्पलों की सूरत में भी मिल जाया करता है।
0: यार अगर लखपति पांव की जूती हो तो हम अपने सर पर उसे हमेशा के लिए जगह देने को तैयार हैं। अब चल, मीटिंग में भी चलना है यार।
2: साहब बिल।
0: ये क्या है वेटर, दो प्याली चाय के 80 पैसे क्यों, 60 होनी चाहिए।
2: साहब रेट बढ़ गया है,
0: कल से आज तक मैं 10 पैसे फीकअप।
2: साहब मैनेजर से पूछ लीजिए, कमेटी ने यही रेट तय किया है।
0: मैनेजर साहब, ये चाय के दाम एकदम इतने कैसे बढ़ा दिए?
3: कमेटी का फैसला यही है।
0: कमेटी जिधर देखो, कोई कमेटी है या काउंसिल है, गोया दुनिया में कमेटी आज हो रहा है।
1: दोस्त, इस तरकीब में एक आराम है, तुम किसी से झगड़ा बहस नहीं कर सकते। कमेटी क्यों ठहरी, किसी एक की जिम्मेदारी थोड़ी ही है जिससे बहस करोगे।
4: साथियों, आप तो जानते ही होंगे कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। आप ये भी जानते हैं बेरोजगारी का क्या हाल, कहां से कहां तक पहुंच गई। उस पर गजब ये कि हमारे पेरेंट्स की आमदनियां लगभग जहां की तहां है, और यही वजह है कि हमारी पड़ोसी यूनिवर्सिटी के हमारे साथियों ने तंग आकर अपनी नाराजगी जाहिर करने का फैसला किया है। आखिर कब तक वो मां बाप से मांगते रहेंगे, और किस उम्मीद पर? ये नहीं ना कि वो डिग्री लेकर सड़कों पर बेरोजगार घूमे, घर वालों पर भी बोझ बने रहे, ना उम्मीद होकर या तो कहीं जाने दे दे या फिर ऐसे काम करें जो कानून के खिलाफ हो। तब हार कर उन्होंने आपके यहाँ हड़ताल, जुलूस और शहर बंद का ऐलान किया है, और ये सब इस उम्मीद से किया कि शायद तब उनकी कोई सुने, कोई समझे। उन्होंने हमसे भी कहा है कि हम भी उनका साथ दें। उनका प्रोग्राम अगली 7 तारीख का है, इसलिए आप लोगों को यहां बुलाया है। अब जैसा फैसला आप करें वही सबको मंजूर होगा, तो आपको यह प्रोग्राम मंजूर। मैं आपको बधाई देता हूं और गुड विशेस कि हम इसमें कामयाब होंगे। लेकिन बस एक बात याद रखिए, हम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में सच्चाई को नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए, वो छोड़ने पर और जरा सी गलती करने पर हम फेल हो जाएंगे, हमारी तहरीक कुचल दी जाएगी।

0: रेखा, तुम्हें बॉस बुला रहे हैं।
1: सर, आपने मुझे बुलाया था?
2: नहीं, ये आउटपुट शीट तुम्हारी?
1: जी।
2: इसमें लिखा है कि तुमने पिछले हफ्ते में 48 ड्रेसेस तैयार की थी।
1: जी।
2: लेकिन रिसीट डिपार्टमेंट के मुताबिक तुम्हारे पास से कुछ 46 ही उनके पास पहुंची।
1: जी, कोई गलती हो
2: गई। रेखा, मेरे यहाँ गलती करने वाले काम नहीं है।
1: सर, शायद रिसीट वाले ने।
2: ये नहीं हो सकता, मैंने खुद चेक किया है। तुम्हें और कुछ कहना है?
1: इस दफा माफ कर दी सर, मैं अगले हफ्ते 50 ड्रेसेस बना दूँ।
2: ऐसा बेकायदा काम मेरा नहीं चलता। आज हफ्ता खत्म है, इस हफ्ते का काम इसी हफ्ते में होना चाहिए, नहीं तो तुम अपना हिसाब करके जा सकती हो।
1: सर, ऐसा न कीजिए सर, मेरे फादर बहुत बीमार है सर।
2: मैं जानता हूँ और इसीलिए नहीं चाहता कि मैं तुम्हें निकालू। मैं भी हमदर्दी करना जानता हूँ, तुम्हारा रोजगार लेकर मुझे दुख होगा, तुम्हें भी परेशानी होगी, लेकिन हिसाब हिसाब है।
1: जी।
2: तुम ऐसा कर सकती हो कि कल आकर के ये अपनी दोनों बाकी की ड्रेसेस तैयार कर दो।
1: कल? पर कल तो शहर बंद है सर।
2: तो
1: दुकान बंद नहीं रहेगी?
2: हाँ रहेगी, और ये नुकसान, ये बेकार की हुल्लड़बाजी की ज्यादती भी सही पड़ेगी।
1: तो सर
2: तुम पीछे के दरवाजे से आ जाना।

0: ריסלט חורי!
1: तुम्हारे शाबाश
2: शाबाश। मैं पैदल आ रही हूँ घर से सर।
1: अरे राम राम, फिर तो थक गई हूँ। बैठो बैठो, सुस्ता लो। क्या पियोगी?
2: जी पानी ही ठीक रहेगा, पी लूंगी। अभी तो वो ड्रेसेस निपटा कर फिर घर भी जा रहे हैं।
1: अरे तुम बैठो तो, थोड़ा आराम कर लो। बात यह रेखा कि तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो, सुंदर भी हो, तो मैं सोचता हूँ क्यों तुम्हें परेशान करूँ। अरे दो एक ड्रेसेस की तो गलती हो गई है, तो क्या हुआ? तुमने कोई जानकर थोड़ी की होगी, और फिर तुमसे तो मुझे खास हमदर्दी है। तुम्हारे पिताजी बीमार है ना? अरे हाँ, कैसी तबीयत है उनकी?
2: अब तो ठीक है।
1: अरे अरे तुम दूर क्यों हटे रेखा? मेरे पास बैठो। अपना तो कोई नहीं, और अगर तुम मेरी होती तो फिर तुम कार में बैठती। यूं
2: छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए।
1: मुझे तो तुमसे हमदर्दी है रेखा। रेखा सुनो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पिताजी का बेहतरीन इलाज हो सकता है। तुम सब, मेरा मतलब सारा खानदान, बड़ी शान से रह सकते हो। बस जरा तुम्हें समझदार होने की जरूरत है। मेरा मतलब है मुझे समझने की जरूरत है।
2: आप मेरे पिताजी से भी ज्यादा उम्र के हैं, सोचिए तो।
1: इतनी उम्र है तभी तो मैं तुम्हें सारे आराम दूंगा। तुम्हारे भाई का अपना बिजनेस होगा और तुम
2: मुझे पता नहीं था। आप अपने हाथ धो रखिए। नहीं तुम्हें शोर मचा
1: तो क्या होगा? अरे आज बाजार बंद है, कौन सुनेगा? और अगर किसी ने सुन भी लिया तो यही कहेगा कि तू यहाँ आई क्यों थी। फिर आज इस शोर में तेरी चीख डूब जाएगी, इसीलिए तो मैंने ये खेल रखा था। रेखा, अगर तू राजी सही मानी तो फिर मुझे
3: रेखा क्या हुआ? तू ऐसे घबराई क्यों है? तेरे कपड़े क्यों फटे?
2: भैया वो मेरा बॉस टीचर है ना, उसने
3: रमेश की बहन
4: वो तो हो ही
5: जाएगा।
6: ऑर्डर।
5: तो जनाब ये है जो मैंने किया और किस वजह से किया। अब आप क्या सजा दे सकते हैं फकीर चंद को, उनको जिन्होंने हमें, रेखा को, सबको इतना बेबस बना दिया है, उन मुनाफाखोरों को, उन चोरों को, उस समाज को जो रेखा की इज्जत नहीं बचा सकता, जो मुझे रोटी रोजी नहीं दे सकता। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन आप मेरी जगह होते तो यही करते जो मैंने किया। जज साहब मुझे सजा दीजिए, लेकिन आपसे मेरी इल्तजा है कि ऐसे हालात पैदा कीजिए, ऐसा माहौल बनाइए

मेरी ये कहानी दोहराई न जाए, मेरी न दोहराने काबिल कहानी। ये समझ लीजिए कि आज जो हर इज्जतदार नौजवान चराग जला रहा है वो बुझने वाला नहीं, मेरे या किसी के जेल जाने से भी नहीं, वो जलता ही रहेगा। हाँ, चराग जलता ही रहेगा, क्योंकि उसे जलना ही है, राह दिखानी ही है, अंधेरे से लड़ना ही है,

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों को फिल्म थी लम्हे। नगमन गाते आनंद बख्शी, मौसीकार शिव हरी। प्रोग्राम की अगली पेशकश आशिकी 2 फिल्म का नगमा पलक मुच्छल और अरिजीत की आवाजों में, नगमन गा इरशाद कामिल, मौसीकार जीत गंगोली।

बेवफा सनम फिल्म का नाम आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी को सुनिए, फिल्म है पत्थर के सनम।

और समझ लीजिए, सुनिए अरिजीत सिंह और साथियों की आवाजों में सनम रे फिल्म का ये नगमा।

और आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में समीर का लिखाई गीत जिसे मौसीकी सजाया है निखिल विनय ने, फिल्म है हम तुम्हारे हैं सनम।

ऑल इंडिया रेडियो दासिराय की प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाडे कीते अज दा प्रोग्राम घिन के हाजिर हां। कुछ बातें कुछ गीत इस विच असीं तुहाडे नाल गाना भी करांगे ते गीत भी सुनवावांगे। सुनण आलियो, गर्मी दे दिनां विच डेंगू मलेरिया ते चिकनगुनिया दे मामले बहुत वधदे पए हन। गर्मी विच मच्छर बहुत हुंदे हन, अगो बरसातां आवणगियां ते मच्छर बियां थी जाणगे ते ए सारा बीमारियां मच्छर के कटन नाल थींदियां हन। ते बया इना बीमारियां तो किंज बच सकसा, ए असा तुहां को दसेंदे हां। छोटियां छोटियां गालां को ध्यान च रखेंदे हां। पहला ता कूलरां दा पानी हर हफ्ते जां कुछ दिनां बाद बदल देवो। कूलरां दा पानी कढ घिनण तो बाद इना को चंगी तरह सुखा घिनो ते दोबारा पानी भरना चाहिदा है। जे वड्डे कूलरां दा पानी कढ घिनण च दिक्कत हुंदी है तां इस पानी विच पेट्रोल जां मिट्टी दे तेल दियां कुछ बूंदां पा देवो। इना करके मच्छर ना आवण जाण। दूजा, पानी भर के रखेण वाले भांडिया टबा बाल्टियां को ढक के रखना चाहिदा है। जे भांडे ना वरतेंदे होवण तां इना को उल्टा करके रख देवो। तीजा, टूटे भाजे भांडिया ते टायरां को खुले विच नहीं रखना चाहिदा। इना विच मींह दा पानी इकट्ठा थींदा रहंदा है ते ठहरे हुए पानी विच मच्छर पैदा हुंदे हन। इंज दे कपड़े पहनने चाहिदे हन जेड़े कि शरीर को पूरा ढक के रखेण, जिस नाल मच्छर कट के नहीं सकते। घर विच पंछियां दे पीवण दा पानी रोजाना बदल देवो। घर विच गमले विच पानी पाके पौधे लाए होवण तो उन्हां दा पानी भी रोज दियां बदलो। रात को सोवण वेले मच्छरदानी इस्तेमाल करो जा कोई इंज दी क्रीम शरीर ते ला घिनो कि मच्छर नजदीक ना आवण। इना गालां को ध्यान च रखो।

डेंगू मलेरिया ते चिकनगुनिया बीमारियां तुहाकू कदहावी नहीं लग सकतियां। ते हुण गर्मी दा एक गीत सुनावन जी, झल्ला पक्खी ते लगे ठंडी वाह मौसम गर्मी दा। कलाकार हैं आबिदा परवीन।

0: ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਚੈਸਿਸ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੌਥਾ, 20 ਬੈਡ ਦੀ ਸਲਿਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ SMS ਵਾਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ SMS ਵਾਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਖਿਲਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਡਰ ਹੈ ਉਹ 16 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਲੂਜ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣਾ ਖੜੇ ਖਰਚੇ। ਜੇ ਖੜੇ ਖਰਚੇ ਲੂਜ ਪਰਾਲੀ ਇਕਸਾਰ ਖਿਲਰੀ ਹੋਏਗੀ ਖੇਤ ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿਚ ਐਜ਼ ਅ ਮਲਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋ ਮਸ਼ੀਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਾਈ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਚੌਲੇ ਦੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रूपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रूपये, जौ के लिए 136 रूपये, चने के लिए 83 रूपये और गेहूं में 25 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1779 करोड़ रूपये से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्यधिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। यह कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी चार कमांडरों को मार गिराया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बना दिया जाएगा। आज जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
3: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
1: वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज बताया कि सम्मेलन में देशभर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद संघ और अखिल भारतीय मोबाइल खुदरा विक्रेता संघ ने शुक्रवार को नो UPI डे मनाने का फैसला वापस ले लिया। ये निर्णय नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया

0: ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने लिया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में तीन और निशानेबाजी में एक स्वर्ण सहित कुल चार स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ आठवें स्थान पर पहुंच गया है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने सातवें ओवर में बगैर किसी नुकसान के 50 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। मैं हूं लोकेंद्र
1: और मैं हूं प्रीति।
0: कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और इस कार्यक्रम में प्रीति बहन भाइयों के लिए जानकारी रहेगी और उनका मनोरंजन रहेगा, जिसमें वो जिसका वो बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि शाम का समय होता है और सभी अपने अपने रेडियो सेट लेके चौपाल पर बैठे आते हैं और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं
1: जी। और इस कार्यक्रम में हम क्योंकि उनको भजन, क्योंकि संध्या समय है तो भजन भी सुनवाते हैं और उपदेश भी सुनवाते हैं। तो एक कार्यक्रम की जो खासियत है वो ये है कि समय के अनुसार हम अपना संगीत भी बदल देते हैं।
0: बिल्कुल। और देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें से एक योजना है कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना
1: जी।
0: इसमें कृषि क्षेत्र में आधुनिक कृषि मशीनरी और उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की पहल है। इसका उद्देश्य है प्रतिबंध किसानों की उत्पादन लागत और मेहनत कम करने, कृषि कार्यों की दक्षता बढ़ाने और समय पर खेती के काम पूरे करने की मदद करना
1: जी। बिल्कुल। और क्योंकि कृषि यंत्र हैं तो उनका काम ही यही है कि हम किसानों के समय को बचा सकें और जिससे वो जो समय बचेगा उसमें वो अपनी कृषि को और उन्नत रास्ते पर लेकर जाएंगे, जिससे कि जाहिर सी बात है कि उसका उत्पादन ही बढ़ेगा। तो हमारे कृषक भाई जो हैं वो इन यंत्रों का इस्तेमाल करके अपनी खेती बाड़ी में समय की बचत करते हैं और समय की बचत करके जो उसका यूज करते हैं वो बहुत अच्छा हो जाता है फिर।
0: बिल्कुल प्रीति बहन। और इसके साथ साथ इस योजना के तहत पात्र किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर निर्धारित नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता और सब्सिडी भी दी जाती है। छोटे ऐसे सीमांत किसानों, महिला किसानों और अन्य लक्षित वर्गों को प्राथमिकता देने के प्रावधान भी होते हैं प्रीति बहन। इसके अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर, पावर टिलर, कृषि यंत्र, फसल कटाई एवं अवशेष प्रबंधन से जुड़े उपकरण को भी आगे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा हम अपने भाइयों को बताएं इसका उद्देश्य क्या है, ये भी बता देते हैं। खेती में मशीनों का उपयोग बढ़ाना है, कृषि की मेहनत और समय की बचत करना है, कृषि कार्यों की अधिक कुशल बनाना है, छोटे किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीकी पहुंचाना है, फसल अवशेष प्रबंधन और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है
1: जी। बिल्कुल। और क्योंकि हमारी जो सरकार है, कृषि संबंधित जितने भी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं या जो भी उपकरण हैं, उनको उनका मकसद होता है कि कैसे वो छोटे किसानों तक भी पहुंचे, जिससे कि वो छोटे जो लघु किसान हैं वो इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपने जो कृषि जीवन है उसको बेहतर बना सके। और तभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि किसानों की आय दोगुनी हो सके, तो उसके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं।
0: बिल्कुल। तो हम बातचीत और भी करेंगे प्रीति बहन। तो सबसे पहले भाइयों को कराते हैं मनोरंजन, सुनवाते हैं उपदेश। कलाकार हैं
1: राकेश त्यागी।

0: तो साथियों, अभी आपने राकेश त्यागी से सुना ये उपदेश, और आइए अब आपको जानकारी देते हैं रबी दलहनी फसलों की
1: उन्नतशील
0: किस्में और उनकी जो बुआई है वो कैसे करें, इस पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर समर्थलाल मीणा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, और इनसे बातचीत कर रहे हैं अमित तेवतिया।
2: साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम में प्रत्येक दिन कोई न कोई ऐसी जानकारी आपके साथ अवश्य साझा करते हैं जो हमारे कृषि जीवन को उन्नत करती है, उत्पादन बढ़ाती है और लागत मूल्य को कम करती है। आज हम बात करेंगे रबी की दलहनी फसलों की उन्नतशील किस्में और उनकी बुवाई के विषय में। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर समर्थलाल मीणा। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
3: धन्यवाद।
2: अब जैसा कि डॉक्टर साहब, विषय हुआ हमारा रबी की दलहनी फसलों की उन्नतशील किस्में और बुवाई। हमारे जो किसान भाई बहन हैं, रबी में कौन कौन सी दलहनी फसलें हमारे भाई बहन लगा सकते?
3: देखो, ये मौसम रबी का है, हमारी खरीफ की जो ज्यादातर फसलें कट गई हैं और रबी की तैयारी अब शुरू कर दी किसान भाइयों ने। तो आपने पूछा कि कौन कौन सी जो दलहनी फसलें हैं उनको बो सकते हैं किसान भाई। उनमें देखो, सबसे महत्वपूर्ण होता है चना, उसके बाद मसूर है, फिर आपका मटर है, फ्रेंच बीन भी लगाते हैं, राजमा लगाते हैं काफी किसान भाई। और अब किसान भाई इसलिए सोच रहे होंगे कि भाई हमें कैसे तैयारी करें खेत की, कैसे बीज लाना है, कहाँ से लाना है, ये सब क्वेश्चन उनके मन में आते हैं।
2: इसी विषय को हम से आज जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि चना है, मसूर है, राजमा है, तो जब ये फसलें लगाने का विचार आ रहा है तो उन्नतशील किस्मों की बात आती है, और किस्में भी वो कि जो जलवायु परिवर्तन के समय में और कोशिश रहती है कि कम से कम नुकसान हमारी इन फसलों को हो, तो कौन कौन सी ऐसी किस्में चुने और बीज कहाँ से लें, ये जरूर बताएं।
3: देखिए, फसल पैदा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है बीज, और बीज अगर आपने अच्छा लिया, उन्नत किस्म का लिया, तो की पैदावार भी बढ़ती है, क्योंकि जो किस्में होती हैं ये हम लोग पैदा करते हैं, ये रीजन के हिसाब से भी होती हैं, क्लाइमेट सुटेबल का अकॉर्डिंग होती हैं, रीजन वाइज होती हैं। तो मैं बात करूंगा उत्तरी भारत की, तो उत्तरी भारत में कौन कौन सी चने की फसलें आप ले सकते हैं, जिसमें पूसा मानव चना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी इसकी पैदावार होती है। फिर है पूसा 362, आरओई है, आरएसजी 888 भी है, और एचसी 5 है जो कि हरियाणा के लिए रिकमेंड की हुई है, और करनाल चना है एक, वो साल्ट टॉलरेंट उन्नत किस्में है, जहाँ पे जो साल्ट थोड़ा ज्यादा होता है खेती में उसमें किस्म को लगाया जा सकता है। फिर है डीसीपी 92-3, फिर है पूसा 11-3, फिर बीजेडी 72 है जो कि धारवाड़ से पैदा की हुई है, और एक है फूले G5 जो कि हम सेंट्रल पार्ट में बो सकते हैं। उसी प्रकार से जो काबुली चना है उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण उन्नत किस्में हमारे पास हैं, जैसे पूसा चमत्कार हो गया, पूसा 1108 हो गया, जीएनजी 1292 हो गया, जो कि राजस्थान के क्षेत्रों में को ऑलरेडी हमने रिकमेंड की हुई है। काक 2 है जो कि सेंट्रल जोन के लिए हमने रिकमेंड की हुई है। बीजेडी 128 है जिसे हम पूसा सुब्रा भी बोलते हैं, जो कि सेंट्रल जोन के लिए रिकमेंड की हुई है। इसी प्रकार से आपका जो मशहूर है, मशहूर में भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, उनको भी किसान भाई लगा सकते हैं, जैसे पूसा सेवालिक करके एक वैरायटी, उसको हम L4076 बोलते हैं, पंत L406, पूसा वैभव, प्रिया, सेरी, अंगूरी, पंत लेंटिल 14, इस तरह की बहुत सारी किस्में हैं जो कि किसान भाई ले सकते हैं। काफी किसान भाई तो लोकल एरिया में उनके जो ऑलरेडी रिकमेंड की हुई है, केव के वगैरह है, उन्होंने रिकमेंड किया, तो उनका भी उपयोग वो कर सकते हैं। इसी प्रकार मटर की बात करता हूं मैं, तो मटर हमारे देश में दो प्रकार के लिए बोया जाता है, जैसे फील्ड पी है उसको हम लोग दाने के लिए उगाते हैं, एक होता है वेजिटेबल पी जिसको हम लोग सब्जी के लिए उगाते हैं। जो किसान भाई दाने के लिए मटर उगाना चाहते हैं उनकी वैरायटी अलग होती है, तो उसमें महत्वपूर्ण वैरायटीज हमारे पास अलंकार है, अपर्णा है, रचना है, स्वाति है, सपना है, पंत मटर 5 है, मालवीय 15 है जो कि नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन के लिए है। इसी प्रकार के जो आपकी सब्जी वाली मटर है उनमें बॉनविल हो गया, पूसा प्रगति हो गया, आजाद मटर 2 हो गया है, नरेंद्र मटर 2 हो गया है। ये मटर की जो उन्नतशील

0: वैरायटीज हैं, किसान भाई लगा सकते हैं, ज्यादा पैदा इसमें आपको मिलेगा। अगर बात करते हैं राजमा की, राजमा का एरिया बहुत कम है, लेकिन किसान भाई चाहे तो वो भी राजमा की खेती कर सकते हैं। इसलिए उन्नत किस्में हैं, जैसे अंबर है, उत्कृष्ट है, अरुणा है, इस तरह की जो उन्नत किस्में हैं, किसान भाई इनका उपयोग कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही किस्मों की, और सबसे अच्छी बात की आपने कौन सी किस्म किस क्षेत्र के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी संस्तुति मिली है ये भी बताया। अब बात आती है कि जो हमारे किसान भाई बहन इन किस्मों को लेते हैं, तो कई बार होते हैं कि किसान भाई बहन अपने द्वारा ही जो पिछले साल का बीज होता है उसी का प्रयोग करते हैं, या कहीं ऐसी जगह से भी बीज ले सकते हैं कि मानो उपचारित नहीं है, तो कैसे पता लगे कि जो बीज है वो उपचारित है? और उपचारित नहीं है तो किस प्रकार हमारे किसान भाई बहन कर सकते हैं?
0: बीज को उपचार करना बहुत जरूरी है। या तो आप जो बीज ले रहे हैं, नया बीज ले रहे हैं, या तो वो उपचारित होगा। और उपचारित होने का यही होता है कि उसमें हम जब पैकेट पैकेट खोलते हैं तो उसमें ऑलरेडी फंगिसाइड लगी होगी, या तो और कोई इंसेक्टिसाइड लगी होगी, या लगी नहीं होगी तो उसमें एक पाउच आएगा। तो पाउच में हो सकता है फंगिसाइड हो या फिर कोई कीटनाशक हो सकता है। तो अगर वो ऑलरेडी पैकेट में है तो इसका मतलब यह है कि वो बीज को उपचार करने के लिए सफिशियंट है। लेकिन जैसे आपने कहा कि भाई कोई किसान भाई खुद का बीज इस्तेमाल करना चाहे तो उसको उपचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए?
1: जी
0: बिल्कुल करना चाहिए। और हम लोग बीज उपचार इसलिए करते हैं कि उसमें कोई हानिकारक कीट ना लगे, कोई रोग ना लगे, और अच्छी पैदावार के लिए हम उसमें राइजोबियम का टीका लगाते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो हमारी दलहन फसलें जो होती है ना, वो सभी लेग्यूम होती हैं, और लेग्यूम का करेक्ट होता है कि उनकी जो जड़ें हैं उन जड़ों में गांठे होती हैं, गांठे में राइजोबियम होता है। तो राइजोबियम के थ्रू हमारे जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको स्त्री करके रूट में राइजोबियम लिया। तो जो किसान भाई अगर खुद का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल वो उसका उपचार करें उसको। और उपचार करने का तरीका यह होता है, पहले तो फफूंदनाशक से छिड़को मिलाए, उसके बाद उसमें लगाए हानिकारक कीटों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो रेट होती है, जैसे मैं बोलूं आपको, फफूंदनाशक जो है वो 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम सीड में मिला करके मिक्स करके लगा सकते हैं। दूसरा कीटनाशी है उसका 4 से 5 ml ले सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड हो सकती है, या अगर कहीं टर्माइट का ज्यादा प्रकोप होता है तो वहां क्लोरोपाइरीफॉस ले सकते हैं। उसके बाद टीका लगाते हैं हम लोग उसमें, और जो टीका उसमें क्या है कि बायोफर्टिलाइजर होते हैं राइजोबियम, तो उसका एक पैकेट आप ले सकते हैं 1 हेक्टर के लिए। तो 200 ग्राम जो मात्रा है वो सफिशियंट होती है हमारे 1 हेक्टर के लिए। तो इस तरह से आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, बात आई कि चलो उपचारित हमने बीज किया, लेकिन एक विशेषता जैसे आपने कहा कि जो बीज हम नया लेंगे वो उपचारित भी हमें मिलेगा, तो अब किसान भाई के मन में ये भी प्रश्न बनता है कि बीज कहाँ से लें
0: जी,
1: और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए?
0: देखिए, बीज के स्रोत तो काफी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि किसान भाई अच्छी उन्नत किस्मों का बीज एक ऑथेंटिकेटेड जगह से लें। जैसे हमारे ISR के इंस्टीट्यूट भी हैं, वहाँ भी आप ले सकते हैं, और हमारे जो राज्य के कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके KVK भी होते हैं, वहाँ से भी वो ले सकते हैं। और हमारा NSC का जो काउंटर होते हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, वहाँ से भी किसान भाई ले सकते हैं। स्टेट सीड कॉर्पोरेशन भी होते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, और कुछ प्राइवेट एजेंसी भी जो परमिटेड है ऑलरेडी, वहाँ से भी किसान भाई सीड ले सकते हैं। अब बात आती है क्वांटिटी की। जैसे अब बात करूँ मैं चने की, चने में जैसे एक तो हम बोना चाहते हैं देसी चना, तो देसी चने की 80 किलोग्राम मात्रा 1 हेक्टर में चाहिए, और जो काबुली चना है उसकी करीब करीब 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आपकी क्वांटिटी चाहिए सीड की। ऐसी बात करूं मैं लेंटिल की, तो लेंटिल में भी कई तरह की होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 30 से 35 किलोग्राम लेंटिल आपको 1 हेक्टर में सफिशियंट होगी। बात आती है मटर की। मटर भी अब 2 तरह के होते हैं, एक तो हम दाने के लिए उगाते हैं, एक हम उगाते हैं वेजिटेबल के लिए। तो जो वेजिटेबल पी होता है उसमें क्वांटिटी ज्यादा होती है। जैसे कोई किसान भाई दाने के लिए अगर मटर बो रहा है तो उसकी जो मात्रा होती है वो करीब करीब 90 से 100 किलोग्राम होती है। अगर हम बात करें वेजिटेबल की, तो वेजिटेबल थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा देते हैं हम, 115 किलो के हिसाब से उसको हम लगाते हैं। तो इस तरह क्वांटिटी आप फिक्स कर सकते हैं, और इसको आप बिल्कुल ले आए, क्योंकि अभी मौसम हो रहा है, अभी बुआई का समय आने वाला भी है।
1: डॉक्टर साहब, जो बुआई के समय की बात है
0: जी,
1: कई बार ऐसे कि हमारे जो किसान भाई बहन है जिन्होंने अगेती धान की फसल लगाई होगी तो उनके खेत खाली होंगे
0: जी,
1: कुछ है कि जो भी खाली करने में लगे हैं धीरे धीरे समेट रहे हैं, फसल प्रबंधन उनका चल रहा है
0: जी,
1: तो ऐसे में क्या उचित समय है तैयारी करना शुरू कर दें, तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं इस समय बुआई खेत में?
0: बिल्कुल, देखिए रबी का जो मौसम शुरू होता है हमारा, वो हमारा होता है अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक से शुरू होता है। तो देखो, ये जो समय है बुआई का, ये तय होता है कि हमारा जो एटमोस्फेयर का तापक्रम कितना है। तो जब तापक्रम डाउन होता है थोड़ा, जैसे करीब मैं बताऊं आपको, जैसे 22 डिग्री या 25 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाता है, तो उस समय हम इन फसलों की बुआई कर सकते हैं।
1: तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, कह सकते हैं कि अक्टूबर का जो प्रथम पखवाड़ा है उसको छोड़ दें और उसके बाद में हम दलहनी फसलों की बुआई कर सकते हैं। तो खेत की तैयारी कैसे करें?
0: क्योंकि जैसा आपने बोला कि कहीं धान उगा रखा है, तो कहीं बाजरा है, तो कहीं और अन्य प्रकार की फसलें उगाई खरीप में, तो कुछ फसलें तो क्या है कि शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। जैसे किसी ने मूंग बोया होगा तो मूंग तो उन्होंने हार्वेस्ट कर लिया, बाजरा भी हार्वेस्ट चल रहा है अभी। जैसे हमारा खेत खाली होता है, तो खाली होने के बाद क्या होता है ना कि हमारे खेत में काफी क्रॉप रेजिड्यू बच जाते हैं। तो उसके लिए हमें करना होता है कि पहली बात तो है कि उसमें मॉइस्चर कितना है। अगर सफिशियंट मॉइस्चर है जमीन में तो आप बिल्कुल उसमें रोटावेटर चला सकते हैं। और मॉइस्चर कम है थोड़ा सा तो उसमें

0: कल्टीवेटर चलाएंगे, कल्टीवेटर के बाद हम रोटावेटर चलाएंगे। रोटावेटर हम इसलिए चलाते हैं क्योंकि जो खरीफ की जो फसल है उसके जो क्रॉप रेजिड्यू है अवशेष है वो पड़े रहते हैं, तो उनको मिट्टी में अगर मिक्स कर देंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से डिकम्पोज हो जाएंगे और उनकी खाद बन जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी के बाद बुवाई करते समय ही हमें कुछ ऐसी बातें निश्चित रूप से ध्यान में रखनी होंगी कि हमारा उत्पादन अच्छा हो। कई बार देखा है कि हमने दलहनी फसल की बुवाई की और हमारे जो बीज का जो जमाव है वो बहुत दूर दूर खेत में हुआ, या कई बार हमने इतना बीज लगाया कि वो बहुत ज्यादा घिन की सघन हो गई।
0: बिल्कुल,
1: तो इसमें बड़ी समस्याएं आएंगी, उत्पादन में भी, निराई गुड़ाई में भी, खरपतवार नियंत्रण में भी। तो शुरू से विशेष ध्यान जो हमें देना है वो बुवाई के समय देना है। तो कौन कौन सी बातों का हम ध्यान रखें?
0: देखो, अगर बुवाई आप कर रहे हैं तो इसमें कई चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। अब हम बुवाई कैसे करें? कई बार क्या है, किसान भाई ब्रॉडकास्ट से कर देते हैं और अब तो किसान भाई एडवांस हो गए हैं तो अभी वो लोग कतार में बुवाई करते हैं, यानी कि सीड ड्रिल का इस्तेमाल भी करते हैं
1: जी।
0: तो मैं यही कहूंगा कि पहली बात तो यह है कि सीड ड्रिल का इस्तेमाल करो। दूसरी बात यह हो कि इस बुवाई का जो डेप्थ होती है वो कितनी होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: बिल्कुल,
0: अगर बीज ज्यादा गहरा चला गया तो नहीं उगेगा, और बीज अगर ऊपर रह गया तो भी नहीं उगेगा,
1: तो भी नहीं उगेगा।
0: तो इसलिए दोनों कंडीशन में बीज नहीं उगेगा, इसलिए इसकी ऑप्टिमम डेप्थ होती है। चने के लिए मैं बताऊं, चने की जो डेप्थ होती है वो होती है 8 सेंटीमीटर। थोड़ा गहरा बोएंगे तो चना बहुत बढ़िया उगेगा। आप और जैसे हम बात करूं, मैं लेंटिक का सीट थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए इसका 5 से लेकर 6 सेंटीमीटर पे आप बो सकते हैं, और डिपेंड करता है कि नमी कैसी है, कितनी है। जनरली हम लोग चने की जब बात करते हैं तो चने में जो कतार से कतार की दूरी जो होती है वो होती है करीब करीब 30 से 35 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम भी नहीं होनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि किस प्रकार से हमें बुआई करनी है, बहुत सावधानी से ध्यान रखना है ताकि उत्पादन अच्छा हो। लेकिन वहीं जो पोषक प्रबंधन की बात आती है, क्योंकि कई बार हम बुआई के समय ही हमें कुछ ना कुछ पोषक तत्व खेत में डालने होते हैं और कुछ बाद में भी हम फिर डालते रहते हैं, तो पोषक प्रबंधन के विषय में आप क्या?
0: देखिए, ज्यादातर क्या होता है कि जो हमारे 17 न्यूट्रिएंट होते हैं वो फसल के लिए आवश्यक होते हैं, तो उसमें जैसे नाइट्रोजन छोड़ दें, बाकी सभी जितने भी आपका जो न्यूट्रिएंट है, जितने भी पोषक तत्व हैं, उनको हम लोग बुआई के समय ही डाल देते हैं, चाहे वो आपका मेजर न्यूट्रिएंट हो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो। जैसे मेजर में जैसे बात करूं, मैं आपको फास्फोरस या पोटास हो गया, दूसरे सेकेंडरी वाले जो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो गया, फिर बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है जिंक है, आयरन है, जो भी है, मैग्नीज, बोरोन। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो सोइल है उसका आपने टेस्ट करवाया नहीं करवाया, क्योंकि सोइल टेस्ट से पता लगता है कि आपकी जमीन में कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा है, कौन सा कम है। उसी तरह से आप उनकी क्वांटिटी फिक्स करेंगे, अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, कम है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये सब बुआई के समय करना पड़ेगा। दूसरी बात ये होती है कि जो जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं तो ये अपनी नाइट्रोजन की जो आपूर्ति है वो खुद ही कर लेती है, तो इसलिए हमको बाहर से कोई नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी हम किसान भाई से बोलते हैं कि आप 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन दे सकते हो, लेकिन वो शुरुआत में दे सकते हैं, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है ना, जब हमारी क्रॉप 25 दिन की होती है या 30 दिन की होती है, तब तक उसमें गांठें नहीं बनती है जड़ों में
1: जी।
0: तो तब तक उसकी नाइट्रोजन की पूर्ति कोई भी खाद देने से कर सकते हैं, देसी खाद दे सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में यही उम्मीद होती है कि अच्छे से अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई बहन लें। आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
2: प्रीति बहन
3: जी,
2: अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे ये बातचीत। बातचीत का विषय था रवि दलहनी फसलों की उन्नतशील किस्में एवं बुवाई। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर समर्थ लाल मीना, जो कि प्रधान वैज्ञानिक सदस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे थे अमित तेवतिया।
3: और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ओमवीर आर्या की आवाज में ये उपदेश।

भाइयों, अभी आपने ओमवीर आर्या की आवाज में सुना ये उपदेश, और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत यही संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को राम राम, राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं गजलें। सबसे पहली गजल भूपेंद्र सिंह जी की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजलें आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गजल की तरफ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी की आवाज में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, बीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली पुलिस की 1,789 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ईवॉल्व कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पेरू संसद दौरे में भारत पेरू संबंधों को और मजबूत करने में संसदीय सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने के अपने फैसले को स्थगित किया और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के सख्त, समन्वित और समयबद्ध कार्यान्वयन का आह्वान किया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। व्हीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस के लिए एमएसपी 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए एमएसपी में 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं के लिए 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस की 1,789 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली आईटीएमएस को अपनी मंजूरी दे दी है। आईटीएमएस का उद्देश्य यातायात प्रबंधन को वास्तविक यातायात स्थितियों के मुताबिक सक्षम बनाकर मौजूदा उपलब्ध सड़कों का बेहतर उपयोग करना है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज नीति अनुसंधान और शासन केंद्र द्वारा आयोजित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ईवॉल्व कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना सिर्फ परिवहन में बदलाव नहीं है, बल्कि इससे ऊर्जा, विनिर्माण और शहरी नियोजन में भी एक बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और पीएम ई ड्राइव के सहयोग से भारत एक मजबूत और स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहन तंत्र को तैयार कर रहा है। श्री संधू ने कहा कि स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन, भरोसेमंद चार्जिंग सुविधाओं और आसान लास्ट माइल कनेक्टिविटी से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और बेहतर होगी और प्रदूषण भी कम हो जाएगा। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे।

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सीएएफई मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा, यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पेरू की अपनी अध्ययन यात्रा के दौरान पेरू की संसद का दौरा किया। दौरे में श्री गुप्ता ने पेरू के सीनेटर विक्टर सेफरिनो फ्लोरेस रुइज के साथ चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष ने सीनेटर फ्लोरेस रुइज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और नेतृत्व पर आधारित पुस्तक द पावर विदिन भी भेंट की। इस संवाद ने भारत और पेरू के बीच आपसी समझ और सहभागिता को मजबूत करने में संसदीय और संस्थागत आदान प्रदान के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। इस दौरे का केंद्र संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी कार्य प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थाओं के संचालन से संबंधित विषय रहे। ये संवाद दोनों विधायिकाओं के बीच व्यापक स्तर पर संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान का हिस्सा रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम भाजपा को जानो के अंतर्गत आज श्रीलंका की सत्ताधारी पार्टी जनता विमुक्ति पेरेमुना जेवीपी के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा से बातचीत की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के साथ शासन और जनसेवा से जुड़े अपने विचार साझा किए। इस दौरान दिल्ली सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, कार्य पद्धतियों और 10 प्रमुख कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने श्रीलंका में इसी तरह की पहल और शासन से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत श्रीलंका संबंधों को एक नई ऊंचाई मिली है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के संबंध सिर्फ कूटनीतिक नहीं है बल्कि सभ्यता, संस्कृति और आस्था से भी जुड़े हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने आज सिविल लाइन स्थित विकास भवन 2 में एआई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस सेंटर को दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को एआई और उभरती हुई नई तकनीक की प्रैक्टिकल प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी अधिकारियों को अपने रोजमर्रा के काम में एआई को अच्छी तरह समझने और उसका इस्तेमाल करने में सक्षम बनाना है। साथ ही गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के जरूरी मानकों को बनाए रखना भी उन्हें सुनिश्चित करना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शिविर में सफाई मित्रों, स्वच्छाग्रहियों और उनके परिजनों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर केंद्र का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सफाई कर्मियों का सम्मान, सुरक्षा और कल्याण दिल्ली सरकार का संकल्प है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सफाई मित्र अपने परिश्रम और सेवा भाव से हर दिन दिल्ली को और स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। उनकी कर्म निष्ठा ही स्वच्छ दिल्ली की शक्ति है।
3: दिल्ली को सबसे साफ, सबसे सुंदर शहर बनाना यही हमारा ध्येय है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज मालवीय नगर में गीतांजलि फायर स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली फायर सर्विस के बेड़े में 20 फायर रिस्पांस मोटरबाइक और 26 क्विक रिस्पांस व्हीकल्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का यह संकल्प है कि राजधानी के हर नागरिक को आपात स्थिति में तेज, प्रभावी और पेशेवर अग्निशमन और बचाव सेवा उपलब्ध हो।

0: इनके संचालन के साथ दिल्ली फायर सर्विस के कार्यरत फायर स्टेशनों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है। यहां 16 अग्निशमन कर्मियों के साथ एक छोटा फायर टेंडर, एक क्विक रिस्पांस व्हीकल और आवश्यक अग्निशमन और बचाव उपकरण उपलब्ध हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
1: भारतीय रेल द्वारा जल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और जल सुरक्षा प्रबंधन के बारे में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल पर जलापूर्ति प्रणालियों के व्यापक उन्नयन के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ जल की गुणवत्ता के अंतिम स्तर पर जांच तक सीमित न रहकर यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यकर पेयजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रमुख महिला महाविद्यालयों के प्राचार्य, कुलपति, दिल्ली पुलिस और सिविक एजेंसियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य महाविद्यालयों के कैंपस और उसके आसपास छात्रों की सुरक्षा को और बेहतर बनाना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में भारतीय रक्षा संपदा सेवा आईडीईएस के 2025 बैच के प्रोबेशन अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने प्रोबेशनरी अधिकारियों से कहा कि वे रक्षा संपत्तियों की सुरक्षा और नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देते हुए ईमानदारी, दृढ़ता और जिम्मेदारी की मजबूत भावना के साथ काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशभर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ उनके हितों की रक्षा के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने 2027-28 मार्केटिंग सीजन के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को अपनी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि देशभर के लाखों किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने के अपने प्रस्तावित फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया है। यह फैसला नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और लगभग 20 वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद दिया गया है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल कर रहे थे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने अंग्रेजी में आकस्मिक समाचार संपादक और वाचक के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 12 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं newsonair.gov.in से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम यूपीएससी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के सख्त, समन्वित और समयबद्ध कार्यान्वयन का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में एक बैठक में आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को लक्षित रूप से कम करने के लिए संबंधित एनसीआर राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की जा रही तैयारियों, कार्यान्वयन और अनुपालन उपायों की स्थिति की समीक्षा की। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस की 1,789 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ई वॉल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पेरू संसद दौरे में भारत पेरू संबंधों को मजबूत करने में संसदीय सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के सख्त, समन्वित और समयबद्ध कार्यान्वयन का आह्वान।

0: ऑन किया और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम गीत मालिका। जी हाँ श्रोताओं, मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम गीत मालिका में। श्रोताओं, कहते हैं ना, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, वो दिल में उतर कर याद बन जाते हैं। तो आइए कार्यक्रम का पहला गीत ऐसा ही याद बनाने वाला।

श्रोतो, ये गीत हमने लिया था फिल्म तमाशा से। आवाजें थी अलका याग्निक और अरिजीत सिंह जी की। और इसी के साथ चलते हैं अगले गीत की तरफ। जी श्रोताओ, वक्त गुजर जाता है, मौसम बदल जाते हैं, मगर कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सुनते ही पुराने दिन लौट आते हैं यादों की तरह है।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता, ये गीत हमने लिया था फिल्म मैं हूं ना से, और आवाजें थी के और वसुंधरा दास की। जी श्रोताओ, यादों का भी अपना एक अंदाज होता है। कभी आंखों में नमी तो कभी होठों पर मुस्कान होती है। कुछ मुलाकातें छोटी होकर भी बहुत खास हो जाती हैं, और कुछ यादें उम्र भर हमारे साथ रहती हैं।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म चलते चलते से और आवाज थी अभिजीत जी की। जी श्रोताओ, एक धुन बजती है और कोई अपना याद आ जाता है, जैसे बीता हुआ कोई खूबसूरत सा पल। फिर से वही गाने, वही धुन, वही प्यारा सा गीत फिर से सुनने को मिल जाए तो वही यादें दोबारा से हमारे मस्तिष्क में आ जाती हैं, है ना?

शोदव ये गीत हमने लिया था फिल्म मर जावा से। आवाज थी अरिजीत सिंह जी की। शोदव कुछ रिश्ते शब्दों में नहीं यादों से जुड़े होते हैं और कुछ गीत उन्हीं रिश्तों को आवाज दे देते हैं, उनकी आवाज बन जाते हैं, वही पुराने लम्हे फिर से ताजा हो जाते हैं हमारी यादों में।

या तो ये गीत हमने सुना ज्योति नूरा और अरिजीत सिंह जी की आवाज में फिल्म संयोनी से। जी हाँ श्रोताओ, यादें भी कितनी अजीब होती हैं, दूर रहकर भी पास होती हैं। आंखें बंद करो तो सामने, और आंखें खोलो तो दिल में बस जाती हैं।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म सिम्बा से। आवाज थी अरिजीत सिंह और असीस कौर की। श्रोताओं, कुछ गीतों की खासियत होती है कि वो हमें हमारे ही पुराने पल तक ले चले जाते हैं। एक धुन बजती है और अचानक कोई चेहरा याद आ जाता है, कोई मुलाकात याद आ जाती है, या फिर जिंदगी का कोई खूबसूरत मोड़। इसीलिए तो संगीत को यादों का सबसे खूबसूरत साथी कहा जाता है।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म हीरो पंती से और आवाज थी अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल जी की। दोस्तों, हमने जो महसूस किया और जो कहा नहीं गया हमसे, जो शायद हम कभी कह भी नहीं पाते, यही सब किसी गीत की पंक्तियों में सुनाई दे जाए तो दिल की बातें अक्सर जुबां कह ही नहीं पाती, लेकिन एक गीत उन्हें कितनी आसानी से कह जाता है ना?

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया है फिल्म लव आजकल से और आवाज है मोहित चौहान जी की। और इसी गीत के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को यहीं पर इजाजत दीजिए कार्यक्रम समेटने की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर,

0: अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब चलते हैं समाचार संध्या की ओर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रूपये, जौ के लिए 136 रूपये, चने के लिए 83 रूपये और गेहूं में 25 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए प्रमुख दलहन और तिलहनों की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
2: आईटीएमएस में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1,529 ट्रैफिक सिग्नल्स है ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहां पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है आईटीएमएस से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
2: 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन में एमएनआरई का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि यह पहल 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। जलंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
3: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
1: श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान, पंजाब में उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए एक्सपर्ट @AIR News

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन्स इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
1: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई, कृषि अवसंरचना कोष, मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
2: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवा

0: और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आज नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि DMK, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
1: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज INDIA गठबंधन की बैठक थी, लेकिन बैठक के पहले ही गठबंधन बिखर गया और सच बात तो ये है कि INDIA गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।
0: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रिया गंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 27 ओवर में 1 विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
0: और अब खेल जगत और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्रश्न निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 पैसे पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रिमंडल की अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा समेत आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
4: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी। आई एम वर्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9:00।

आज से कुछ ही देर के बाद यानी 9:20 पर एक फनकार प्रोग्राम पेश किया जाएगा। 9:45 पर आप खबरें सुनेंगे और 9:55 पर मशवरे सेहत के सिलसिले के तहत कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से। शब के 10 बजे मार्केट मंत्रा प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे। 10:30 तामिल शायद प्रोग्राम पेश किया जाएगा। फरमाइश फिल्मी नकमों का यह प्रोग्राम जारी रहेगा 11:45 तक। दौरान प्रोग्राम 11 बजे आप सुनेंगे खबरें बरे सगीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन।

आखिरी शब प्रोग्राम पेश किया जाएगा शब के 12:30 बजे। इस प्रोग्राम में हम आपकी नजर करते हैं चंद सदाबहार पुराने फिल्मी नगमे। 12:50 पर खबरें नशे की जाएंगी और शब 1 बजे उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस के नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामने ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशोनाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेशे खिदमत है प्रोग्राम एक फनकार। इस प्रोग्राम में आज आप महसूस होंगे आशा भोसले की गाए चंद गैर फिल्मी गजलों और गीतों से। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सुनते हैं ये गजल।

0: हिंदुस्तान की दो मुमताज आवाजें
1: लता मंगेशकर और आशा भोसले, एक ही कॉइन की दो साइड्स कहने के बजाय उन्हें एक रिकॉर्ड के दो होते गए, गायकी के दो खूबसूरत मुमताज चेहरे। 80s में आशा जी ने दिल पड़ोसी है के नाम से एक एल्बम आर डी बर्मन की म्यूजिक डायरेक्शन तैयार की। गजल पेश।

0: एक फनकार प्रोग्राम में आज आप महसूस हो रहे थे आशा भोसले की गए चंद गैर फिल्मी गजलों और गीतों से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 9:45 हुए हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकज ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमतों एमएसपी में इजाफे की मंजूरी दी है। मौजूदा खरीफ सीजन के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कम अज कम इमदादी कीमत पर 5548 करोड़ रूपये मालियत की अहम दालों और तिलहन की खरीदारी की मंजूरी भी दी है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। मरकजी काबीना ने मुल्क में बिजली की बैन रियासती तरसील के निजाम को मजबूत बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे मरहले की स्कीम की मंजूरी दी है। काबीना दिल्ली के लिए ट्रैफिक बंदोबस्त के लिए इंटेलिजेंट निजाम की भी मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर तिजारत, दिफा, तवानाई और अहम टेक्नोलॉजीज के शोबों में दो तरफा तआवुन का जायजा लिया। गुजरात एटीएस, भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई में एक ईरानी कश्ती से 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। ईरानी कश्ती से 526 किलोग्राम मुनशियात भी जब्त की गई। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के तमगे जीते। भारत के तमगों की मजमूई तादाद बढ़कर 60 हो गई है, जिनमें सोने के 10, चांदी के 21 और कांसे के 29 तमगे शामिल हैं। खवातीन हॉकी टीम फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी सीसीईए ने आज मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमतों एमएसपी में इजाफे की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामा निगारों को जानकारी फराहम करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह फैसला किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत यकीनी बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि एमएसपी में सबसे ज्यादा इजाफा जाफरान की कीमत में 675 रूपये फी क्विंटल किया गया है। इसके बाद राई और सरसों की कीमतों में 415 रूपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मसूर दाल की कीमत में 390 रूपये फी क्विंटल, जौ की कीमत में 136 रूपये फी क्विंटल, चने की कीमत में 83 रूपये फी क्विंटल और गेहूं की कीमत में 25 रूपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। जनाब अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए रबी की तमाम फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में यह इजाफा मरकजी बजट 2018-19 में किए गए उस ऐलान के ऐन मुताबिक है, जिसके तहत एमएसपी को पैदावार की मुल्क भर की औसत लागत से कम 1.5 गुना मुकर्रर करने का फैसला किया गया था। वजीर मौसूफ ने कहा कि इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने दिल्ली पुलिस के जरिए ट्रैफिक के बंदोबस्त के इंटेलिजेंट निजाम ITMS प्रोजेक्ट के नफाज को भी मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 1789 करोड़ रूपये से ज्यादा है। दिल्ली में फिलहाल तकरीबन 71 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। ITMS का मकसद सड़कों की मौजूदा गुंजाइश का बेहतर इस्तेमाल करना है। जनाब अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि काबीना ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC के तीसरे मरहले के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। मरकज ने कीमत इमदादी स्कीम PSS के तहत खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कम अज कम इमदादी कीमत MSP पर 5547.99 करोड़ रूपये मालियत की अहम दालों और तिलहन की खरीदारी की मंजूरी दी है। वजारत ज़राअत ने कहा कि यह फैसला किसानों को मार्केट की कीमतों में कमी से तहफ्फुज फराहम करने और उनकी पैदावार के लिए मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत यकीनी बनाने के लिए किया गया है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर के किसानों के मफादात के तहफ्फुज और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए रबी फसलों की कम से कम इमदादी कीमत MSP में इजाफे की मंजूरी दी है। وزیر اعظم نے کہا کہ اس فیصلے سے ملک بھر کے لاکھوں کسانوں کو اپنی پیداوار کی مناسب اور منافع بخش قیمت کے حصول کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی کے بھارت منڈپم میں یونین پبلک سروس کمیشن یو پی ایس سی کی ست سالہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم مودی اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم مودی اس پروگرام میں یادگاری سکہ اور ڈاک ٹکٹ جاری کریں گے۔

नीज एक किताब का इजरा करेंगे जिसका उनवान है 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज तिजारत, दिफा, तवानाई और अहम टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन का जायजा लिया। वजीर आजम मोदी ने आज शाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने आलमी अमन और सिक्योरिटी के फरोग के लिए जारी कोशिशों समेत इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर तबादले ख्याल किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि गुजरात के इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते एटीएस, भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते आईजीसी और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई में एक ईरानी कश्ती से 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान कश्ती से 526 किलोग्राम मैथमफेटामाइन और हेरोइन जब्त की गई। यह कश्ती भारत के खसूसी इक्तजादी जोन के अंदर थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने उजागर किया कि मोदी हुकूमत मुल्क के नौजवानों को मुनशियात की लानत से महफूज रखने के लिए पुरअज़्म है। मरकजी वजारत दाखिला ने कहा है कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों लश्कर तैयबा के सीनियर कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी की हलाकत जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा के नेटवर्क के लिए एक बड़ा धचका है। मूसा को बडगाम जिले के खान साहब पुलिस स्टेशन के तहत वाकई गुरवेट कलां के इलाके में हलाक किया गया। वजारत ने कहा कि मूसा की हलाकत के साथ ही लश्कर तैयबा के वो चारों सीनियर कमांडर हलाक किए जा चुके हैं जो 2022 से जम्मू कश्मीर में सरगर्म थे। हुकूमत ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो रूस की मुसल्ला अफवाज में शामिल होने के लिए भारतीय शहरियत तर्क न करें। एक बयान में वजारत खारजा ने रूस का सफर करने वाले भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो वहां रोजगार के मौके के सिलसिले में इंतहाई एहतियात बरतें। वजारत ने खबरदार किया कि रूसी मुसल्ला अफवाज में शामिल होने के लिए रजाकाराना तौर पर पेश की जाने वाली मुलाजमतें खतरनाक हैं और हुकूमत इसकी सख्ती से हौसला शिकनी करती है। वजारत ने कहा है कि रूस की मुसल्ला अफवाज में गैर सरकारी इदारों के जरिए गैर मुल्की शहरियों को शामिल किया जा रहा है। वजारत ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वो ऐसे एजेंट्स या तंजीमों की तरफ से मुलाजमत की पेशकश को कबूल करते वक्त इंतहाई एहतियात बरतें जो वजारत खारजा में रजिस्टर्ड नहीं है। जापान में जारी एशियन गेम्स में भारत के लिए आज का दिन अब तक का सबसे कामयाब दिन रहा क्योंकि आज भारत ने सोने के 4 तमगे हासिल किए। भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में हैट्रिक मुकम्मल की और खवातीन की टीम, मिक्स टीम और मर्दों की टीम ने पहली पोजीशन हासिल की। भारत ने निशानेबाजी में भी सोने का तमगा जीता और मिक्स ट्रैप टीम में पहली पोजीशन हासिल की। खवातीन की हॉकी में भारत ने आज जनूबी कोरिया को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में जुमे के रोज भारत का मुकाबला दिफाई चैंपियन चीन से होगा। स्क्वैश में भारत के मर्दों और खवातीन की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और उन्होंने मजीद 2 तमगों को यकीनी बना लिया है। इस तरह भारत के तमगों की मजमूई तादाद बढ़कर 60 हो गई है जिसमें सोने के 10 तमगे, चांदी के 21 और कांसे के 29 तमगे शामिल हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम से कम इमदादी कीमतों एमएसपी में इजाफे की मंजूरी दी है। मौजूदा खरीफ सीजन के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कम से कम इमदादी कीमत पर 5548 करोड़ रुपए मालियत की अहम दालों और तिलहन की खरीदारी की मंजूरी भी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। मरकजी काबीना ने मुल्क में बिजली की बैन रियासती तरसील के निजाम को मजबूत बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे मरहले की स्कीम को मंजूरी दी है। काबीना दिल्ली के लिए ट्रैफिक बंदोबस्त के लिए इंटेलिजेंट निजाम की भी मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर तिजारत, दिफा, तवानाई और अहम टेक्नोलॉजीज के शोबों में दो तरफा तआवुन का जायजा लिया। गुजरात एटीएस, भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई में एक ईरानी कश्ती से 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। ईरानी कश्ती से 526 किलोग्राम मुनशियात भी जब्त की गई।
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते निखिल, गुड इवनिंग अनुभा।
1: सबसे पहले हेडलाइंस अनुभा से।
0: थैंक यू निखिल। इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स नियरली फ्लैट, निफ्टी सेटल्स एट 22,620। कैबिनेट अप्रूव्स एमएसपी हाइक फॉर रबी क्रॉप्स इन 2027-28 and global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स करीब करीब सपाट कारोबार के साथ बंद हुआ। निफ्टी 22,620 पर पहुंचा। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2027-28 में रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल।
0: Listeners, before we begin with the main stories, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक यानी कि 0.42% नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। मासिक आधार पर सेंसेक्स इस महीने 5.8% लुढ़का जबकि निफ्टी 6% गिर गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार की बात करें तो मिड कैप सूचकांक में कोई बदलाव नहीं आया जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.3% की तेजी दर्ज हुई। इससे पहले आज सुबह बाजार सपाट स्तर पर खुले क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और ग्लोबल यील्ड को लेकर की चिंताओं के बीच निवेशक सतर्क रहे। सेंसेक्स ज्यादातर समय बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा जबकि निफ्टी में उतार चढ़ाव होता रहा। बढ़त बनाए रखने में असफल रहने के कारण कारोबार के आखिरी घंटे में दोनों सूचकांक नीचे आ गए।
0: Benchmark domestic equity indices declined for the third straight session today. The Sensex settled nearly flat, down by 49 points to close at 72,480. The Nifty fell by 96 points or 0.42% to settle at 22,620. On a monthly basis, the Sensex shed over 5.8%, while the Nifty was down 6% in September. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index remained unchanged, while the small-cap 100 index rose 0.3%. Markets opened on a flat note this morning as investors remained cautious amid volatile crude prices and concerns over global yields. The Sensex stayed in positive territory for most of the session, while the Nifty swung between gains and losses. Failing to hold on to those gains, the indices edged lower in the final hour of trade.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों में आज गिरावट आई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एटर्नल 2.3%, सन फार्मा 2.1% से ज्यादा और टाइटन 2% गिर गए। इसके विपरीत कोटक महिंद्रा बैंक 2.9%, आईसीआईसीआई बैंक 2.3% और इंडिगो 2% बढ़े।
0: In the sectoral indices on the BSE, 17 out of 28 sectors edged higher. Among the top gainers, Realty jumped 1.4%. Mid-small private banks rose 1% and BankEx added 0.7%. In contrast, hospitals tanked 5%, healthcare lost over 2.3% and consumer durables dropped over 1.4%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,232 companies declined. Shares of 2,144 companies advanced while shares of 234 companies remained unchanged.

0: 50-50 में छमाही समीक्षा के बाद विप्रो लिमिटेड को हटाकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को आज शामिल कर लिया गया है और विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 रूपये पर बंद हुआ। सिद्धार्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने जो भी अपने श्रोताओं को बताया कि निफ्टी 50 में छमाही समीक्षा के बाद विप्रो लिमिटेड को हटाकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को शामिल किया गया, इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा जानकारी दें, कैसे होता है ये?
1: नहीं देखिए, जो निफ्टी का 50 का जो इंडेक्स है वो तकरीबन 50 कंपनियों का जो एक इंडेक्स है और ये मान के चलें कि जो 12-13 सेक्टर्स की जो 50 कंपनियां वो सभी अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां होती हैं, ब्लू चिप कंपनीज कह सकते हैं और हर 6 महीने पे इसका एक बार जो है रिविजन होता है इंडेक्स का, मतलब उसका एक रिविजन होता है। नेसेसरी नहीं है कि कोई कंपनी निकले या आए, लेकिन उसको रिव्यू किया जाता है और इसमें होता क्या है कि जो 6 महीने का जो एवरेज फ्री फ्लोट शेयर्स का होता है, जो कि शेयर्स जो कि ट्रेडेबल है, फ्री फ्लोट शेयर्स का मतलब होता है कि शेयर जो खरीदे और बेचे जा सके, ना कि वो शेयर्स जो कि प्रमोटर के पास हैं, तो ऐसे शेयर्स जो कि ट्रेडेबल हैं, उसके बेसिस पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बनता है उसके बेसिस पे ये फैसला होता है कि किसी कंपनी को बाहर ले जाना है या अंदर लाना है। और जो अंदर आने वाली कंपनी है उसका जो सबसे छोटी कंपनी, जो सबसे बाहर जाने वाली कंपनी है, उससे कम से कम 1.5 गुना मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। तो उसी के बेसिस पे अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है निफ्टी का पार्ट होगा और विप्रो जो है ऐसा स्वाभाविक है कि चूंकि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब चीजों का वो आया है तब से उसके शेयरों में गिरावट भी आई, तो इस वजह से वो बाहर जा रहा है।
0: सिद्धार्थ, आज की शेयर बाजार की खबरों की अगर बात करें और उस पर आंकड़ों की हम बात करते हैं तो देखते हैं कि निफ्टी में 8 साल में सबसे खराब प्रदर्शन देखा गया और पिछले 25 साल में सबसे खराब सितंबर ये महीना गया, चूंकि आज इस महीने का आखिरी दिन है। मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा, क्या ये शेयर मार्केट में रिसेशन है या कुछ और है, या वैश्विक जो हमारी चिंताएं हैं, जो वैश्विक गतिविधियां हैं उनका असर है, क्या कहेंगे?
1: नहीं देखिए निखिल, जहां तक जो शेयर बाजार में आजकल जो देखा जा रहा है, मैं कहूंगा पिछले कुछ समय से जो शेयर बाजार में दबाव है या जो वोलेटाइल है शेयर बाजार, उसके मुझे लगता है जो ज्यादा कारण है वो देश के बाहर से है, जो जैसे कि अमेरिका में आप देखेंगे और अब खाली अमेरिका में ये सीमित नहीं है, चूंकि महंगाई सब जगह बढ़ रही है तो बॉन्ड यील्ड्स जो कि वो सब जगह बढ़ रही है, साथ साथ जो तेल की कीमतें हैं वेस्ट एशिया जब से शुरू हुआ ये क्राइसिस, अमेरिका और ईरान की जो युद्ध चल रहा है उसके बाद से हमेशा से लगातार क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो $100 के आसपास के ऊपर हैं आज भी, तो वो एक बड़ा कारण है। वेस्ट एशिया जो मैंने बोला उसके वजह से जो अनिश्चितता आई है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन है, वो एक कारण है। साथ में एक ये भी चिंता है, और हालांकि हम देख भी रहे अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वहां का जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने ऑलरेडी महंगाई को देखते हुए इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है 25 बेसिस पॉइंट्स का, और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि हमारा रिजर्व बैंक भी शायद अपने जो अक्टूबर में मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा होगी उसमें हो सकता है इंटरेस्ट रेट वो भी बढ़ा दें, तो मुझे लगता है। और साथ साथ इसके साथ साथ जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने भी जो अभी तक बिकवाली है वो अभी तक बनी हुई है, उसमें मतलब रुकावट नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन हमारी बाजार फिर भी मैं कहूंगा जो थोड़ी बहुत स्थिरता हमें दिखती है काफी हद तक, क्योंकि पहले क्या होता था जब विदेशी निवेशक जाते थे तो बहुत तेजी से बाजार गिरती थी, लेकिन अभी देखेंगे आप पिछले 2 सालों में तकरीबन 2.5-3 लाख करोड़ के रुपए के आसपास जो है विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों से निकला है, लेकिन उसके विपरीत जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उन्होंने तकरीबन इसका डबल 4.5-5 लाख करोड़ के आसपास जो है भारतीय बाजारों में निवेश किया है। भारत की अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल मजबूत हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ चूंकि दुनिया में इतनी अस्थिरता है तो शायद उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ रहा है।
2: सिद्धार्थ, इट्स अ वेरी हार्टनिंग थिंग दैट यू आर सेइंग दैट यू नो आवर डोमेस्टिक इकॉनमी, द इंडियन इकॉनमी इज you know quite stable when you look at whatever is happening around the world, when you look at the global economy. But at the same time, like you said, that there's been volatility in our markets, whatever may be the reasons. So I want to ask you one question, that for the investors who probably want to are looking for other avenues for investment in terms of equity investment, so would you say that right now, like the US markets are doing pretty well comparatively, what are the options for domestic investors? Can they move out? Can they invest in markets overseas? If so, how can they do it? See, and Anubha, is it advisable also?
1: See, Anubha, in my view, it's not very easy to track every market, right, especially the overseas market. Hmm. Yes, you are absolutely right that if you look at markets outside, US markets have done fairly well, even

0: Cosby has done well. South Korean market has done well. So there are other markets also where, yes, investors are getting good money. But I would say for our domestic investors, especially for retail investors, they should have faith in the Indian market.
1: Right.
0: Because our, as I said earlier also, our economic fundamentals are completely sound. So there's nothing to worry. Yes.
1: This is not to take away from our domestic market or our indices. It's like in addition to that.
0: Yo, I agree. But yes, you can obviously hedge your
1: bets.
0: Yeah. But in a way, I would say for a retail investor, it's not very easy to track every market. And every market requires different kind of mindset and knowledge. That's fair. So I would say stay put in our markets, but I would say also, plus it's always my view, like if you want to invest in markets, as we say, people do through mutual fund, through a systematic investment plan. If you are investing in the markets directly, also follow SIP approach. Don't go very gung-ho. Do it at a very slow pace, slow and in small tranches. So, but I would say good time, because markets are falling, they're giving you an also an opportunity to buy.
1: An entry point also for those who want to, you know, like spare the money and maybe invest in better blue chip companies. Right.
0: Absolutely.
1: What about the GIFT City route for investment?
0: GIFT City route is also good. I wouldn't say that's a bad, because that's obviously you're getting you can invest staying in India, you can invest in overseas indices. So that's a good option for Indian retail investors or even other investors to go and invest in the GIFT City.
1: Right. But I think the crux of the matter here is, like you said, trust, have faith in your own economy. Our markets are doing pretty well. And I think the most important thing, remain calm and patient.
0: Yeah. What I'm trying to say is, yes, markets are getting impacted and that's happening.
1: Yes.
0: But don't lose hope. There's nothing to worry. There's nothing has happened in India to which our markets are reacting.
1: Right.
2: Well, Siddharth, ek chota sawal aap se yahan par puchna chahunga. Agar aankdon ki phir se baat kare to lagbhag 1000 se adhik ankon ki do din mein giravat hum dekh rahe hain. Itni tezi se giravat aa rahi hai. Kya lagta hai ki jab market sambhalega to इसी तेजी से हम संभलते हुए दिखाई देंगे?
0: देखिए निखिल, हो क्या रहा है कि जो अनिश्चितता है वो काफी हद तक अब निश्चित हो गई है, और दिनों दिन चीजें और कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, चाहे वो अमेरिका और ईरान का युद्ध हो. ईरान की तरफ से रोज समझौते की बात आती है, लेकिन अमेरिका की तरफ से कुछ और, उनकी तरफ से कुछ और स्टेटमेंट आता है, उसमें और नए नए एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अनिश्चितता बढ़ रही. साथ ही साथ में आपका जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने एक दो अभी कुछ दिन पहले ही ये स्टेटमेंट दिया कि जो सप्लाई शॉक्स हैं या जो क्रूड ऑयल की जो सप्लाईज हैं उनका इंतजाम करना भी आसान नहीं है. उनको फ्रेट, उनको लाना फ्रेट, और साथ साथ उनके इंश्योरेंस, तो इन सब चीजों में काफी अनिश्चितता और चैलेंजेस आ रहे हैं. तो आने वाला समय और अनसर्टेनिटी वाला हो सकता है. साथ साथ आप देखेंगे सप्लाई डिसरप्शन की वजह से मेटल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं अनिश्चितता इतनी ज्यादा है, उसका कहीं ना कहीं बाजार पे भी असर पड़ रहा है.
2: जी, आगे बढ़ते हैं. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी तय रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी. नई दिल्ली में इस फैसले की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम दिलाने के लिए लिया गया है. उन्होंने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कुसुम के लिए 675 रूपये प्रति क्विंटल की गई है. इसके बाद रेपसीड और सरसों के लिए 413 रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है.
3: रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से टोटल 84,263 करोड़ रुपीस हमारे किसान भाइयों के मेहनत के इसमें जाएंगे. आप जानते हैं कि इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस. सीएसीपी की रिकमेंडेशन आई और जो रबी सीजन के 6 बड़े क्रॉप्स हैं, व्हीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इनके जो कमिटमेंट है कॉस्ट से मिनिमम 50% अधिक होना, उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते ये नए एमएसपी आज अप्रूव हुए हैं.
2: केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की योजना को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पहल भारत के अंतर्राज्यीय परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाएगी. इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संभव हो सकेगा. सिद्धार्थ, ऐसे समय में जब इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, ग्लोबली भी और इंटरनेशनल भी, साथ साथ हमारी इकोनॉमी पर भी कई सारे असर देखे जा रहे हैं. ऐसे में इस तरह के फैसले लेना आपको क्या लगता है, कैसा निर्णय है ये, किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी?
0: नहीं, जहां तक कैबिनेट का ये फैसला है एमएसपी का, ये मुझे लगता है कि जब से नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सरकार बनी है, जब से वो प्रधानमंत्री का उन्होंने कार्यभार संभाला है, तो

0: डिस्काउंट रेट एमडीआर फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर से लागू होगा। इस फ्रेमवर्क के तहत 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट पर छूट के बारे में एमपीसीआई ने कहा है कि यूपीआई के जरिए किए गए ऐसे पेमेंट खास फ्लैट रेट छूट के लिए योग्य है। 2000 रुपए से ज्यादा के इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट के लिए प्रतिशत आधारित चार्ज के स्थान पर प्रति ट्रांजैक्शन 5 रुपए का फ्लैट एमडीआर लागू होगा। यह कहा गया कि रियायती मॉडल यह पक्का करता है कि ज्यादा कीमत वाले सालाना या छमाही प्रीमियम पेमेंट करने वाले पॉलिसी धारकों को भारी बैकएंड फीस की दिक्कत का सामना न करना पड़े। बदले में इंश्योरेंस कंपनियों को कम लागत वाले डिजिटल कलेक्शन से फायदा होगा, जिससे उन्हें पूरे भारत में इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
1: Meanwhile, the All India Consumer Products Federation and the All India Mobile Retailers Association have decided to withdraw their proposed call for a no UPI day on Friday. The decision was taken following a meeting between a delegation of around 20 senior trade leaders led by BJP MP and Secretary General of the Confederation of All India Traders, Praveen Khandelwal, and Finance Minister Nirmala Sitharaman in New Delhi. During the meeting, the Finance Minister assured the delegation that the government remains committed to promoting digital transactions while safeguarding the interests of all stakeholders. The delegation expressed confidence that continued dialogue between the government and trade bodies would help evolve a practical and sustainable framework to further strengthen India's digital economy. Let's move on to the next story. India registered manufacturing sector recorded strong growth in financial year 2025, with industrial output rising 7.81% and total employment increasing about 7.2% over the previous year. According to the annual survey of industries data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation today, the total number of establishments in this sector increased from 2.6 lakh in financial year 24 to 2.67 lakh in financial year 25, representing a growth of 2.64%. Meanwhile, total emoluments paid to the workforce also increased by over 12% in 2024-25 on an annual basis. So that's a very brief comment in this increase in the manufacturing sector.
2: I think manufacturing from day one has been the focus of this government, and I think that is why we have launched product specific manufacturing initiatives also. And one of the glaring examples or the examples of big success is mobile phones, where yes, we are exporting exponentially. There is a rise in exports from India, and also mobile phones which are manufactured in India. Same way electronics, electrical equipments, and government of the day is heavily pushing on this. Now another example is semiconductors, yes, which we would soon start seeing that India emerges as one of the big players in semiconductors. So I think that's a big initiative. And also, why focus on manufacturing? Because that is the place from where we would get large scale employment.
1: Right.
0: एशियाई बाजारों में आज जापान का निक्केई 225 1.9% से ज्यादा ऊपर चढ़कर, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी आधा प्रतिशत नीचे अपने बंद हुआ।
1: Let's move on to commodities. Global crude oil prices rose today amid stalled talks between the US and Iran aimed at ending the West Asian conflict. Brent crude was trading 0.4% up at $103.05 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 1.3% higher at $90.52 per barrel when reports last came in.
0: सिद्धार्थ, ये जो हम देख रहे हैं, जैसा कि आपने बोला कि क्रूड ऑयल के दाम में लगातार बढ़ोतरी, और आपने खुद बोला कि एक उबाल सा देख रहे हैं, ऐसे में इस तरह की खबर आना कहां तक हमें किस तरह की स्थिति में ले जा रहा है? और अभी हमने देखा 28 सितंबर को $108 तक भी पहुंच गया था।
2: और अगर आप हिंदुस्तान की जो हमारी इंडियन क्रूड बास्केट है जो हम कंज्यूम करते हैं, वो तकरीबन $114-120 प्रति बैरल के आसपास है, तो हमें तो बहुत ज्यादा ये, क्योंकि हम 90% अपना जो है एनर्जी जो है इंपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो मुझे लगता है ये चिंता का सबब है, और ये ऐसे समय पर हो रहा है जब हम ये भी देख रहे हैं कि जो हॉर्मूज या सऊदी अरेबिया का जो प्रोडक्शन है और जो अब आ रहा है बाजार में, वो काफी तेजी से जब युद्ध शुरू हुआ था ऑलमोस्ट उस लेवल पर पहुंच रहा है, उसके बावजूद ये तेजी बनी हुई है, तो ये थोड़ा चिंताजनक है। लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि अभी सप्लाई एकदम से बढ़ी है, तो हो सकता है उसका कुछ कीमतों पे असर पड़े।
1: और बढ़ते हैं
0: आगे बढ़ते हैं घरेलू सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.1% बढ़कर 1,47,888 रुपए प्रति दस ग्राम पर रहा था। वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के क्लोजिंग रेट्स के अनुसार चांदी की कीमत 0.5% गिरकर 2,20,435 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। सिद्धार्थ, अभी सोने के दाम जिस तरह से उतार चढ़ाव हम इसमें देख रहे, एक स्थायित्व तो नजर नहीं आ रहा, फिर भी ये भी सुनने में आता है कि सोने के दाम और लगातार तेजी से बढ़ेंगे।
2: नहीं निखिल, अभी तो थोड़े से दाम नीचे आए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इसी लेवल के आसपास जो है ट्रेड करेगा गोल्ड अभी फिलहाल, और उसकी जो दिशा है वो कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड्स वो किस स्तर पे रहती है या किधर जाती है, साथ साथ क्रूड ऑयल का क्या होता है और डॉलर की जो वो है वो कितना मजबूत और होता है, तो वो शायद दिशा तय करेंगी। लेकिन मुझे लगता है $4,400 पर आउंस के आसपास मुझे लगता है सपोर्ट अभी भी है, उससे नीचे मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि अभी भी सेंट्रल बैंक्स सोना खरीद रहे हैं और हमारे यहाँ तो त्योहार का मौसम आ रहा है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में तो लोग अभी घरों में सोना बहुत बड़े पैमाने पर त्योहारों में खरीदा जाता है।
1: सिद्धार्थ, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, यू नो वी हैव सीन कॉमन विजडम सेज दैट व्हेन क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज, यू नो गोल्ड प्राइसेस, गोल्ड एंड सिल्वर बिकम सेफ हेवन एंड सो वन एक्सपेक्ट्स, बट टुडे ऑफ कोर्स वी सी दैट एज ऑफ नाउ द प्राइसेस हैव गॉन अप, बट इन द पास्ट वी हैव बीन सीइंग अ वेरी क्विक कमेंट दैट द prices are coming down. Do you see it as a good thing for bullion? Very quick comment.
2: See, I don't see it in a, basically the prices of bond yields are hardening, so that is the reason for their immediate coming down, so that right. is the only reason.
0: Siddharth, is karyakram mein shamil hone ke liye aur humse charcha karne ke liye aapka bahut bahut aabhar.
2: Aap dono ko bhi dhanyawad.
1: And before we end, look at the headlines in Indian stock market. Sensex ends nearly flat. Nifty settles at 22,620. Cabinet approves MSP hike for rabi crops in 2027-28 and global crude oil prices rise. And that's it in this program. For now, goodbye and namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
1: अभी आप मार्केट मंत्रा प्रोग्राम को दोबारा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर हमारी नशा जारी है। तामिले इरशाद, फरमाइशी फिल्मों का आपका पसंदीदा प्रोग्राम, चले आए हैं जनाब आपसे मुलाकात करने, दोस्ती की जानिब एक और कदम बढ़ाने।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, ये पहला नगमा था तामिल इरशाद प्रोग्राम का हेमंत कुमार की मौसीकी में फिल्म दुनिया झुकती है से। और अगला नगमा, इससे पहले कि आपकी नजर किया जाए, पहले तो जाहिर सी बात है आपके नाम शामिल किए जाएंगे, थोड़ा सा हम इनको अपडेट करना चाहेंगे, उसके बाद फिर आपके नाम हम शामिल करते हैं। और ये पहला जो ईमेल हमें मौसूल हुआ है, ऊपरकोट मौला चौखुंटी बुलंदशहर से मिला है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी की जानिब से है और इसी नगमे को सुन रहे थे। कौन साहब है? सूरज कुमार, अजय कुमार और सपना है, आगरा से आपने ये फरमाइश अमीर साल की है। और पश्चिम व दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, डीके अलवी की फरमाइश भी थी, इसी नगमे को सुनना चाहते थे। दिवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और उनके कुछ और साथी, और सहारनपुर से आशु नारंग, सुरेश नारंग, साथ में सोनाली, और ये फरमाइश मेल मिला अकली दीवान एमपी से, रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी और काजल का। और अगला मेल रिपीट हो गया, बहुत जल्दी इसको भी साइडलाइन करना पड़ेगा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा की फरमाइश भी मिली। और आप हैं कस्बा अग्रवाल, मंडी टटी, बागपत से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और शारिक अली खान, और ये फरमाइश मेल मिला शुगर फैक्ट्री गेवराई महाराष्ट्र से दिनकर सालवे और गंगा सालवे का। और अगला ईमेल है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, महेश कुमार और नियति कुमारी का, और इसी नगमे को एंजॉय कर रहे थे। अली का डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी, ये फरमाइश मेल मिला कालका से। हमारे मुस्तकिल सामने शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, साथ में उनके बिट्टा बजाज हमेशा की तरह, कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा भी हैं, और ये फरमाइश मिली है वासेगांव बाजार से करण रंजीत पुनकर की। और इसी नगमे को पसंद किया था सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा ने। आवास विकास कॉलोनी काशगंज से इस नगमे को सुनने के मुतमन्नी थे पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़ और सुयश आशीष गौड़। और मुल्लापुर दाखा से फरमाइश की राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन ने। और तामिल इरशाद प्रोग्राम का अगला ईमेल पिंजौर से मिला चंद्रमोहन और इंद्र मोहन का। और पंजाब रामटेके यशोधरा शिव की फरमाइश सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से मिली थी। और आप हैं मंगलगेट मलकापुर महाराष्ट्र से रामेश्वर तलेकर, वंदना तलेकर, दिव्या हर्ष तलेकर और करनाल से बलविंदर सिंह सोढ़ी साहब। चलिए तो जनाब अगला नगमा आपकी नजर करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत नगमा है। और आप तमाम सामीन की फरमाइश पर मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में है और फिल्म है ताजमहल, रोशन की मौसीकी, साहिल लुधियानवी नगमा निगार। सुनना चाहते हैं शाहनगर यवतमान से राहुल मनवर सरला, मनवर साथ में बेबी प्रियांशी, और ये इंतजार को खत्म करने वाला ईमेल है जाफरगंज जहानाबाद बिहार से इंतजार अंजुम और आलम आरा का। और मास्टर विट्ठल सुरोशे, मायरा सुरोशे, साथ में सुषमा सुरोशे, काटा रोड वाशिम, शिवाजी नगर वाशिम से हैं। दरअसल पूरा अगर पता इनका जाना जाए तो मजनू का टीला से हैं, दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा। और ये फरमाइशी ईमेल किशोर नगर अमरावती से हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे और उनके कुछ और साथी, और चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा भी साथ में शामिल हैं हमेशा की तरह से। और संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, संप्रीत की फरमाइश घंटाघर चौक खंडवा से मिली है। और आप हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं जनाब। आज बहुत जल्दी तशरीफ लाए हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर एमपी से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत और राशि रक्षित। उम्मीद है कि आपकी धड़कनों को थोड़ा सा सुकून तो जरूर मिला होगा जनाब। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी और रिफाकत हैं जसपुर उत्तराखंड से। और ये फरमाइश मेल मौसूल है पुराना तालाब डुमरा से वलीउल अंसारी, असमनाज अंसारी, मोहम्मद सुल्तान अंसारी का। पोटियागला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और उनके कुछ और साथी। और अगला ईमेल बहुत जल्दी रिपीट हो गया, इसको भी साइडलाइन करना पड़ेगा। योगीराज मस्के, हरी मस्के, इंदुमती हैं, गांव बिटोडा भोयर, मंगलूर पीर जिला वाशिम, पश्चिम विदर्भ से। बहुत लंबा पता हो गया जनाब। और तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम रावी शेख, शेख रहीमान ना भी इंतजार में अगले नगमे के। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं
टोरवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी और आप हैं राजू माठे, ज्ञानेश्वर माठे और गजन माठे आसलगांव बुल्ढाना महाराष्ट्र से। इसे नखनऊ को सुनना चाहते हैं पश्चिम थोक गंजे टंडवा से मास्टर लीम रजा सिद्दीकी, मास्टर मुनवर हुसैन अंसारी और भाई नईम रजा सिद्दीकी। रेलवे रोड गंज टंडवा से मोहम्मद कलीम जख्मी, बेबी फातिमा गाजी और नजमा बेगम की फरमाइश भी है। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल और निर्वित्ति शेर सागर। और अब है जनाब नगमे की बारी और नगमा तो बहुत खूबसूरत है। गजब क्या तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया।

वादा तो जनाब हम भी निभाते हैं और चले आते हैं आपसे गाहे बगाहे मुलाकात करने, और आज भी यही सिलसिला जारी है। अगला नगमा आप तमाम सामेईन की नजर करते हैं तामिल इरशाद प्रोग्राम का। खान जबीर उदयपुर से हैं, जब्बार मोहम्मद नजीब खान और साथ में मंजू अशरफ, और ये फरमाइश मिली है अलगी डांड कोरबा छत्तीसगढ़ से जोहित यादव फूलजी यादव और उनके साथियों की। और सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार बिल्लू निषाद हैं जेल रोड रायगढ़ से, इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। नलेश्वर नगर नरवील महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर, साथ में है विशाल। और अगला नगमा आपकी नजर भी करते हैं, यहां पर रोहिदास चौक पंदरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोटके। गंज डुंडवारा यूपी से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज और नवाज शेख की फरमाइश भी है। और नाना डोंगर दीवे के साथ में कौन कौन है, रमताई डोंगर दीवे, राहुल डोंगर दीवे, टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से, इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं। पलसी से विजय शेखुकार, ऋषिकेश शेखुकार और डॉक्टर जयश्री। और अगला नगमा आपकी नजर भी करते हैं, आप हैं अशोक दले, सविता दले और निकेत, आपने कुमार गली श्रीरामपुर से ये फरमाइश हमें इरसाल की है। और अगला ईमेल मिला है गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसूद, शाहिन हसन, नाजिया इब्राहिम का। और अगले नगमे को आप भी सुनना चाहते हैं, मोहम्मद यासीन अंजान, साहिबा नवाज, हसन नवाज, दादा बाबू रोड गेडी झारखंड से। और पिपरिया से हैं कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और शिप्रा गुप्ता। और नासिर शेख, नाजिर नासिर, साजिद शाहिद, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से इस वक्त सुन रहे हैं तामिल इरशाद प्रोग्राम। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु ताशु की फरमाइश है पाकुर झारखंड से, और इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं शेरवानी स्कूल गंज डंडवारा से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर। अगला ईमेल रिपीट हो गया, इसको करते हैं साइड लाइन। उमाली महाराष्ट्र से अनु कुमार, उद्धव पाटिल की फरमाइश भी है अगले नगमे की। और अल्तमश समीना मुदस्सर, ये बच्चे हैं जुम्मा नगर खंडवा से जो इस वक्त भी जागकर सुन रहे हैं तामिल इरशाद प्रोग्राम। बुल्ढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सैयद उदामद, शशिकला दामद, साथ में सुमेद कुमार। और ये फरमाइश मेरे मौसूल हुआ है नाज मंजिल मैसूर सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, प्रिंस बेगम, इशद अकरम और रुबीना वसीम का। और पंचकुला सेक्टर 9 से अशोक चौक, अश्वनी चौक, साथ में गोविंद चौक। और ये फरमाइश कृष्ण मोहन यादव, माया रानी और कंचन के सुल्तान पोकर फारबिसगंज बिहार से कभी कभी तशरीफ लाते हैं। कृष्ण मोहन यादव साहब हमारे बहुत ही पुराने सामेईन में से हैं, और मुझे अच्छे से याद है जिस वक्त कोविड का जमाना था और हम पॉडकास्ट दिया करते थे तो उस वक्त कई वीडियोस बनाकर आप भेजा करते थे, उसके लिए हम आपके आज भी शुक्रगुजार हैं। और ये फरमाइशी मेल मौसूल है यादव मोहन सनावर से दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, योगेश मालाकार का। और अगला ईमेल फिर रिपीट हो गया, इसको भी करते हैं मेहरबानी के साथ साइड लाइन। और एक और सिलसिला इसी तरह से क्या कर सकते हैं, हमारे दोस्त भी आदत से मजबूर हैं लेकिन हम भी आदत से मजबूर हैं, उसको ठिकाने लगा देते हैं, साइड लाइन कर देते हैं। और ये फरमाइशी ईमेल मिला है कार्तिक सेन, विनायक सेन और भव्य सेन का दीवाना टीकरी से, अपनी फरमाइश मिसाल की। और अगला ईमेल भी हो गया रिपीट, इसको भी हटाना पड़ेगा जनाब स्क्रीन से। मानेवाड़ा रोड नागपुर से हैं देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर और अनिकेत। और अगला ईमेल, जी हाँ, बहुत जल्दी जल्दी रिपीटेशन का सिलसिला आज तो है, एक चैलेंज सा है मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है। गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साहब इब्राहिम, मेराज जहां की फरमाइश आताज नगर लक्सर हरिद्वार से मिली है। और स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। अगला ईमेल मिला है पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, साथ में कौन कौन है, असद और जी हां आलम अंसारी। और ये फरमाइश ईमेल बलिया से मिला है कोट पर नारायणपुर बाबापट्टी हैं से हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, साथ में अमित कुमार राय, किशन सबकाल, आशा सबकाल, विशाल सबकाल की फरमाइश आस्ती नगर बीड शहर से मिली है। और बोधराज खोरवाल, जी हां अभी मुझे ये ईमेल मिला और एकदम से गायब हो, कोई बात नहीं, जस्ट चेक कीजिए, अभी तो बहुत टाइम है जनाब, हमारा आपका साथ रहेगा 11:45 तक। राजधानी रायपुर से नीलू में एक नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, साथ में बिट्टू कुमार और अहले खाना। और गांव हाड़ीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा। और अगला ईमेल रिपीट हो गया, इसको करते हैं साइड लाइन।
اور اگلا ای میل بھی محض اتفاق ہے کہ یہ بھی ہے ریپیٹڈ ای میل. چلیے تو ایسا کرتے ہیں کہ نغمہ سن لیتے ہیں, اور نغمہ محمد رفیع کی آواز میں, کالا بازار فلم کا نغمہ ہے, شیلندر کا لکھا ہوا, ایس ڈی برمن کی ہے موسیقی.

और तमिल शायद प्रोग्राम में अब आपको सुनवाते हैं राजकुमार फिल्म का नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ शंकर जयकिशन की मौसिकी में, और इस नगमे को सुनना चाहते हैं हमारे बहुत सारे सामेईन, उनके नाम हम थोड़ा सा रिफ्रेश करके आप तक पहुंचाते हैं। अब्दुल गफ्फार डावर हैं, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, नागचून रोड संजय कॉलोनी से, और ये फरमाइश मिली है शाम के टे 15 के टे कार्तिक की, राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, साथ में निमित और सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, कुशल की फरमाइश पद्मा टॉकीज नेपा नगर से मिली है, और उत्तम नगर दिल्ली से हैं वो साहब जिनका ईमेल थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, कमला रानी, बोधराज खोरवाल, साथ में गीतिका खोरवाल और पाणुचंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा साथ में, कुमार गली कोलगांव से इसी नगमे को सुनना चाहते हैं, पटेली रोड गंज टंडवारा से, एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और बेबी अरिबा हबीबा, और आप हैं नरेश मल्होत्रा नीटू, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा, खेल बाजार पानीपत से। अगला नगमा आपकी नजर भी करते हैं, मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठा, शबीर बनट्टी, आसिफ इकबाल, आपका ईमेल मिला कर्नाटक के गुलबर्गा से, और संजय मारकंडे, साथ में कौन कौन है ये भी देखना चाहें, बड़ा बम चौक खंडवा एमपी से हैं, ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू भी हैं साथ में शामिल, बड़ा प्यारा सा नाम है, और चंद्रपुर महाराष्ट्र से लवकुश खाडिलकर और उमा देवी खाडिलकर, आप भी काफी दिनों के बाद नजर आए हमारे प्रोग्राम में, खुश आमदीद कहते हैं, आप भी वैसे बहुत पुराने सामेन में से एक हैं, बहुत अच्छी तरह हम जानते हैं जनाब, और फैज अहमद, शाकिर मुल्ला जी, साबिर मुल्ला जी हैं, बरकत बेल हुबली कर्नाटक से, और ये फरमाइश मिली है बिलराम गेट कासगंज से, अमसलम सैफी, जेबुलनिसा बेगम और सद्दाम सोनी की। अगला नगमा आप भी सुनना चाहते हैं, सुभाष योगी, राजू मिकलानी, बब्बू डब्बू हैं, कृष्णा कॉलोनी हांसी से, और ये फरमाइश मिली है महेश कुमार निषाद, रंभा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद की, मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ के गांव ढोडरी घोटिया से, और अगला ईमेल रिपीट हो गया, इसको करते हैं साइडलाइन, जैसे कि आज हिंदुस्तान ने किया वेस्ट इंडीज को साइडलाइन। पारसागोला महाराष्ट्र से संतोष धर्मकार, गीता भूषण की फरमाइश भी है, और नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम भी साथ में शामिल हैं, नरेंद्र सिंह का नाम है, बगपुड़ो पथरिया से हैं छत्तीसगढ़ से, और मेहर अरोड़ा के साथ मैच कौन कौन है, कीर्ति अरोड़ा भी हैं, भूमिका भी हैं, पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से आप सुन रहे हैं तमिल इशाद प्रोग्राम, और आकार हाइट से बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गोहनकर, सुमित गोहनकर और ध्वनि गोहनकर परी, और ये फरमाइश शंभुदयाल खटक, विमला देवी, दीपक कुमार खटक की है, गांव जाखोद राजस्थान से, और अहमद भाई फूल वाले, शमीम अहमद फूल वाले, इमरान अहमद है छोटे बलिया मुंबई करजत से आपने फरमाइश इरसाल की, एक और रिपीटेशन है, इसको भी साइडलाइन किया हमने, अकोला महाराष्ट्र से गजानंद कुमार, पद्मावती कुम्हार और साथ में मधुरा। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा, लता मंगेशकर की आवाज में राजकुमार फिल्म का ये नगमा है।

0: राजकुमार फिल्म के इस नगमे को कुछ और दोस्तों ने भी पसंद किया था, उनके नाम भी शामिल करना चाहेंगे, इंतजार रहता है उनको अपने नाम शामिल होने का। इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिरा परवीन आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा की फरमाइशा, बिशनपुर गेटी झारखंड से, और कुछ और साथी हैं, विनायक बेंडे साथ में हैं, बंगला बेंडे और शुभम आकोट से आपने फरमाइश की, इसी नगमे को सुनना चाहते थे। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, रेयांश ठाकुर महादेव घाट अमलेश्वर से, और लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे की फरमाइश थी गाडगे नगर यवतमाल से। दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता सीआर कुलकर्णी की फरमाइश भी थी, और इसी नगमे को सुनने के मुंतजर थे हमारे कुछ और दोस्त, उनके नाम हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा। और अगला ईमेल मौसूल हुआ है नथुराम शर्मा, ललित शर्मा, इंदिरा शर्मा का, मंडी हरजीराम मलोट पंजाब से अपनी फरमाइश में इस्तेमाल किया, और राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, दादा ठाकुर और साथ में मास्टर रुद्र गुप्ता। काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से सुनने के मुतमन्नी थे इस नगमे को भारतीय प्रकाश रमभाड़े, जाह्नवी रमभाड़े और वैष्णवी हर्षल रमभाड़े, और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ सिमगा छत्तीसगढ़ से, रमेश कुमार यादव, माया यादव, साथ में हैं कोमल और उनके कुछ और साथी। और अगला ईमेल जो है ये रिपीट हो गया जनाब, तो इसको करना पड़ेगा साइडलाइन। रेलवे रोड गंज टंडवा से मोहम्मद कलीम, जख्मी नजमा बेगमनाथ, बेबी फातिमा गाजी भी हैं। और अगला ईमेल मिला है जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान का। तामिर शायद प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से अपने मेजबान नईम के साथ। दोस्तों ये प्रोग्राम अभी जारी है, आइए पहले सुनते हैं खबरें बरसगीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन, और उसके बाद सिलसिला जारी रहेगा तामिल इरशाद प्रोग्राम का।
1: ये आकाशवाणी है, बरसगीर की खबरों के साथ मैं अब्दुल हफीज। मरकज ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमतों एमएसपी में इजाफे की मंजूरी दी है। मौजूदा खरीफ सीजन के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कम अज कम इमदादी कीमत पर 5548 करोड़ रूपये मालियत की आम दालों और तिलहन की खरीदारी की भी मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। मरकजी काबीना ने मुल्क में बिजली की बैन रियासती तरसील के निजाम को मजबूत बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे मरहले की स्कीम की मंजूरी दी है। काबीना दिल्ली के लिए ट्रैफिक बंदोबस्त के लिए इंटेलिजेंट निजाम की भी मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर तजारत, दिफा, तवानाई और अहम टेक्नोलॉजीज के शोबों में दो तरफा ताउन का जायजा लिया। गुजरात एटीएस, भारतीय साहली महाफिज दस्ते और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई में एक ईरानी कश्ती से 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। ईरानी कश्ती से 526 किलोग्राम मंशियात भी जब्त की गई। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के तमगे जीते। भारत के तमगों की मजमूई तादाद बढ़कर 60 हो गई है, जिनमें सोने के 10, चांदी के 21 और कांसे के 19 तमगे शामिल हैं। खवातीन

सुरैया की आवाज में ये नगमा आप सुन रहे थे शमा फिल्म से, और नगमा निगार थे कैफी आजमी गुलाम मोहम्मद साहब की थी मौसीकी। सुनने के मुंतजिर थे आप तमाम सामीन। एक दो सेकंड लगेंगे जनाब, थोड़ा सा रिफ्रेश किया है। कृष्णा घोटके हैं, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे भी हैं, रोहिदास चौक पंधारपुर सिटी से आपकी फरमाइश हमें मौसूल हुई। मुंदी चक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी भी सुनना चाहते थे इसी नगमे को, और विट्ठल भाटिया रीटा भाटिया रजत की फरमाइश थी झज्जर हरियाणा से। विट्ठल यादव, अनुसुईया यादव, पवनराज यादव थे नागपुर महाराष्ट्र से, और ये फरमाइश मिली अनिल कुमार वर्मा, मायादेवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा की सदर बाजार कुरावली से, और इसी नगमे को सुन रहे थे रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, ठाकुर साहेब और कुलदीप सिंह होरा, और ये फरमाइश मेल मिला है फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, मनविंदर सिंह पांधा का, और आप हैं बड़े गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द। इसी नगमे को सुनकर महसूस हुए अजमेर शरीफ राजस्थान से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा हाशमी और मोहम्मद आलम हाशमी, ये फरमाइश मिली शिवा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री, अयुब खत्री की, और आप हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीदेव गोस्वामी, मीनाक्षी गोस्वामी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा महाराष्ट्र से फरमाइश की थी मास्टरिन पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल ने, और ये फरमाइश ईमेल मिला बिहार से वसीम अकरम, शबनम और गुड़िया खातून का। बिहार तो बहुत बड़ा है जनाब, जगह का नाम लिख दिया करें आप जिस शहर से आप सुन रहे हैं। विजय मोबिया, कविता मोबिया और प्यारा बाबू रामगंज खंडवा से आपकी फरमाइश थी, और ही फरमाइश मिले बुलंद शहर से उमेश कुमार गौड़, रानी गौड़ा, शुभम गौड़ की। जाकिर मौलानी के साथ में आज कौन कौन है, समीर हैं, सलमा हैं, आपने फूल चिंचोली पंधारपुर से ये फरमाइश भेजी है। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष भी हैं, और इसी नगमे को सुन रहे थे बापू कॉलोनी, अब्दुल्ला मस्जिद, खंडवा एमपी से शालिया डावर, बेबी हलीमा और बेबी जिक्रा डावर, और आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी की फरमाइश थी प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से। और अब अगले नगमे की बारी, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में है चाचा चा फिल्म का नगमा, इकबाल कुरैशी की है मौसीकी। तो इस नगमे को सुनने के लिए हमारे बहुत सारे सामेन भी मुंतजिर हैं, उनके नाम शामिल करते हैं सतीश श्रीवास्तव हैं, साथ में प्रेमलता श्रीवास्तव और अभिषेक श्रीवास्तव भी हैं। कवाई सालपुरा 12 राजस्थान से आपने फरमाइश हमें साल की है, और अस्पताल रोड विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से हैं सागर एमपी से चंद्रेश गौर, वंदना गौर और जयपाल यादव। अगले मेल रिपीटर्स को करते हैं साइडलाइन। पंद्रहगौड़ा यवतमाल से फरमाइशी अनिल उषा बुरांडे, अनुश्री धनश्री बुरांडे की, और ये फरमाइशी मेल उन दोस्तों का जो अभी कुछ देर पहले शामिल हुए। तो आगे बढ़ते हैं, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, दत्रेंगी भाटवाला छत्तीसगढ़ से हैं, और ये ईमेल मिला है छिंदवाड़ा बेडी से नाना जी लाम से, मीना लाम से और हर्षिता लाम से का। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं अमीर खुसरो रोड गंज टंडवार से डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार और भुवन प्रकाश गौतम। और अगला ईमेल गांव लसुड़िया पाटा तहसील नरसिंहगढ़ राजगढ़ एमपी से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी और रमेश चंद्र डांगी। नेपाल पहले सागर से तिलक राणा और रोबिन राणा की फरमाइश भी है। और अगला नगमा आपकी नज़्म भी करते हैं, आप हैं बांद्रा आर्मा कोर्ट मुंबई से बेगम सोनम शेख, मारिया शेख, साथ में मोहम्मद अरीफ शेख। उस्तो भागलपुर से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन की फरमाइश भी है, और खान मंजिल गंज टंडवा से आगा खान आगा, भाई ऊद खान और बेबी अमल खान, और ये फरमाइश ईमेल मिलाए लिवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी का। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता कर्ण है कनेरा मोहल्ला पटियाला से, धनौरा बिटाली महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल की फरमाइश भी है। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं पंद्रहगौड़ा से अनिल उषा बुरांडे, अनुश्री धनश्री बुरांडे,
और विरमगाम गुजरात से अजीत भावसर, प्रणव भावसर, भावेश कुमार भावसर, आपने जिस नगमे की फरमाइश की थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, नाम हमने आपके शामिल कर लिए। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, भानु प्रिया और ये फरमाइश मिली है। बुराव के श्रीरामपुर से मनोज जेठवा और हर्षा की, और शादाब शमशाद, अनदीप खानम, सारा फातिमा शेख, कादरगंज रोड, गंज डुंडवारा से हैं। अगला ईमेल रिपीट है, इसको करते हैं साइड लाइन, और तब तक सुनवाते हैं आपको ये नगमा।

और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में सन ऑफ इंडिया फिल्म का नगमा शकील बदायूं का लिखा हुआ मौसीकी नौशाद साहब की है और इसे सुनना चाहते हैं तमाम सामीन। टेबल गार्डन से अर्चना पाठक और साथ में राधा रानी पाठक और ये फरमाइश मिली है। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल की और इसी नगमे को सुनने के मुंतजर है सल्लर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन नजमुद्दीन साथ में कैसरुद्दीन और मिश्रीलाल विश्वकर्मा मीरा देवी विश्वकर्मा चेतन विश्वकर्मा की फरमाइश तख्तपुर छत्तीसगढ़ से मिली है और वंजारा नागपुर महाराष्ट्र से अनिल कोहले छाया कोहले और प्रियांश कोहले कह रहे हैं ताजमहल फिल्म का नगमा बहुत खूबसूरत है। जनाब आप ही की फरमाइश पे था तो खूबसूरत क्यों नहीं होना था। हीरा वाली फाजिल का पंजाब से सुभाष गुदारा बिमला गुदारा इंदु पार्वती की फरमाइश भी है अगले नगमे के लिए। हिंगोली महाराष्ट्र से हैं शाहजी बोट के नंदा बोट के और उत्तम जम धाड़े सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी

देवाना गुरवंश सिंह जोड़े हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से, और ये फरमाइश ईमेल रिपीट हो गया, इसको करते हैं साइडलाइन। नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह और संदीप कुमार सिंह है जिला बेगूसराय बिहार से, और ये फरमाइश ईमेल मिला है उन दोस्तों का जो हो चुके हैं शामिल। और अगला ईमेल भिलाई छत्तीसगढ़ से मिला, मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा का। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम बकार, निशा अजीम और माहिरा अजीम और सोमदत्त, गुरमंत कौर मनु हैं नाभा पटियाला पंजाब से। ये फरमाइश मिली है बलकरण वर्मा, अंजनी और ज्योति वर्मा की। बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं, और हिना साबरी, आयजल इमाम, मोहम्मद हसन इमाम है बिशनपुर गेडी झारखंड से। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुमित रमेश साहू, और जसबीर सिंह अरोड़ा के साथ में हैं जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह और निम्नाबाद जींद हरियाणा से आपकी फरमाइश हमें मिली। और जिला नालगोंडा तेलंगाना से मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस और मुनीर उन्नीसा, और ये फरमाइशी मेल अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले देवयानी और गणेश कामले का। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं बदलापुर मुंबई से विनोद कुमार वंडलकर, वीणा वंडलकर और नीतू सिंह, और आप हैं पूर्णा देगांव से सदाशिव थोराट, कविता थोराट और श्रेया थोराट और नरेंद्र शर्मा, साथ में किरण शर्मा, नितिन और उनके कुछ और साथी भी हैं। कलानौर से आपकी फरमाइश है, और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ है जनाब हर्षवर्धन पांडे, हरवंश पांडे का, एके पांडे भी साथ में, जिला पन्ना मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश हमें मिली है। सुब्रत चौधरी हैं कोलकाता से, और मुबारकबाद दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने मैच जीत लिया है। बिल्कुल जनाब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी अगर टीम नहीं जीतेगी तो जनाब क्या, और देखिए आज क्या धूल चटाई है वेस्ट इंडीज को, 400 रन बनना बहुत बड़ी बात है जनाब। और पुरानी बागपत से इलियास मुस्कान कुरैशी, रानी कुरैशी, बाबा जैद कुरैशी अगले नकमे को सुनना चाहते हैं। राजू टुटेजा, खुशदिल उर्मिला टुटेजा, शिव सेठी करणपुरी हैं, गोविंद गढ़माझी वाला श्री करणपुर राजस्थान से, और अगले मेल रिपीट हो गया, इसको करते हैं साइड लाइन। जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता की फरमाइश है पोफाली यवतमाल से। अगला ईमेल मिला है कौसर बी पवार, हसीना बी पवार, हिना सईद खोकर का, कलनगंज खंडवा से, और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं हीरामन खिराडे, सारिका खिराडे और सोनाली अभय खेड़ा वाशिम महाराष्ट्र से। और अगला ईमेल अस्तुपला जिला मऊ से हमारे मुस्तकिल सामईन मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, और हररपुर मटकली बरेली से शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी और शकील अंसारी। जब तक कि हम झुमका ढूंढ कर आते हैं बरेली में, तब तक आप सुनिए ये नगमा।

तमिशाद प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उर्दू सर्विस से। इस प्रोग्राम की अगली पेशकश है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में फिल्म है माल रोड और मौसीकी तरतीब दी है इसकी सुदर्शन ने और नगमा निगार हैं प्रेम वरबरतानी। इसको सुनना चाहते हैं सलीम अख्तर और रेशमा अलीगढ़ से और इसी नगमे की फरमाइश की गांव फरासी हिसार से राजकुमार डुड्डी प्रमोद कुमार डुड्डी और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी ने। आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया आरसू जाजोरिया पटेल नगर मलोट से आपकी फरमाइश है। और अगला ईमेल मिला है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर का और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं धर्मेंद्र छिपा कपिल छिपा पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से कमल पाठक और सुनील पाठक के साथ में दीपिका मल्होत्रा अनारकली बाजार जगराओं से ये फरमाइश मिली है। मलेरकोटला पंजाब से मुस्कान खातून रौनक खातून और बेबी आलिया की और अगला नगमा आपकी नजर भी है आदर्श नगर मलोट के हमारे सामने राज शर्मा मीना शर्मा और योगेश शर्मा अनिल मोहन उषा मोहन टिलो नायक पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हैं और ये फरमाइश मेल विजय पाटिल पद्माबाई पाटिल और ज्ञानेश्वर पाटिल होना चाहिए ज्ञानेश्वर लिखा है महाराष्ट्र जालना से हैं दरअसल आप और ये फरमाइश मेल मिला है गांधी ग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी कलावती सोनी और प्रथम सोनिका एस एम जावेद शगुफ्तान्यम टावर चौगुमला झारखंड से हैं। बसंत कुमार सिन्हा के साथ में आज कौन कौन है रेखा बसंत कुमार सिन्हा इनका पूरा नाम है अजय कुमार गुप्ता बेबी अन्विका तनुश्री गुप्ता भी दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बाबूभाई भारती देवी की फरमाइश जवाहर नगर उदयपुर से नगमा सुनिए और बीच बीच में आपके नाम भी शामिल किए जाएंगे।

इसी नगमे को सुना है सब्जी मंडी बुल्डाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन और मुज्जू बाबा, और ये फरमाइश मिली है रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर और बीबी कार्तिकी की। गांधी बाग का कोला से आपकी फरमाइश है। छिंदवाड़ा एमपीसी में देवान

ठाकरे दीपक ठाकरे और अगला ईमेल है अनिल कोहले छाया कोहले और मुझे लगता है शायद ये पहले हाँ शामिल हो चुके हैं जनाब। और राष्ट्रपाल गजबीर राधिका गजबीर तन्मय की फरमाइश डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से मिली है और ये फरमाइश ईमेल मिला है सबिया खानम फरीदा बानू और साथियों का चमनपुरा उदयपुर से, साथ में रईसा खातून भी हैं और पिधवाई नगर से दुपोरा टाउन से जुबैर अली खान सबिया जुबैर अंजुमन खान और इसी नगमे को एंजॉय कर रहे हैं। अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान आयशा सबीहा और रेहान और उनके कुछ और साथी प्रवीण हागोनी योगिता हागोनी और पियाली हैं कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से। ये फरमाइश जमशेदपुर से मिली है अनुपम कुमारी अपूर्व सिंह और राकेश कुमार की जानिब से और अगला ईमेल रिपीट हो गया इसको करते हैं साइडलाइन। गाना थाना पंजाब से हरजिंदा छिंदा जसवी जस्सी और सीता गीता और ये फरमाइश ईमेल भी रिपीट है इसको भी करते हैं हम साइडलाइन। जय मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी साथ में उनके आज कौन कौन है ये भी देखना पड़ेगा कभी कभी नाम जो है तब्दील हो जाते हैं और जब ईमेल आप भेजते रहते हैं उनको आप डिलीट भी करते रहिए। नसीर अंसारी और नौरीन अंसारी हैं और अगला ईमेल जी हाँ ये भी रिपीट है इसको साइडलाइन करना पड़ेगा। वर्ण शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरका तेजस्वी चौहान साथ में है अनिकेत अंकिता चौहान और इस बीच में नगमा भी होने वाला है खत्म लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है अभी एक और नगमा आपकी समातों तक पहुंचेगा और वो नगमा है अनाड़ी फिल्म का लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ शंकर जयकिशन की मौसीकी में है ये नगमा और शैलेंद्र ने इस नगमे को कलम बंद किया था। सुनना चाहते हैं अहमदाबाद गुजरात से उस्मान वोरा शहनाज और शीरी और ये फरमाइश मिली है उन दोस्तों के जो अब से कुछ देर पहले शामिल हुए। जी हाँ अगले दोनों ईमेल रिपीट हैं। मॉडल टाउन करनाल से आज कौन कौन है सुधीर नूतन के साथ में किरण ठाकुर हैं डॉक्टर सना इब्राहिम भी अच्छा जी नाम तब्दील होते रहते हैं इनके साथियों के और दोस्ती पूरी तरह से निभाते हैं। विनोद मंडलकर वीणा मंडलकर विविधा हैं आपने रायपुर छत्तीसगढ़ से ईमेल इस्तेमाल किया। नारायण गायकवाड़ दयानंद गायकवाड़ ओंकार गायकवाड़ है कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं अगले में रिपीट है। और राजीव जेटली साहब जी हाँ विपिन कुमार जेटली के साथ में हैं जनकपुरी दिल्ली से विपिन कुमार राजीव जेटली इनके इस तरह से नाम है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अजीज भाई मतीन भाई शेख चांद फारूक नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से और अगला ईमेल भी रिपीट है इसको करते हैं साइडलाइन। और ये फरमाइश ईमेल मिला है शाहिद अली फतेह फारूकी और हिफ्जा अली हैं ताम्बरम चेन्नई से और शिव प्रसाद देवदास मोहित कुमार देवदास और युक्ति देवदास बेलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ से और अगला ईमेल रिपीट है। इससे पहले कि रिपीटेशन का सिलसिला और आगे बढ़े हम आगे बढ़ते हैं आपको सुनवाते हैं ये नगमा।

और इसी नगमे को सुने नजफगढ़ जय विहार से फारूक शाहरुख और शहनाज और उनके कुछ और साथी। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनसीर कौसर और मोहम्मद हसनैन पवार। और मुमताज मौला नवगछिया से फरमाइश की है इसराइल अंसारी ने। आशियाना अपार्टमेंट बांद्रा मुंबई से मोहम्मद मुजीब शेख, जायना नाबिया शेख और साथ में बेबी अमीरा शेख। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो और विलिस डिकेस्टो।

0: बहाउद्दीन कुतुबुद्दीन और हमलावर पेश कर रहे थे कवालियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर हमारी नशा जारी है। शब के 12 बजे चाहते हैं, अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल हफीज से आलमी खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर तिजारत, दिफा, तवानाई और अहम टेक्नोलॉजीज के शोबों में दो तरफा ताउन का जायजा लिया। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कतर के कारोबारियों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के साथ तिजारत और सरमायाकारी से मुतालिक शराकतदारी पर गौर करें और दो तरफा इकतसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाएं। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सऊदी हुक्काम ने फरारी जोड़ी की परवाज के उस पायलट को गिरफ्तार कर लिया है जिसने मुबैना तौर पर दूसरे पायलट को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। मर्दों के क्रिकेट में गुवाहाटी में 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के तमगे जीते। भारत के तमगों की मजमूई तादाद बढ़कर 60 हो गई है जिनमें सोने के 10, चांदी के 21 और कांसे के 19 तमगे शामिल हैं। खवातीन हॉकी टीम फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल तिजारत, दिफा, तवानाई और अहम टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन का जायजा लिया। वज़ीर आज़म मोदी ने कल अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने आलमी अमन और सिक्योरिटी के फरोग के लिए जारी कोशिशों समेत इलाकाई और बैन अलाक़वामी उमूर पर तबादले ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने जामे आलमी स्ट्रेटजी के शराकत को मजीद मजबूत बनाने के लिए करीबी राबते और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर के किसानों के मफादात के तहफ्फुज और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए रबी फसलों की कम से कम इमदादी कीमत MSP में इजाफे की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस फैसले से मुल्क भर के लाखों किसानों को अपनी पैदावार की मुनासिब और मुनाफे बख्श कीमत के हुसूल को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने ग्रीन एनर्जी

0: कॉरिडोर के तीसरे मरहले से मुतालिक काबिना के फैसले का भी खैर मकदम किया है। हुकूमत ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि रूस की मसल्ला अफवाज में शामिल होने के लिए भारतीय शहरियत तर्क न करें। एक बयान में वजारत खारजा ने रूस का सफर करने वाले भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो वहां रोजगार के मौके के सिलसिले में इंतहाई एहतियात बरतें। वजारत ने खबरदार किया कि रूसी मसल्ला अफवाज में शामिल होने के लिए रजाकाराना तौर पर पेश की जाने वाली मुलाजिमतें खतरनाक हैं और हुकूमत इसकी सख्ती से हौसला शिकनी करती है। वजारत ने कहा है कि रूस की मसल्ला अफवाज में गैर सरकारी इदारों के जरिए गैर मुल्की शहरियों को शामिल किया जा रहा है। वजारत ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वह ऐसे एजेंट्स या तंजीमों की तरफ से मुलाजमत की पेशकश को कबूल करते वक्त इंतहाई एहतियात बरतें जो वजारत खारजा में रजिस्टर्ड नहीं है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कतर के कारोबारियों से जोर देकर कहा है कि भारत के साथ तिजारत और सरमायाकारी से मुतालिक इश्तराक पर गौर करें और दो तरफा इकतसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाएं। दोहा में कतर के कारोबारियों की एसोसिएशन की एक कारोबारी राउंड टेबल से खिताब में मोहतरमा सीतारमन ने भारत के मजबूत इकतसादी तरक्की को उजागर किया। दोनों मुल्कों ने कतर के 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के वादे पर अमल आवरी, भारत में कतर के इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी दफ्तर के क्याम के बारे में भी तबादले ख्याल किया। नीज दो तरफा सरमायाकारी के माहदे और आजादाना तजारती माहदे से मुतालिक मुजाकरात की सरगर्मियों में तेजी लाने पर भी तबादले ख्याल किया गया। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सऊदी हुकाम ने फलाई दुबई की परवाज के उस पायलट को गिरफ्तार कर लिया है जिसने मुबैना तौर पर दूसरे पायलट को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। इस तैयारी में इसराइली मुसाफिर सफर कर रहे थे। जनाब नेतन्याहू ने कहा कि मुसाफिर और अमले के अरकान ने हमलावर पर काबू पा लिया और एक बड़े वाकये को होने से रोक दिया। उन्होंने तैयारे में मौजूद अफराद की बहादुरी और फौरी कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि इन अफराद ने बहुत सी जानें बचा ली। यह वाकया मुत्तहदा अरब अमारात से इसराइल जाने वाली एक कमर्शियल परवाज में पेश आया। पायलटों के दरमियान मुबैना झगड़े के बाइस इस तैयारे को सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग करानी पड़ी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल कहा कि गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी दस्ते एटीएस, भारतीय साहली महाफिज दस्ते आईजीसी और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई में एक ईरानी कश्ती से 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान कश्ती से 526 किलोग्राम मेथाफेटामाइन और हीरोइन जब्त की गई। यह कश्ती भारत के खसूसी इकतसादी जोन के अंदर थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने उजागर किया कि मोदी हुकूमत मुल्क के नौजवानों को मंशियात की लानत से महफूज रखने के लिए पुरअज़्म है। वजीर दाखिला ने कहा कि मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल और ताउन की मिसाल कायम करने वाली 16 रोजा तवील कार्रवाई के दौरान एक ईरानी कश्ती भी कब्जे में ली गई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 2029 के आखिर तक पंजाब को मंशियात से पाक कर दिया जाएगा। कल जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा करती है। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का मुकाबला किया है और शिमाल मशरकी रियासतों में इंतहा पसंदी का खात्मा किया है। अब हुकूमत की तवज्जो पंजाब को मंशियात से पाक बनाने पर मरकूज होगी। पंजाब के शहीदों को जिनमें शहीद भगत सिंह और उधम सिंह भी शामिल हैं खराज अकीदत पेश करते हुए जनाब शाह ने कहा कि पंजाब कभी अपनी बहादुरी ज़रात और खुशहाली के लिए मशहूर था लेकिन अभी से मशियात के बढ़ते हुए मसाइल का सामना है। मरकजी वजारत दाखिला ने कहा कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों लश्कर तैयबा के सीनियर कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी की हलाकत जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तैयबा के नेटवर्क के लिए एक बड़ा धचका है। मूसा को बडगाम जिला के खानसाहा पुलिस स्टेशन के तहत वाके गुरुवत कलान के इलाके में हलाक किया गया। वजारत ने कहा कि मूसा की हलाकत के साथ ही लश्कर ए तैयबा के वो चारों सीनियर कमांडर हलाक किए जा चुके हैं जो 2022 से जम्मू कश्मीर में सरगर्म थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के सदसाला तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजीर आजम मोदी इस मौके पर मौजूद लोगों से भी खिताब करेंगे। यूपीएससी के कयाम के 100 साल मुकम्मल होने की याद मनाने के लिए गुज़श्ता बरस 1 अक्टूबर से साल भर जारी रहने वाली सदसाला तकरीबात का आगाज किया गया था जिसके अख्तिताम पर आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। यूपीएससी का कयाम साल 1926 में किया गया था। वजीर आजम मोदी इस प्रोग्राम में यादगारी सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। नीज एक किताब का इजरा भी करेंगे। मर्दों के क्रिकेट में गुवाहाटी में 3 एकरोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। इससे पहले भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने मुकर्रा 50 ओवर्स में 7 विकेट पर 405 रन बनाए। जवाब में भारत ने 43 ओवर्स 3 गेंदों में 2 विकेट पर 406 रन बनाकर जीत का निशाना आसानी से हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने बगैर आउट हुए 133 गेंदों में शानदार 223 रन बनाए। इस इनिंग्स में उन्होंने 8 छक्के और 24 चौके लगाए। रोहित शर्मा ने भी 101 रन बनाए। जापान में जारी एशियन गेम में भारत के लिए कल का दिन अब तक का सबसे कामयाब दिन रहा, क्योंकि कल भारत ने सोने के 4 तमगे हासिल किए हैं। भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में हैट्रिक मुकम्मल की और खवातीन की टीम, मिक्स टीम और मर्दों की टीम ने पहली पोजीशन हासिल की। भारत ने निशानेबाजी में भी सोने का तमगा जीता और मिक्स ट्रैप टीम में पहली पोजीशन हासिल की। खवातीन की हॉकी में भारत ने कल शाम जनूबी कोरिया को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में जुमा के रोज भारत का मुकाबला दिफाई चैंपियन चीन से होगा। स्क्वाश में भारत के मर्दों और खवातीन की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है और उन्होंने मजीद 2 तमगों को यकीन बनाया। तमगों की फहरिस्त में भारत के मुक्केबाजों ने कांसे के 2 तमगों का इजाफा किया है। इस तरह भारत के तमगों की मजमूई तादाद बढ़कर 60 हो गई है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर तिजारत, दिफा, तवानाई और अहम टेक्नोलॉजी के शोबों में 2 तरफा ताउन का जायजा लिया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कतर के कारोबारियों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के साथ तिजारत और सरमायाकारी से मुतालिक शराकतदारी पर गौर करें और 2 तरफा इकतसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाएं। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सऊदी हुकाम ने फ्लाई दुबई की परवाज के उस पायलट को गिरफ्तार कर लिया है जिसने मुबैना तौर पर दूसरे पायलट को चाकू मार कर जख्मी कर दिया। मर्दों के क्रिकेट में गुवाहाटी में 3 एकरोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के तमगे जीते। भारत के तमगों की मजमूई तादाद बढ़कर 60 हो गई है, जिनमें सोने के 10, चांदी के 21 और कांसे के 19 तमगे शामिल है। खवातीन हॉकी टीम फाइनल में पहुंच गई है। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशात जारी है। क्लासिकी मौसीकी में लीजिए सुनिए जगन्नाथ और साथियों से शहनाई पर बजाय राग भैरवी और गुजरी तोड़ी।

0: इनिंग्स में उन्होंने 8 छक्के और 24 चौके लगाए। रोहित शर्मा ने भी 101 रन बनाए। जापान में जारी एशियन गेम में भारत के लिए कल का दिन अब तक का सबसे कामयाब दिन रहा, क्योंकि कल भारत ने सोने के 4 तमगे हासिल किए हैं। भारत ने कंपाउंड तेज अंदाजी में हैट्रिक मुकम्मल की और खवातीन की टीम, मिक्स टीम और मर्दों की टीम ने पहली पोजीशन हासिल की। भारत ने निशानेबाजी में भी सोने का तमगा जीता और मिक्स्ड ट्रैप टीम में पहली पोजीशन हासिल की। खवातीन की हॉकी में भारत ने कल शाम जनूबी कोरिया को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर तिजारत, दिफा, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में दो तरफा ताउन का जायजा लिया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कतर के कारोबारियों से जोर देकर कहा है कि भारत के साथ तिजारत और सरमायाकारी से मुतालिक शराकतदारी पर गौर करेंगे और दो तरफा इकतसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाए। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सऊदी हुकाम ने फलाई दुबई की परवाज के उस पायलट को गिरफ्तार कर लिया है जिसने मुबैना तौर पर दूसरे पायलट को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। मर्दों के क्रिकेट में गुवाहाटी में 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के तमगे जीते। भारत के तमगों की मजमूई तादाद बढ़कर 60 हो गई। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब का एक बजा जाता है। हमारी तीसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे पहली मजलिस की नशरियात के साथ। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। शब बखैर। जय हिंद।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
3: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था। उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। व्हीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
2: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रूपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रूपये, जौ के लिए 136 रूपये, चने के लिए 83 रूपये और गेहूं में 25 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की एमएसपी पर खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग के विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरूआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ

0: गैस्ट्रो एंटरोलॉजी 2026 को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब तक 13 करोड़ से अधिक लोगों का इलाज हुआ है, जिन पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा है कि नीलामी से व्यवस्थित अन्वेषण को प्रोत्साहन मिलने, निवेश आकर्षित होने और अपतटीय खनिज अन्वेषण तथा विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में आगामी रबी सीजन को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में हुई उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में किसानों को समय पर गेहूं के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए परिवहन भाड़ा दरों को मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत प्रमुख प्रसंस्करण केन्द्रों से प्रदेश के 80 से अधिक वितरण केन्द्रों तक बीज पहुंचाए जाएंगे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेल में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
2: रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से
3: द इंक्रीज इन एमएसपी फॉर द रबी सीजन विल ब्रिंग एन एडिशनल 84,263 करोड़ रुपीस टू आवर फार्मर्स इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स। एमएसपी इज डिटरमाइंड थ्रू अ वेल एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। द न्यू एमएसपी रेट्स फॉर द 6 मेजर रबी क्रॉप्स व्हीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड एंड मस्टर्ड एंड सनफ्लावर हैव बीन अप्रूव्ड टुडे। दिस डिसीजन इज इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
2: उस commitment को ध्यान में रखते हुए ये नए MSP आज approve हुए हैं।
1: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the intelligent traffic management system project by the Delhi Police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees, inclusive of taxes. Mr. Vaishnaw said the Union Cabinet yesterday also approved the Green Energy Corridor Phase 3 scheme. It will strengthen India's intrastate transmission system to enable the evacuation of up to 135 gigawatts of renewable energy across states and union territories. Prime Minister Narendra Modi has said that the government is leaving no stone unturned to protect the interests of farmers across the country while working to increase their incomes. In a social media post, Mr. Modi said the government has approved an increase in the minimum support price or MSP for rabi crops for the 2027-28 marketing season. He added that the decision will ensure that millions of farmers across the country receive a remunerative price for their produce. The Prime Minister also welcomed the Cabinet's decision on the Green Energy Corridor Phase 3. He added that the initiative will create more jobs in manufacturing, construction and energy storage while providing a major boost towards achieving 900 gigawatts of non-fossil fuel-based capacity by 2035. Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump yesterday reviewed bilateral cooperation in trade, defense, energy and critical technologies, among other areas. Prime Minister Modi held a telephonic conversation with US President Trump yesterday. In a social media post, the Prime Minister said the two leaders also exchanged views on regional and international issues, including ongoing efforts to advance global peace and security. Both leaders agreed to maintain close engagement to further strengthen their comprehensive global strategic partnership. In men's cricket, India crushed the West Indies by 8 wickets in the second match of the 3-match ODI series in Guwahati, taking an unassailable 2-0 lead. Put into bat first, the West Indies posted their highest ever ODI score of 405 for 7. In reply, India comfortably overhauled the target in 43.3 overs, losing only 2 wickets. India enjoyed its most successful day at the ongoing Asian Games in Japan so far, winning 4 gold medals yesterday. India's medal tally has risen to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze medals. The country completed a hat-trick of gold medals in compound archery, with the women's team, mixed team and men's team all finishing on top. India also struck gold in shooting, with the mixed trap team securing the top spot. Indian boxers added 2 more bronze medals to the tally, with Priya Ghangas and Kapil Pokhria finishing on the podium yesterday. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। श्रोता स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हो चला है 1:10 और 8 सेकंड का, यानी कि समय हो चला है कार्यक्रम गीत सुनारे का। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ आपका दोस्त अतुल। कार्यक्रम में लेकर आते हैं हम 70, 80, 90 के दशक के वो गीत जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग नई पहचान दी। तो कार्यक्रम में इन गीतों के साथ आगे बढ़ते चलेंगे और शुरुआत कर रहे हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

साई बहादुर फिल्म का एक गीत आपने सुना किशोर कुमार साहब की आवाज में, और गीत बहुत पसंद किया गया था और कार्यक्रम का आगाज भी हमने खूबसूरत गीत के साथ किया था जो कि लिया था चुपके चुपके फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल थे चुपके चुपके चले रे पुरवैया। तो कार्यक्रम का आगाज खूबसूरत गीतों के साथ उस दौर में ले जा चुका है जिसे हम कहते हैं सुनहरा दौर, गोल्डन एरा ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। कार्यक्रम में आज आपके साथ आपका दोस्त अतुल, और अगला गीत भी यकीनन आपकी कुछ तो यादें ताजा कर ही देगा।

0: कैसे पर्वत से मच्छर ये टकराएगा,
1: शेर से चूहा पंजा लड़ाएगा, क्या बच के दुश्मन हमारा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल कार्यक्रम, जिसमें लेकर आते हैं हम 60, 70, 80, 90 के दशक के वो गीत जिन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग नई पहचान दी और इसलिए उस दौर को कहा जाता है सुनहरा दौर।

लेकिन इन खूबसूरत गीतों के साथ कैसे हम आगे बढ़ते चले गए और 1:48 और 23 सेकंड का समय हो चला, यानी कि कार्यक्रम में समय बचा है बहुत कम, और इतने खूबसूरत गीतों के साथ मन तो कर रहा है कि अभी भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहे, लेकिन जितना भी समय मिले उसको हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए मनोरंजक बना पाए। तो इस गीत के साथ आइए आनंद उठाइए एक और खूबसूरत गीत का उस सुनहरे दौर से।

0: आना जरूर फिर जाना उसे मिलने।
1: गोगा, ये फादर का बच्चा कौन है?
2: फादर का बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।

सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोका।

राजू, ए रे राजा।

0: इसी के साथ आज का गीत सुना रहे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। शुरू कुछ ही पलों में 2 बजने को है। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन्स इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग के विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। व्हीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रूपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रूपये, जौ के लिए 136 रूपये और चने के लिए 83 रूपये और गेहूं में 25 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। दिल्ली में इस वर्ष सितंबर महीने का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI पिछले 5 वर्षों की इसी अवधि की तुलना में सबसे कम दर्ज कर लिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष सितंबर में दिल्ली का मासिक औसत AQI 102 रहा, जबकि 2025 में यह 105 था। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से सितंबर तक की अवधि में दैनिक औसत AQI 200 से कम रहने वाले दिनों की संख्या पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक रही। कुवैत में भारतीय दूतावास ने कल इंडिया कुवैत मीडिया कनेक्ट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कुवैत में मीडिया के साथ भारत के संबंध और बातचीत को बढ़ाना है। इस पहल का विषय है साझेदारी, विचार और संभावनाएं। इसके जरिए कुवैत के मीडिया को भारत, भारतीय दूतावास की गतिविधियों

0: advance global peace and security. Both leaders agreed to maintain close engagement to further strengthen their comprehensive global strategic partnership. In men's cricket, India crushed the West Indies by 8 wickets in the second match of the 3-match ODI series in Guwahati, taking an unassailable 2-0 lead. Put into bat first, the West Indies posted their highest ever ODI score of 405 for 7. In reply, India comfortably overhauled the target in 43.3 overs, losing only 2 wickets. India enjoyed its most successful day at the ongoing Asian Games in Japan so far, winning 4 gold medals yesterday. India's medal tally has risen to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze medals. The country completed a hat-trick of gold medals in compound archery, with the women's team, mixed team and men's team all finishing on top. India also struck gold in shooting, with the mixed trap team securing the top spot. Indian boxers added 2 more bronze medals to the tally, with Priya Gangas and Kapil Pokharia finishing on the podium yesterday. Later in the day, wrestler Sunil Kumar won bronze in the men's 87kg Greco-Roman event, beating the Philippines' Callum Johnston Roberts 9-0. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। श्रोताओं, समय हो चला है 2:10 का, यानी कि नॉन स्टॉप फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बहार का। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ आपका दोस्त अतुल, और अगले लगभग 50 मिनट आप आनंद लेंगे नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का, और हम आज आपको ले चलेंगे 90 के दशक में।
2: है एनी, मामा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है। मैं उनकी दिल की धड़कन हूं जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूं, उनकी आवाज हूं। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूं, गाना चाहती हूं। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

जिस दिन से वो डॉन बन गया, डरने लगे लोग, ऐसा तूफान बन गया। और क्या कहूं मैं, सारा जहां का उसके कदमों में

0: इस खूबसूरत गीत के साथ ही आज का गीत बहार फिल्म कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। और श्रोताओं, कुछ ही पलों में 3 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे और उसके बाद कार्यक्रम होगा गजल गीत का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करने के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था। उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। व्हीट, बार्ली, ग्राम, लेंटल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रूपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रूपये, जौ के लिए 136 रूपये, चने के लिए 83 रूपये और गेहूं में 25 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2027-28 मंडी सीजन के लिए सभी तय रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कल दिल्ली विश्वविद्यालय के महिला कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक की। बैठक में कॉलेजों और आसपास के इलाकों में छात्राओं की सुरक्षा पर चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने कॉलेजों के आसपास स्ट्रीट लाइट, CCTV और पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। सभी कॉलेजों में एक नोडल पुलिस अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI निर्माणाधीन 17 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का विशेष गुणवत्ता निरीक्षण कर रहा है। निरीक्षण का उद्देश्य गुणवत्ता संबंधी मुद्दों की पहचान करना है जिससे समय रहते सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। निरीक्षण के लिए चयनित परियोजनाओं में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3:10:15 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम गीत गजल। आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। कार्यक्रम का आगाज करते हैं हरिहरन की आवाज के साथ।

बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया।

गीतों और गजलों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4 बज चुके हैं। लीजिए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: के स्वर में अभी आप गुरुवायुरोत्तम की प्रशंसा में हरि नाम कीर्तनम सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एआईलाइव न्यूज 24/7 चैनल है। लीजिए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नादब्रह्म। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे मिनी एन का रागम कल्याणी में गायन। स्वाति तिरुरान की रचना है और

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 1 अक्टूबर 2026। सुबह के 4:54 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा देते हैं। अब से थोड़ी देर में ठीक 5:10 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम आओ योग करें। देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:20 पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी, इसका वक्त रहेगा प्रातः 5:30 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन सकते हैं 6:10 पर। 6:40 का वक्त है कार्यक्रम चिंतन का। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से प्रसंग। प्रातः 6:45 का वक्त है श्री रामचरितमानस से पाठ का। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 65। संगीतिका कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं आप आज सुबह 7:10 पर। गीतों भरी गुड मॉर्निंग, इस कार्यक्रम का वक्त रहेगा 7:30 पर। भारतीय शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, इसका वक्त रहेगा प्रातः 8:45। उद्योग पत्रिका आप सुन सकते हैं 9:15 पर। 9:30 का वक्त है कार्यक्रम मिट्टी दी महक का। दस बजकर 10 मिनट पर आप आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।

रैये महले पहले के एक ओंकार सत गुर प्रसाद एक मन पुरख त्या

गावे गुण तुम अटल मंडल वे भगत पाए रस जाने ओ कभी कल सो जस गावो गुर नानक राज योग जिन माने ओ

0: मन विश्वास पायो गैर गोदर दियो गर नास्ता नठ्यो अमे अंतर्गत पियो रिद बिगास जाग्यो लख कल तरी जुगंतर सतगुरु सहज समाध रव्यो समान निरंतर उदारो चित दार धारण पिखंते कल मातसन सतरंग सहज कल उचर जस जंप लहण रसन सतरंग सहज कल उचर जस जंप लहण रसन
1: काची देहे मोह फुन बांधी साठ कठोर कुचील को ज्ञानी तावत परमत रहन नहीं पावता पार ब्रह्म की गत नहीं जानी यौवन रूप माया मद माता विचरित विकल बड़ो अभिमानी पर तन पर अपवाद नार निंदा यह मीठे ये माहे हितानी बालवंच शाप करत उपाला पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी शील धर्म दया सुचना सता आयु शरण दीन के दानी शील धर्म दया सुचनास्त कारण करण समर्थ श्री धर राख लियो नानक के स्वामी।

अंग संग पायो सायर तिन शब्द सुरत की नीव रखाई। गुर अमरदास की अकथ कथा है, एक जी कछ कही ना जाई। सोडी सृष्ट सकल तारण को, अब गुर रामदास को मिली बड़ाई। सोडी सृष्ट सकल तारण को।

गुण गावे रविदास भगत जय दी तरलोच नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग माने।

गुरु गुर गुरु जप प्राणियो, शब्द हर हर जपे, नाम नव निध अपे, रसन अह निस रसा सत कर जानियो। सुन प्रेम रंग पाइया, गुरमुख त्याइया, अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो। बचन गुर रिद धरो, पंच भू बस करो, जन्म कुल द्रो द्वार हर मानियो। जो ता सब सुख इत उत तुम बंसो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु।

ਚਨ ਕਾਦ ਜੁਗ ਹੈ ਲਗ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਜਨਮ ਸਕੇ ਅਥ ਪਲੋ।

जोगता मानियो जब लो नहीं भाग ललार उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो कल कोर समुद्र में बुडत थे कब हूं मिट है नहीं रे बचतायो तत् विचार यह मथुरा जगता।

0: अंतन पावत देव सबे मनो इंद्र महासेव जोग करी हुन भेद बिरंच विचार रहो हर जाप न साड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जुन माहे तरी
1: दृष्ट धरत तम हरण दहनग पापनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वश करण शरण जाचक प्रतिपालन आत्म रत संग्रहण कहन अमृत काल ढालन सत गुरु काल सत गुरु तिलक सत लागे सो पै तरै गुर जगत फिरण सी अंगरो राज जोग लहना करै
2: सच तीर्थ सच इशनान अर पूजन पाओ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल वखान दर्शन परसे गुरु के सच जन्म परवान
3: सतजुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो ते तै तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतारथ कियो उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो कलयुग परमाने नानक गुर अंगद।

हम अवगुण पर एक गुण नाही अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ।

सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जीओ तेरा तू रखदा आया प्रहलाद जान तुद राख ले हर जीओ हर नाख समार प्रचाया

ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਏ। ਭਗਤਾਂ

वेद सद सभगता चरणी लागे गुर का सहज सुपाई मन मुखानो प्रतीत नयावी अंतर लोभ स्वाओ गुरमुख हृदय शब्द ना पेदे हर

गुर का शब्द पछाता अचिंत काम करह प्रभु तिनके जिन हर का नाम प्यारा। गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सुवर्ण हारा।

僕まへ僕さまい。ごらまかほうはそうやまるてぴわ。さじさちさまい。बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै जे अनेक कर्म करै अधकाई वेद पढ़ै तै बाद बखाणै बिन हर पात्र गवाई।

जिन हर मन वसिया से दर साचे, दर साच सचियारा। ओ नानक।